चैत्र का महीना, शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, दोपहर का समय, भगवान का अभिजित मुहूर्त था, जब ब्रह्मलोक से ब्रह्मा समेत सभी देवता विमान सजाकर अवधपुरी के आकाश पर छा गए।

0: श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में 6:55 होने के हैं। अब समाचार प्रसारित किए जाएंगे, पहले संस्कृत, फिर हिंदी और अंग्रेजी में।
1: इयम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्, प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः नूतनस्य क्वाड्रिपार्टाइड सिक्योरिटी ग्रिड इत्यस्य प्रवर्तनेन सीमप्रबन्धने प्रमुखस्य परिवर्तनस्य घोषणाम् अकरोत्। सः अवदत् यत् अस्माकं सीमायाः रक्षणम्, अवैधप्रवासस्य निर्मूलनं च राष्ट्रस्य जनसाङ्ख्यिक्याः रक्षणाय महत्वपूर्णमस्ति। सः ह्यः गुजरातस्य भुजनगरे भारत पाकिस्तान सीमायां सामरिकदृष्ट्या महत्वपूर्णानां G7 तथा G13 बॉर्डर आउटपोस्ट इत्येतेषाम् उद्घाटनानन्तरं सैनिकान् जनसमूहं च सम्बोधयन् आसीत्।
2: BSF की सीमा

0: सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी ही रहे। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
1: म्यांमार देशस्य राष्ट्रपतिः यू मिन आंग लाइंग इत्येषः अद्य प्रातः पंचदिवसीय भारत यात्रायां बिहारस्य गयानगरं सम्प्राप्स्यति। तेन सह नैके मन्त्रिमण्डलस्य मन्त्रिणः वरिष्ठाधिकारिणः व्यापारनेतारः उच्चस्तरीय प्रतिनिधिदलं च भविष्यति। राष्ट्रपतिः यू मिन आंग लाइंग वर्यस्य एषा प्रथमा भारतयात्रा भविष्यति। अद्य अपराह्णे राष्ट्रपतिः यू मिन आंग लाइंग इत्येषः नवदिल्ल्यां प्राप्स्यति। सः सायंकाले विदेशमन्त्रिणा डॉ एस जयशंकरेण सह मेलनं करिष्यति। श्वः म्यांमार देशस्य राष्ट्रपतिः म्यांमार भारत व्यापार मंचे भागं ग्रहीष्यति इत्यपेक्षास्ति। सोमवासरे राष्ट्रपतिः यू मिन आंग लाइंग वर्यः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह द्वयोः देशयोः मध्ये ऐतिहासिकं सम्बन्धं सुदृढं कर्तुं चर्चां करिष्यति। सर्वकारः अवदत् यत् देशे पेट्रोल डीजल एलपीजी इत्येतेषां पर्याप्तः भण्डारः अस्ति। सर्वे शोधनागाराणि इष्टतमस्तरे एव प्रचलन्ति। नवदिल्ल्याम् अन्तर्मन्त्रालयीय मन्त्रिमण्डलस्य विवरणं सम्बोधयन्ति पेट्रोलियम मन्त्रालयस्य संयुक्त सचिवा सुजाता शर्मा इत्येषा अवदत् यत् प्राकृतिक गैस इत्यस्य उत्पादनं सर्वकालिकोच्चतमस्तरे अस्ति यत् प्रतिदिनं एलपीजी इत्यस्य 290,000 टनपरिमितम् अस्ति। श्रीमती शर्मा सूचितवती यत् कस्यामपि एलपीजी वितरण संस्थायां शुष्कतायाः सूचना न प्राप्ता। केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रिणा धर्मेन्द्र प्रधानेन समग्र शिक्षाभियानस्य अन्तर्गतं निधिप्रसारणस्य तस्य उपयोगस्य च विषये विस्तृत समीक्षा सभायाः अध्यक्षता कृता। यस्याः लक्ष्यं समग्र शिक्षा 3.0 अधिकं दक्षं पारदर्शकं तथा परिणाम अभिमुखीकरणम् आसीत्। सामाजिकान्तर्जालीये पटले श्रीप्रधानः अवदत् यत् समग्र शिक्षाभियानं पीएम पोषणम् उल्लासः पीएम श्री इत्यादीनां प्रमुखयोजनानां एकीकृतपद्धत्याः प्रसारणम् अस्मिन्नेव वर्षे आरभ्यते। सः अवदत् यत् एतेन विद्यालयीयशिक्षाव्यवस्थायां बृहत्तरः समन्वयः प्रभावश्च सुनिश्चितः भविष्यति। केन्द्रीय कृषिमन्त्री शिवराज सिंह चौहानः अवदत् यत् कृषकाणां कृते बीजानाम् उपलब्धता सुनिश्चेतुं 74,000 क्विंटल परिमितस्य राष्ट्रिय बीज संरक्षणस्य स्थापना कृतास्ति। सः ह्यः नवदिल्ल्याम् अस्य वर्षस्य खरीफ अभियानस्य कृते कृषि विषयकस्य राष्ट्रिय सम्मेलनस्य द्वितीय दिने प्रसारमाध्यमान् सम्बोधयनासीत्। आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां गतसायं महाराजा यादवेन्द्र सिंह अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट क्रीडांगणे न्यू चण्डीगढ़ नगरे महत्वपूर्णे क्वालिफायर द्वितीय स्पर्धायां गुजरात टाइटन्स दलेन राजस्थान रॉयल्स दलं 7 स्तोभैः पराजितम्। अधुना गुजरात टाइटन्स दलं श्वः रविवासरे अहमदाबादस्य नरेन्द्र मोदी क्रीडांगणे निर्णायक स्पर्धायां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलेन सह स्पर्धिष्यति इति वार्ताः।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के।
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए तेल कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण सुधार दर्शाए गए हैं। अस्पतालों में प्रसव बढ़कर 90.6% हो गए हैं। म्यांमा के राष्ट्रपति मिन आंग हलाइंग 5 दिवसीय यात्रा पर आज भारत आएंगे। मौसम विभाग ने आज देश के कई राज्यों में तेज बारिश और गरज के साथ तूफान आने का पूर्वानुमान लगाया। हांगकांग में आयोजित 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दूसरे दिन 4 स्वर्ण सहित 7 पदक जीते। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई।

0: अब समाचार विस्तार से। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
1: Regarding the efforts of the government to keep the price stable, Bharat Sarkar ne excise duty kam ki. So these all efforts have been done to keep the price stable. We are working on the strategic reserves also. Oil marketing companies ko work out karne ke liye kaha hai ki LPG ka jo reserve hai, that should be minimum 30 days with them. And they are working on it. And similarly for crude also we are working.
0: संयुक्त सचिव ने कहा कि सरकार रणनीतिक भंडारों के माध्यम से ईंधन सुरक्षा मजबूत करने और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने बताया कि किसी भी एलपीजी वितरण केंद्र पर आपूर्ति की कमी की कोई सूचना नहीं है।
2: सरकार सभी घरों तक एलपीजी सिलेंडर्स की उपलब्धता और डिलीवरी सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके साथ सरकार सभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयासरत है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने का हर संभव प्रयत्न करें। बल्क और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स से अपील है कि वो ऑथराइज प्रोक्योरमेंट चैनल से ही डीजल की खरीद करें।
0: विदेश मंत्रालय में अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि खाड़ी और पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास भारतीय नागरिकों को समय पर सहायता प्रदान कर रहे हैं। श्री महाजन ने कहा कि प्रभावित क्षेत्र से भारत के विभिन्न क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त उड़ानें संचालित की जा रही हैं। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने कहा कि कच्चे तेल का टैंकर व्यापारिक पोत निसोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल चुका है। इसके 3 जून को विशाखापट्टनम पहुंचने की संभावना है। उन्होंने कहा कि इस पोत पर लगभग 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चा तेल भारत आ रहा है। श्री शर्मा ने कहा कि क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 6 चरण के आंकड़े कल जारी कर दिए। इसके अनुसार मातृ और शिशु स्वास्थ्य पोषण तथा वित्तीय सुरक्षा में भारत ने तीव्र प्रगति की है। सर्वेक्षण के अनुसार संस्थागत प्रसव 88.6% से बढ़कर 90.6% हो गए हैं। सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारत की कुल प्रजनन दर 2 पर बनी हुई है। सर्वेक्षण के अनुसार 12 से 23 महीने के बच्चों के टीकाकरण का आंकड़ा लगातार 96% से अधिक बना हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि ये सुधार मिशन परिवार विकास सहित राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रमों के निरंतर प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। सर्वेक्षण के अनुसार महिलाओं के डिजिटल समावेशन और वित्तीय सशक्तिकरण में निरंतर प्रगति हुई है। इसमें कहा गया है कि इंटरनेट का उपयोग करने वाली महिलाओं की संख्या लगभग दोगुनी होकर 64.3% पर पहुंच गई है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि आयुष्मान भारत और विस्तारित स्वास्थ्य सुरक्षा पहलों ने स्वास्थ्य सेवा में वित्तीय सुरक्षा मजबूत की है। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग 5 दिन की भारत यात्रा पर आज पहुंचेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। राष्ट्रपति के रूप में यू मिन आंग हलाइंग की ये पहली भारत यात्रा होगी। गया में म्यांमा के राष्ट्रपति महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। वे आज बाद में नई दिल्ली पहुंचेंगे। वे आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। म्यांमा के राष्ट्रपति की कल म्यांमा भारत व्यापार मंच में भाग लेने की संभावना है। सोमवार को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। कल नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच बैठक के दौरान म्यांमा और भारत के बीच आपसी संबंधों से जुड़े सभी पहलुओं पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि भारत म्यांमा के राष्ट्रपति का स्वागत करने के लिए उत्सुक है।
3: म्यांमा के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता इन संबंधों को और मजबूत करने के बारे में चर्चा करेंगे। इस यात्रा का एक व्यापारिक पहलू भी है जिसमें दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। ये एक आधिकारिक यात्रा है।
4: दिस इज ऑफिशियल विजिट एंड वी लुक फॉरवर्ड टू वेलकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ म्यांमार।

0: यात्रा के अंतर्गत म्यांमा के राष्ट्रपति व्यापार और उद्योग जगत से संबंधित वार्ताओं और शहर के विभिन्न स्थलों पर भ्रमण के लिए 2 जून को मुंबई भी जाएंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नई सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के तरीकों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार सीमा सुरक्षा बल को अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपने पर विचार कर रही है। श्री शाह ने कल गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर 2 नई सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना के 60वें वर्ष में सीमा सुरक्षा की अवधारणा को पूरी तरह से बदलने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने एक चतुर्भुजीय सुरक्षा ग्रिड की स्थापना की घोषणा की।
1: बीएसएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। इस चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी ही रहे। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। महाधिवक्ता तुषार मेहता ने पीठ से कहा कि सरकार युवाओं के लिए चिंतित है और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि आगे ऐसी कोई चूक न हो। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए यह पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। पंजाब नगर निकाय चुनावों में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने 8 नगर निगमों, 75 नगर परिषदों और 19 नगर पंचायतों के 1977 वार्ड में से 958 वार्ड जीत लिए हैं। कांग्रेस को 397, शिरोमणि अकाली दल एसएडी को 192 और भाजपा को 172 वार्ड में जीत हासिल हुई है। बहुजन समाज पार्टी को केवल 7 वार्ड मिले। निर्दलीय उम्मीदवारों ने 251 वार्ड जीतकर तीसरा स्थान हासिल किया। गोवा आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। 1987 में इसी दिन गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था और वो भारतीय संघ का 25वां राज्य बना था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज पणजी स्थित कला अकादमी में आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह में भाग लेंगे।
2: गोवा में आज आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह राज्य की पिछले 4 दशकों की उल्लेखनीय प्रगति और विकास यात्रा को रेखांकित करेगा। 1961 में पुर्तगाली शासन से मुक्ति के बाद गोवा दमन और दीव के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश बना था। इसके बाद 1967 में हुए ऐतिहासिक जनपद संग्रह ने गोवा की अलग पहचान को बनाए रखने का मार्ग प्रशस्त किया। वर्ष 1987 में कोंकणी को राजभाषा का दर्जा मिलने के बाद राज्य गठन का रास्ता साफ हुआ और 30 मई 1987 को गोवा भारत का 25वां राज्य बना। आज के समारोह में कार्टूनिस्ट मारियो मिरांडा पर स्मारक डाक टिकट जारी किया जाएगा। इसके साथ ही एक कॉफी टेबल बुक का लोकार्पण, पुरस्कार वितरण और नागरिक कल्याण से जुड़ी विभिन्न पहलों की शुरुआत भी की जाएगी। इसके बाद उपराष्ट्रपति गोवा स्थित CSIR राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का दौरा करेंगे। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारेक्काल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज बहुत तेज बारिश की आशंका जताई है। विभाग ने हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में ओलावृष्टि की भी आशंका व्यक्त की है। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस की टीम प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंच गई है। न्यू चंडीगढ़ में कल दूसरे क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु के बीच फाइनल कल अहमदाबाद में खेला जाएगा। यह मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। हांगकांग में चल रही एशियाई अंडर

0: 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए अब तक कुल 8 पदक अपने नाम किए। इनमें 4 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत तालिका में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। कल प्रतियोगिता के दूसरे दिन भारतीय एथलीटों ने 4 स्वर्ण सहित 7 पदक जीते। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो रहा है। 1 महीने तक चलने वाले निर्वाचन आयोग की यह प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
1: धन्यवाद कनक। नीट यूजी पेपर लीक मामले में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी आज के अनेक अखबारों की पहली सुर्खी है। अमर उजाला ने सर्वोच्च न्यायालय का बयान दिया है, जवाबदेही तय होने तक नहीं रुकेंगे पेपर लीक मामले। देशबंधु और नवभारत टाइम्स ने CBSE की 12वीं की आंसर शीट भी डिजी लॉकर में भेजे जाने की जानकारी दी है। पत्र लिखता है, यहीं से करा सकेंगे रिवैल्यूएशन। शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा TET पास करने की अनिवार्यता से छूट देने का सर्वोच्च न्यायालय का इंकार भी अनेक अखबारों में है। अमर उजाला लिखता है, समय सीमा 1 साल बढ़ी। दैनिक जागरण ने भी इस खबर को प्रकाशित किया है। पत्र ने न्यायालय के हवाले से लिखा है, सरकारी शिक्षकों को सेवा में बने रहने के लिए TET पास करना ही होगा। जनसत्ता ने कर्नाटक में कांग्रेस की बैठक आज होने का समाचार देते हुए लिखा है, DK शिवकुमार को चुना जाएगा नेता। पंजाब केसरी ने सिद्धारमैया की सिद्धि शीर्षक से अपने संपादकीय में लिखा है, कर्नाटक में जितनी शालीनता और शांति के साथ कांग्रेस पार्टी के भीतर नेतृत्व परिवर्तन हुआ है उसे भारतीय लोकतंत्र की जीवंत ताकत कहा जा सकता है। दैनिक जागरण ने घरेलू उड़ानों में कटौती से हवाई किराया 30% तक बढ़ने का समाचार दिया है। मौसम विभाग की चेतावनी भी कई अखबारों में है। अमर उजाला लिखता है, अटका मॉनसून 7 दिन के बाद देगा दस्तक, 10% कम होगी बारिश। राजस्थान पत्रिका की टिप्पणी है, बेवफा मॉनसून। दैनिक भास्कर लिखता है, इस साल सूखे का खतरा। हालांकि पत्र ने बिहार, झारखंड, बंगाल और उत्तर पूर्व में अच्छी बारिश की संभावना व्यक्त की है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए तेल कंपनियों को 30 दिन का LPG भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण सुधार दर्शाए गए हैं। अस्पतालों में प्रसव बढ़कर 90.6% हो गए हैं। म्यांमा के राष्ट्रपति मिन आंग हलाइंग 5 दिवसीय यात्रा पर आज भारत आएंगे। मौसम विभाग ने आज देश के कई राज्यों में तेज बारिश और गरज के साथ तूफान आने का पूर्वानुमान लगाया। और IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Naresh Mago. The headlines. Center asks oil marketing companies to build 30 days LPG reserves as West Asia conflict persists. National Family Health Survey shows major gains in maternal and child health. Institutional deliveries rise to 90.6%. Myanmar President Min Aung Hlaing to arrive in India this morning on a 5-day visit. IMD forecasts heavy rainfall and thunderstorms across several states in the country today. Indian athletes shine at Asian Under 20 Athletics Championships in Hong Kong, clinch 7 medals including 4 gold on day 2. And in IPL cricket, Gujarat Titans beat Rajasthan Royals by 7 wickets to set up title clash with Royal Challengers Bengaluru. The government has asked the public sector oil marketing companies to set up liquefied petroleum gas LPG reserves for at least 30 days as the West Asia conflict persists, disrupting global energy supplies. Joint Secretary at the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Sujata Sharma, stated this while talking to reporters yesterday during the inter-ministerial press briefing on the West Asia conflict. outlining the precautionary measures to safeguard against supply shocks, Ms.

0: पंजाब मुकामी बल्दियाती इंतखाबात में बरसर इख्तदार आम आदमी पार्टी ने 1977 में से 958 वार्ड्स में जीत दर्ज की है। रियासत की 8 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशनों, 75 म्यूनिसिपल काउंसिलों और 19 नगर पंचायतों में ये इंतखाबात हुए थे। कांग्रेस ने 397, श्रोमणी अकाली दल ने 192 और बीजेपी ने 172 वार्ड्स में कामयाबी हासिल की है। बीएसपी महज 7 वार्ड्स में ही कामयाबी हासिल कर सकी। दिलचस्प बात यह है कि आजाद उम्मीदवार 251 वार्ड्स में जीत के साथ तीसरे नंबर पर हैं। 26 मई को पंजाब के शहरी मुकामी बल्दियाती इदारों में हुए इंतखाबात में कुल 7,554 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। रियासत गोवा आज अपना यौम तासीस मना रही है। आज ही के दिन साल 1987 में गोवा को मुकम्मल रियासत का दर्जा दिया गया था और इस तरह यह भारतीय यूनियन की 25वीं रियासत बन गई थी। नायब सदर सीपी राधाकृष्णन पणजी की कला अकादमी में गोवा यौम तासीस तकरीबात में शिरकत करेंगे। ये मौका गोवा की आज़ादी से लेकर इंसानी तरक्की और म्यारे जिंदगी के मामले में भारत की सरकर्दा रियासत बनने तक के गोवा के सफर की अक्कासी करता है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
1: गोवा की यौम तासीस तकरीबात के दौरान आज रियासत की गुज़श्ता 4 दहाई के दौरान जो तब्दीली हुई है उसे नुमायां किया जाएगा। 1961 में पुर्तगाली तसल्लुत से आज़ादी हासिल करने के बाद गोवा दमन और दीव के साथ मरकज के जेर इंतजाम इलाका बन गया था। 1967 में फैसला कुन लम्हा तब आया जब गोवा के लोगों ने गोवा की मुनफरिद शनाख्त को बरकरार रखने के लिए तारीखी ओपिनियन पोल में हिस्सा लिया। साल 1987 में कोंकणी जबान को सरकारी जबान का दर्जा मिलने से गोवा के रियासत बनने की राह हमवार हुई और उसी साल 30 मई को गोवा भारत की 25वीं रियासत बन गई। गोवा की यौम तासीस तकरीबात के दौरान नायब सदर सीपी राधाकृष्णन आज सीएसआईआर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी का दौरा करेंगे जहां वो तहकीक और टेक्नोलॉजी से मुतालिक नुमाइशी अशिया का मुशाहिदा करेंगे और साइंसदानों से बातचीत करेंगे। इस दौरान नायब सदर सीएसआईआर एनआईओ कॉफी टेबल बुक का इजरा भी करेंगे। पणजी से महेश चोपड़े की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
0: इस दौरान मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने गोवा के यौम तासीस के मौके पर रियासत के अवाम को मुबारकबाद पेश की है। जनाब शाह ने कहा कि गोवा सकाफत और विरासत का अजीम शान इम्तजाज है जो दुनिया के सामने गर्मजोशी से भरपूर भारतीय जियाफत का चेहरा पेश करता है। जनाब शाह ने कहा कि रियासत गोवा मुल्क की तरक्की और फख्र के मामले में अपना तआवुन जारी रखेगी। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि हुकूमत उभरते हुए सिक्योरिटी चैलेंजों से ज्यादा मौसर तरीके से निमटने के लिए सरहदी मुहाफिज फोर्स बीएसएफ को इजाफी जिम्मेदारियां देने पर गौर कर रही है। जनाब शाह ने कल गुजरात के भुज में बीएसएफ एहलकारों से बातचीत के दौरान ये बात कही। इस दौरान जनाब शाह ने भारत पाकिस्तान सरहद पर स्ट्रेटेजिक एतबार से अहम 2 नई सरहदी चौकियों का इफ्तिताह किया। जनाब शाह ने मजीद कहा कि बीएसएफ के कयाम के 60वें साल के मौके पर सरहदी हिफाजत के बीएसएफ के नजरिए को मुकम्मल तौर पर तब्दील करने का फैसला किया गया है। जनाब शाह ने महज सरहदी सलामती के रिवायती नुक्ते नजर को इलाकाई सलामती के नए नुक्ते नजर से बदलने के मकसद से क्वाड्रेंगुलर सिक्योरिटी ग्रिड के कयाम को मुतारिफ कराने का ऐलान किया है। भारत के महकमे मौसमियात ने आज मगरबी उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और अंडमान निकोबार जजायर में मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। आईएमडी ने हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, विदर्भ और चंडीगढ़ में झालाबारी के साथ आंधी तूफान की पेशगोई भी की है। महकमे ने शुमाल मशरकी रियासतों और साहेली कर्नाटक में गरज चमक के साथ आंधी तूफान का इम्कान जाहिर किया है जबकि मगरबी मध्य प्रदेश और तेलंगाना में शदीद गर्मी की लहर बरकरार रहने का इम्कान है। हांगकांग में जारी 20 साल से कम उम्र की एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत मुसलसल बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहा है। सोने के 4, चांदी और कांसे के 2-2 तमगे समेत कुल 8 तमगे जीतकर दर्जाबंदी में भारत चीन के बाद दूसरे मुकाम पर पहुंच गया है। कल मुकाबले के दूसरे दिन भारतीय एथलीट्स ने 4 सोने के तमगे समेत 7 तमगे जीते हैं। 19 साल की पूजा सिंह ने खवातीन की 1.3 मीटर की हाई जंप में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए सोने का तमगा जीता है। भारत के लिए दीगर 3 सोने के तमगे नितिन गुप्ता, अमानत कंबोज और राहुल जाखड़ ने हासिल किए हैं। आईपीएल क्रिकेट में कल रात न्यू चंडीगढ़ में खेले गए सेकेंड क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ अब कल अहमदाबाद में खेले जाने वाले फाइनल मुकाबले में गुजरात टाइटंस और दिफाई चैंपियंस राजस्थान रॉयल्स बेंगलुरु आमने सामने होंगे। राजस्थान रॉयल्स की जानिब से जीत के लिए

0: मुकर्रा 215 रन के निशाने को गुजरात टाइटंस ने 8 गेंद बाकी रहते हुए 3 विकेट के नुकसान पर 219 रन बनाकर हासिल कर लिया। शुभमन गिल ने सबसे ज्यादा 104 रन बनाए, जिन्हें मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। इससे पहले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान रॉयल्स ने मुकर्रा 20 ओवर्स में 6 विकेट के नुकसान पर 214 रन बनाए थे। वैभव सूर्यवंशी ने सबसे ज्यादा 96 रन बनाए, अलबत्ता वो एक बार फिर सेंचुरी बनाने से चूक गए। खवातीन क्रिकेट में आज ब्रिस्टल में दूसरे T20 बैनुल अक्वामी मैच में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। इस मैच में भारतीय टीम 3 मैचों की सीरीज को जीतने के मकसद से मैदान में उतरेगी। भारतीय वक्त के मुताबिक ये मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। जुमेरात के रोज चेम्सफोर्ड में खेले गए इफ्तिताही मैच में इंग्लैंड को 38 रन से शिकस्त देने के बाद भारत ने सरदस्त सीरीज में 1-0 से सबकत हासिल कर ली है। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर।
1: शुक्रिया जमीर। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के अखबारात ने अलग अलग खबरों को शासरुखी बनाया है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सरहद पर वाकई चौकी पर जवानों से बातचीत की और 14 निगरानी चौकियों का इफ्तिताह किया और कहा कि सरहदी इलाकों के लिए 4 रुखी सिक्योरिटी ग्रिड बनेगी। इस खबर को रोजाना प्रताप ने जरी सुर्खी के साथ शाये किया है। रोजाना प्रताप ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह के हाथों ऑपरेशन सिंदूर अंजाम देने वाले बहादुर फौजियों के तजर्बात पर मबनी किताब के रस्म इजरा की खबर को पहले सफ़े पर जगह दी है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि किताब ऑपरेशन सिंदूर अंजाम देने वाले जवानों को खराज अकीदत पेश करती है। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी डिजिटल मीशत बनकर उभरा। स्टेट ऑफ इंडिया डिजिटल इकोनॉमी 2026 की रिपोर्ट में ये बात कही गई। इस खबर को आज के अखबारों ने खसूसी तौर पर शाया किया है। रोजामा इनकलाब ने अमरीकी सर डोनाल्ड ट्रंप के उस ऐलान को बड़ी अहमियत दी है, जिसमें उन्होंने कहा कि ईरान के साथ मुतादिन निकात पर इत्तिफाक राय में पेशरफ्त हुई है। नीज आबनाए हुरमुज में बहरी ट्रैफिक की बिला तातुल बहाली यकीनी बनाई जाएगी। आज के बेशतर अखबारात ने उर्दू के नाम और शायर पद्मश्री डॉक्टर बशीर बद्र के इंतकाल पर उर्दू दुनिया और उनके मद्दाहों की तरफ से जबरदस्त खराज अकीदत पेश किए जाने और ताजियती नशिस्तों के अहतमाम की खबर पर भी खसूसी तवज्जो मरकूज की है।
0: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। मरकज ने तेल मार्केटिंग कंपनियों से कहा है कि वो मगरबी एशिया महाजराई जारी रहने के पेश नज़र LPG के जखीरे 30 दिन तक बरकरार रखें। खानदानी सेहत के कौमी सर्वे से माँ और बच्चे की सेहत के मैदान में बड़े फायदों का पता चला है। इदारा जाती जचगी में इजाफा होकर ये 90.6% हो गई है और बच्चों की टीकाकारी 96% हो गई है। म्यांमार के सदर मिन ऑंग ह्लैंग भारत के 5 रोजा दौरे के पहले मरहले में आज सुबह बिहार के बौद्धगया पहुंचेंगे। भारत के महकमे मौसमियात ने आज मुल्क की बहुत सी रियासतों में मूसलाधार बारिश और गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की पेशगोई की है। हांगकांग में 20 साल तक की उम्र की एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीट्स का बोलबाला रहा। उन्होंने दूसरे दिन सोने के 2 तमगों समेत 7 तमगे जीते हैं। और IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा कर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ फाइनल मैच खेलने को यकीनी बना दिया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन।
2: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत।
3: आकाशवाणी दिल्ली से प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। स्वीकार करिए अपनी दोस्त शालिनी मित्तल का नमस्कार। श्रोताओं, हर साल 31 मार्च को वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम है अनमास्किंग द अपील काउंटरिंग निकोटीन एंड टोबैको एडिक्शन, यानी आकर्षण की सच्चाई उजागर करें और निकोटीन और तंबाकू की लत का मुकाबला करें। इस वर्ष का संदेश खास तौर पर युवाओं को जागरूक करने पर केंद्रित है, क्योंकि तंबाकू और निकोटीन कंपनियां आकर्षक पैकेजिंग, फ्लेवर और विज्ञापनों के माध्यम से नई पीढ़ी को अपनी गिरफ्त में लेने की कोशिश कर रही हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे तंबाकू और निकोटीन के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले गंभीर प्रभाव, युवाओं में बढ़ती लत के कारण और इस आदत से छुटकारा पाने के कुछ प्रभावी उपायों के बारे में। आइए मिलकर संकल्प लें, स्वस्थ जीवन अपनाएं, तंबाकू को जीवन से हटाएं। सुनिए विश्व

0: तंबाकू निषेध दिवस पर विशेष परिचर्चा, विषय है तंबाकू के कुप्रभाव। हमारे प्रतिभागी हैं डॉक्टर लोकेश सिंह शेखावत, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री, डॉक्टर आरएमएल हॉस्पिटल, डॉक्टर मानसी अत्री, एसोसिएट प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री एंड टोबैको सिसेशन ESIC डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, और डॉक्टर सृष्टि ग्रोवर डेंटल सर्जन। संचालन कर रही हैं टीना शर्मा।
1: तंबाकू का सेवन बेहद खतरनाक है, ये चेतावनी हर तरह के तंबाकू के पैकेट पर लिखी होती है, लेकिन तंबाकू के शौकीन इसे नजरअंदाज कर देते हैं और यही लापरवाही बन जाती है आफत। तंबाकू का सेवन जानलेवा बीमारियों का कारण बनता है, ये कई गंभीर समस्याओं को बुलावा देता है। आप तीनों का हमारे स्टूडियो में स्वागत है। डॉक्टर मानसी, मेरा पहला सवाल आपसे है कि तंबाकू के विभिन्न रूपों में कौन कौन से उत्पाद आते हैं?
2: नमस्कार। तंबाकू ज्यादातर देखा गया है कि भारतवर्ष में दो रूप में प्रयोग किया जाता है, या तो चबाने के फॉर्म में या फिर धूम्रपान के फॉर्म में, जिसे हम या तो स्मोकलेस एंड स्मोक फॉर्म कहते हैं। स्मोकलेस फॉर्म में ज्यादातर खैनी, गुटखा, जर्दा, पान मसाला, ये ज्यादातर देखे गए हैं। और दूसरा है धूम्रपान के फॉर्म में, जिसको हम सिगरेट, बीड़ी या फिर हुक्के के फॉर्म में ज्यादातर देखते हैं। एक और भी फॉर्म है जो हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा पाया जाता है, और वो है जब हम तंबाकू को मसूड़ों पे लगाकर या उसको एक पेस्ट की तरह से अप्लाई करते हैं
1: जी।
2: तो ये तीनों तरह से ही इसका इस्तेमाल किया जाता है।
1: तंबाकू में मुख्य रूप से कौन सा नशीला और जहरीला तत्व पाया जाता है जिसकी वजह से व्यक्ति को इसकी लत लग जाती है और सेहत बिगड़ने लगती है?
2: तंबाकू दिखने में तो एक पुड़िया में आ जाता है या एक सिगरेट में दिख जाता है, मगर इसके अंदर 7,000 से भी ज्यादा केमिकल होते हैं और जो बहुत ही खतरनाक है। निकोटीन इसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है। निकोटीन के साथ साथ अगर देखें तो निकोटीन इतना खतरनाक नहीं है जितना अडिक्टिव है। मतलब ये हमें एक बार मिलना शुरू हुआ तो हमारा शरीर से छोड़ नहीं सकता, मगर उसी तरह से बहुत से ऐसे केमिकल हैं जैसे टार, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोस अमीन्स, ये सारे जो हैं ये हमारे लिए कार्सिनोजेनिक है, मतलब कैंसर प्रोड्यूसिंग है या कैंसर को होने में बहुत ज्यादा हमारे शरीर में बदलाव लाते हैं। तो तंबाकू का कोई भी फॉर्म क्यों ना हो, ये बहुत ही खतरनाक है और इसमें बहुत सारे पदार्थ हैं जो खतरा कर सकते हैं।
1: डॉक्टर सृष्टि, आपसे जानना चाहेंगे कि तंबाकू के सेवन से कैंसर के अलावा कौन कौन सी बीमारियां होने का खतरा होता है?
3: ये तो सबको पता है कि तंबाकू से कैंसर हो सकता है, बट जो सबसे पहले साइंस जो हमें दिखना शुरू होते हैं वो हमारे मुंह से शुरू होते हैं। तो अगर हमारे सामने कोई भी इंसान है, हम उसका मुंह खोलते हैं और हमें दिखता है कि उसके दांतों का रंग बदल रहा है, जिसको स्टेनिंग बोलते हैं, वो एक सबसे इम्पोर्टेंट और फर्स्ट साइन होता है जिससे हमें पता चलता है कि उसके कैंसर होने के चांसेस हैं। सेकेंडली, अगर उसके मुंह में कोई अल्सर, इसको छाला बोलते हैं, जो 2 से 3 हफ्तों के बाद भी नहीं ठीक हो रहा है, तो हमें पता लगता है कि हमें उसके अंदर और जांच करने की जरूरत है। या उसके गालों पे या उसके जीभ पे लाल या सफेद रंग के पैचेस आ जाते हैं, और इसका लास्ट स्टेज होता है जब पेशेंट का मुंह ही खुलना बंद हो जाता है या बहुत कम, 2 उंगलियों समान उसका मुंह खुलता है, तब हमें पता लगता है कि अब ये कैंसर के स्टेजेस में जाना पॉसिबल हो रहा है उसका।
1: डॉक्टर लोकेश, आपसे जानना चाहूंगी कि ऐसी कौन सी वजह है जिसके कारण लोग तंबाकू का सेवन करते हैं?
4: देखिए, सबसे पहले ये हमें जानने की जरूरत है कि ये स्टार्ट कब होता है। ये होता है स्टार्ट 12 से 14 साल के बच्चों में। हमें ये समझना होगा कि कुछ बच्चे वल्नरेबल होते हैं, जिनको चांसेस होते हैं कि वो नशा स्टार्ट करते हैं, स्पेशली वो बच्चे जो पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं है, जो बच्चे जिनको थ्रिल्स पसंद है, थोड़े डिमांडिंग होते हैं ना, बार बार उनको कुछ न कुछ चाहिए, उनको थ्रिल्स चाहिए, रोमांच चाहिए जिंदगी में, ऐसे बच्चों के दिमाग में ही ऐसा होता है कि उनको कुछ करना है, कुछ करना है, तो वो नशे की तरफ जाने की संभावना बढ़ जाती है। तीसरा, वो बच्चे जिनको आइडेंटिफिकेशन क्राइसिस कहते हैं, जिसको टीनेजर्स होते हैं ना, आइडेंटिफिकेशन क्राइसिस है, उनको बड़ा बनना है, उनको बड़े जैसी फीलिंग लेनी है, तो ऐसे में वो क्या करते हैं कि बड़े की फीलिंग के लिए कि मैं पी रहा हूं उसका मतलब मैं आइडेंटिफिकेशन क्राइसिस को ठीक कर रहा हूं। उसके बाद जो बहुत बड़ा रीजन है जिसमें लोग पहली बार इनिशिएट करते हैं, उत्सुकता से क्या होता है इसमें, क्या चीज है ऐसी, और अपने दोस्तों के साथ पीयर प्रेशर जिसको कहते हैं, कि अगर एक दोस्त ले रहा है तो दूसरा दोस्त, फिर दूसरे से तीसरा, इस तरह से ये बच्चे फिर धीरे धीरे धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि वो बच्चे जो पढ़ाई में ठीक नहीं कर रहे हैं, जो थ्रिल सीकिंग है, थोड़े एडवेंचरस है, थोड़े जिनको हम नॉटी बच्चे कहते हैं ना, उस तरह के बच्चों की संभावना होती है, और जरूरी है कि उसी समय पहचान कर अगर हम इलाज करें तो ज्यादा बेहतर रहता है। एक बार जब वो स्टार्ट हो जाता है, जैसे मैडम कह रही थी कि निकोटीन बड़ा एडिक्टिव है, वो इतना एडिक्टिव है है कि उसके बाद उसको छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है।

0: है कि जो यंगस्टर्स हैं, टीनेजर्स हैं, वो पार्टीज एक बहुत बड़ा ट्रेंड हो गया है जिसमें लोग पार्टीज करते हैं, गेट टुगेदर करते हैं, जैसे वीकेंड पार्टीज हैं। उन पार्टीज में जो सबसे कॉमनली जो यूज होता है वो तंबाकू और सिगरेट यूज होता है, और वहीं से लोग स्टार्ट करते हैं। तो जो बच्चे पहले शुरू में उनको थोड़ी आदत होती है उसको बढ़ाने का काम होता है ये। और दूसरा बहुत बड़ा रीजन रहा कि जो मीडिया में डेपिक्शन था जो अब बंद हो गया है, जैसे हीरो जो है वो बोर हो रहा है या कुछ करने वाला है बड़ा काम, तो वो इस तरह से अपने सिगरेट को पीता हुआ, धुआं उड़ाता हुआ। और अनफॉर्चुनेटली जैसे कुछ गाने ऐसे आए थे जिन्होंने युवाओं में एनकरेज, मतलब उत्साहित करने वाला काम किया, पर अभी रेस्ट्रिक्शंस हैं गवर्नमेंट की तरफ से, कम हुआ है, पर डेफिनेटली ये जो पार्टीज हैं जो दोस्तों के बीच में करते हैं उसकी वजह से ये बढ़ता जा रहा है।
1: सर, जैसे आप पार्टीज की बात कर रहे हैं, युवाओं से ही जुड़ा एक सवाल और भी है कि आजकल युवाओं में फ्लेवर्ड हुक्का, फ्लेवर्ड पान का चलन, ई सिगरेट का चलन बढ़ गया है, ये कितना हानिकारक है?
0: कई बार लोग सोचते हैं कि ये तो हुक्का है, फ्लेवर्ड पान है, ये ई सिगरेट है, इसमें क्या होगा, पर सबसे बड़ी खास बात यह है कि यह भी उतना ही खतरनाक है। कारण क्या है कि निकोटिन तो उसमें होता ही होता है जो उसकी आदत डालता है, इसके अलावा उसमें कार्सिनोजेंस होते हैं, हैवी मेटल्स होते हैं जिसमें निकल और ऐसे मेटल्स होते हैं जो कि नुकसान करते हैं, और ये आश्चर्यजनक है कि उतना ही उसकी आदत पड़ती है और उससे होने वाली जैसे हार्ट की बीमारी है, लंग की बीमारियां हैं, कैंसर्स हैं, ये सारी बीमारियां भी वैसी ही बढ़ती हैं जैसे कि सिगरेट से बढ़ती है। ये जो एक चलन है कि उनको लगता है कि ये कम खतरनाक होता होगा, ये कम खतरनाक नहीं है, ये उतना ही खतरनाक है जितना कि सिगरेट और बाकी तंबाकू के प्रोडक्ट्स।
1: डॉक्टर सृष्टि, धूम्रपान हानिकारक है क्योंकि इसमें धुआं शरीर के अंदर जा रहा है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि हम तो खैनी गुटखा का इस्तेमाल करते हैं जो धुआं रहित है।
2: धुआं रहित होने का ये मतलब नहीं है कि वो बेटर है या सेफ है धूम्रपान से। हानिकारक वो भी है क्योंकि जैसे मैम ने बोला, डॉक्टर मानसी ने, चीजें उसमें वही है जो एडिक्टिव है, तो वो खैनी गुटखा को अपने गालों में एक पुड़िया बना के रख देते हैं और वो अपना काम वहां से शुरू करता है। तो जितना धूम्रपान हमारे लंग्स के लिए, हमारी बॉडी के लिए हानिकारक है, उतना ही तंबाकू मुंह के कैंसर के लिए बहुत बड़ा फैक्टर होता है, तो वो भी इक्वली ही हार्मफुल है या हानिकारक है जितना स्मोकिंग होता है।
3: आपने पूछा कि धूम्रपान से वो अंदर जा रहा है तो लोगों को लगता है कि ये ज्यादा हानिकारक है, मगर जब ये चबाने वाला तंबाकू मुंह या गाल में रखा जाता है तो ये हमारे मुंह की जो सलाइवा होता है उसके साथ घुलता रहता है और ये काफी लंबे समय तक रखा जाता है। कम से कम इसे 20 से 25 मिनट कोई भी इंसान जो इसे खा रहा है वो इसे अपने गाल में दबा के रखता है। धीरे धीरे यही जो थूक बनती है इसके साथ में और इसी के जो रसायन सारे हमारे मुंह में बहते हैं वो आधे से ज्यादा शरीर के अंदर जाते हैं, तो जब वो अंदर जाते हैं तो वो हमारे रक्तचाप में जाते हैं और उसी से ही हमारे बाकी सारे शरीर के अंगों को भी नुकसान देते हैं। धूम्रपान से तो सिर्फ लंग्स ही अफेक्ट हो रहे हैं, मगर अगर चबाने वाला तंबाकू खाया जा रहा है तो उससे खून की नली में जाने की वजह से वो हर एक शरीर के भाग को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो ये ज्यादा नुकसानदायक है।
1: डॉक्टर पानसी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, तंबाकू का सेवन वैसे तो किसी को भी प्रभावित कर सकता है, लेकिन बात अगर महिलाओं की करें तो आजकल बड़ी संख्या में महिलाएं इसकी शिकार हैं। कई रिसर्च में भी ये बात सामने आई है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं में खतरा ज्यादा है। कितना खतरा है महिलाओं को?
3: खतरा सभी को है, परंतु महिलाएं ज्यादातर, उनके शरीर पर इसका नुकसान ज्यादा देखा जाता है क्योंकि या तो वो प्रेग्नेंट हैं या फिर उनके जो प्यूबर्टी स्टेजेस हैं उसमें इसका इम्पैक्ट ज्यादा देखा जाता है। वो बदलाव और हार्मोन्स की वजह से जो महिलाओं पे असर आता है वो उसकी मात्रा ज्यादा गंभीर है एज कम्पेयर टू पुरुषों पे। ऐसा नहीं है कि दोनों में से कोई ज्यादा या कम है, मगर उनका प्रभाव, खासकर अगर महिलाएं उसका सेवन ज्यादा कर रही हैं तो उसके शरीर पे जो असर पड़ रहा है वो अधिक है एज कम्पेयर टू मेल्स।
1: और मैम, जो महिलाएं प्रेगनेंसी के टाइम पर धूम्रपान ज्यादा करती हैं उनको आप क्या सलाह देंगे?
3: कोई भी समय सही समय नहीं है धूम्रपान के लिए, मगर प्रेगनेंसी के टाइम पे बिल्कुल ही मना होता है क्योंकि ये देखा गया है कि बच्चे को पूरी तरह से नुकसान दिया जाता है जो महिलाएं इसका सेवन कर रही हैं। जैसे मैंने कहा, रक्तचाप के थ्रू भी बच्चे तक इसका नुकसान पहुंच रहा है और बहुत ज्यादा अबॉर्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर महिलाएं इसे अपनी गर्भावस्था में इस्तेमाल कर रही होती हैं तो।
1: डॉक्टर लोकेश, जिन लोगों की सोच है कि तनाव डिप्रेशन को दूर करने के लिए तंबाकू एक ऑप्शन है, उन्हें क्या कहेंगे?
0: देखिए, जो तंबाकू की जो है तलब, जिसको कहते हैं क्रेविंग कहते हैं जिसको, दो तरह की होती है। एक होती है स्ट्रेस इंड्यूस क्रेविंग, जिसमें स्ट्रेस होता है तो लोग तंबाकू या कोई भी नशा करके तरफ जाते हैं। एक होता है क्यू इंड्यूस क्रेविंग होती है, जब उनको वो परिस्थितियां दिखती हैं तो उनको तलब होती है, जैसे वो पुराना दोस्त मिल गया, वो बस स्टैंड मिल गया या वो जगह मिल गई, या जैसे पार्टीज हैं या कोई अल्कोहल ले रहे हैं, वो सारे ट्रिगरिंग फैक्टर

0: हैं जिसकी वजह से वो लेते हैं। पर सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर हम स्ट्रेस को कारण माने तो तनाव को दूर करने के जो दूसरे तरीके हैं वो ज्यादा बेहतर रहते हैं। जब भी तनाव होता है उसको कम करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है कि अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें, वॉक करें, योगा करें, अपने फ्रूट्स वेजिटेबल्स अपने खाने में लें और उन परिस्थितियों को अवॉइड करने की कोशिश करें जिनसे स्ट्रेस होता है। कुछ लोग होते हैं जब भी कभी उनकी परिस्थितियां ऐसी आती है पार्टिकुलर, जैसे भावनात्मक रूप से वो ट्रिगर हो जाते हैं या किसी परिस्थिति की वजह से होता है, उनको अवॉइड करके और स्ट्रेस रिडक्शन के दूसरे तरीकों पर ध्यान दें जिससे कि स्ट्रेस इंड्यूस क्रेविंग भी ना हो उनको। तलब जैसे कल तो दिमाग खराब हो गया था इसलिए मैंने ले ली, ये वाला स्टेटमेंट बहुत कॉमन होता है लोगों का कि मैंने 2 महीने छोड़ के रखा पर घर में ऐसी एक परिस्थिति हुई जिसके बाद मैंने उसके बाद वापस स्टार्ट कर दिया। तो ऐसी कोई भी परिस्थिति है उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि पिछली बार जब मैंने छोड़ा था कौन कौन सी परिस्थितियां जो मुझे ऐसा करती है, और उसके लिए अपने लाइफस्टाइल में चेंज करें और जरूरत पड़े तो मनोचिकित्सक से सलाह लें कि इस परिस्थिति को मैं कैसे हैंडल कर सकता हूं।
1: डॉक्टर मानसी, तंबाकू के सेवन से ओरल हेल्थ किस तरह से प्रभावित होती है?
2: बहुत प्रभावित होता है। तंबाकू के सेवन से ऐसा मुंह का कोई भाग नहीं है जिसका उस पर असर ना देखा जाए। जैसे बताया गया कि तंबाकू चबाने वालों को हम आसानी से पहचान सकते हैं क्योंकि उनके दांतों का रंग बदल जाता है, लाल ज्यादा दिखने शुरू हो जाते हैं। तंबाकू के चबाने की वजह से दांतों का ऊपरी परत घिसना शुरू हो जाता है तो जिसकी वजह से उनको ठंडा पानी लगना ज्यादा लगेगा, दांत घिसे रहेंगे, दांतों में कीड़े लगने की संभावना बढ़ जाएगी। उसी तरह से मसूड़ों में भी इसका प्रभाव बहुत ज्यादा देखा गया है। मसूड़ों में लालिमा, सूजन बहुत अधिक देखा जाता है। ज्यादा तंबाकू के सेवन की वजह से हड्डी का बैठना होना शुरू हो जाता है तो जिसकी वजह से दांत हिलना शुरू हो जाएंगे, पायरिया लगना शुरू हो जाएगा। लोग बहुत सोचते हैं, ये एक गलत धारणा है कि अगर हम तंबाकू खाएंगे तो हमारे मुंह का स्वास्थ्य सही रहेगा, मगर ऐसा नहीं है। लंबे समय तक इसके सेवन की वजह से मुंह में बदलाव आने शुरू हो जाते हैं, या तो अल्सर के रूप में दिखेंगे या फिर सफेद या लाल दाग के रूप में देंगे। धीरे धीरे खाने में नमक मिर्ची खाना भी दुश्वार हो जाता है और धीरे धीरे मुंह का कम खुलना शुरू होता है जिसकी वजह से गाल में पकाव आना शुरू हो जाता है और मुंह की बनावट है वो कसाव में बदल जाती है और धीरे धीरे वो आवाज में भी बदलाव लाने शुरू हो जाता है। और ये सारी जो बदलाव है ये कैंसर की तरफ निशानियां आदेश देती है। तो अगर ये तुरंत ही डॉक्टर से सलाह ना की जाए और इसका इलाज ना शुरू किया जाए, और जिसका सबसे पहला इलाज दवाई का असर तब आता है इस सिचुएशन में जब तंबाकू छोड़ा जाए, तो सबसे पहले मरीज को ये कहा जाता है कि अब तंबाकू नहीं छोड़ा तो फिर कोई रास्ता नहीं, कोई दवाई भी आप पे काम नहीं करेगी। तो आपने जब तंबाकू छोड़ा उसके बाद ही हम उसको दवाइयों से शुरू करते हैं और धीरे धीरे इसको रोका जा सकता है। बट अगर इसको कंटिन्यू रखा जाए तो फिर ये कैंसर में बदल जाता है, गले और मुंह या जीभ का कैंसर आमतौर से देखा गया है इसके बाद।
1: डॉक्टर सृष्टि, सेकेंड हैंड स्मोक या पैसिव स्मोकिंग, ये स्वास्थ्य के लिए कितना जोखिम भरा है, कैसे बचाव किया जाए?
3: एक तो एक्टिव स्मोकिंग मतलब जब इंसान खुद ही धूम्रपान कर रहा है वो तो हमें पता है कि वो हानिकारक है, पर अगर ये व्यक्ति उस एनवायरमेंट में हो जहाँ पे बाकी लोग भी आसपास स्मोकिंग कर रहे हैं तो वो धुआं हमारे शरीर में जाता ही है, हालांकि हम उसको डायरेक्टली अपने मुंह में नहीं ले रहे हैं पर बाकी लोगों के करने की वजह से वो हमारे सांस लेने से अंदर जा ही रहा है। तो जितना हानिकारक एक्टिव स्मोकिंग है उतना ही हानिकारक पैसिव स्मोकिंग भी है। उसको बचाने के लिए हमें ऐसी जगहें अवॉइड करनी चाहिए जहां पे लोग ऑलरेडी स्मोकिंग कर रहे हैं, स्पेशली अगर वो व्यक्ति खुद ही एक्टिव स्मोकिंग का पार्ट है, और ऐसे लोगों के साथ भी घूमना प्रिवेंट करना चाहिए जहां पे उसको लगता है कि वो लोग, जैसे सर ने बोला हर वीकेंड पार्टीज होती है तो उन लोगों को लगता है कि हम धूम्रपान करेंगे या नशे में बस एंजॉयमेंट के नाम पे करेंगे, तो उस व्यक्ति को उस एनवायरमेंट में जाना भी अवॉइड करना चाहिए।
1: और मैम, सेकेंड हैंड स्मोक या ये पैसिव स्मोकिंग से ओरल हेल्थ पे क्या प्रभाव पड़ता है?
3: ओरल हेल्थ में सबसे ज्यादा हमारे मसूड़ों पे इफेक्ट पड़ना शुरू हो जाता है। तो जितना एक्टिव स्मोकिंग से पड़ता है सेम इफेक्ट हमारे पैसिव स्मोकिंग से पड़ता है, जहां हमारे मसूड़े जो है वो इन्फ्लेमेशन हो जाती है, मतलब जैसे हमारे शरीर पे घाव बनने शुरू होते हैं वैसे हमारे मसूड़ों में भी घाव बनने शुरू हो जाते हैं। पर इसमें एक चीज ये है कि निकोटीन हमारी ब्लड की जो नलियां है उनको कंस्ट्रिक्ट करता है, मतलब ब्लड फ्लो हमारा कम करता है तो मसूड़ों में से खून नहीं आता है, इसलिए लोगों को लगता है कि तंबाकू खाने से हमारा मुंह ज्यादा हानिकारक नहीं हो रहा है। पर ये बहुत ही गलत नोशन है क्योंकि जैसे ही हमारी नसों की नलियां कंस्ट्रिक्ट होने लग जाती कि हमारे पूरे मुंह में ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, तो हमारा पूरा मसूड़ा ब्लैकिश कलर का हो जाता है और जैसा लगता है जैसे कुछ जल रहा है, एंड अलोंग विद इट के जैसे पायरिया लग जाता है, जैसे स्टेनिंग लग जाती है, वो इस कदर की हो जाती है कि उनके पूरे दांत ही लाल हो जाते हैं।
1: डॉक्टर नुकेश, जो लोग इस लत का शिकार हो चुके हैं और

0: से बाहर आना चाहते हैं, कोशिश करते हैं छोड़ने की लेकिन छोड़ नहीं पाते, काउंसलिंग अप्रोचेस कितनी मददगार साबित हो रही हैं?
1: काउंसलिंग जो है वो मदद करती है, जिसको हम कहते हैं मोटिवेशनल एनहेंसमेंट थेरेपी। उसके लिए हर वीक आना है, काउंसलर से मिलना है, साइकोलॉजिस्ट से मिलना है, वो इफेक्टिव होती है। मैं कहना चाहूंगा कि जो तंबाकू छुड़वाने के लिए दवा है स्पेशली, वो दवाएं बहुत कारगर होती है। और हमने देखा है कि जिन लोगों को हम दवा देते हैं वो छोड़ पाते हैं। काउंसलिंग का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि हम उसको मोटिवेट कर रहे होते हैं कि इसके क्या क्या नुकसान है, इससे आपको आगे जाके कितनी बड़ी गंभीर समस्याएं हो सकती है। और ये नहीं है कि सिर्फ आप पी रहे हो, आप अपने बच्चों को, अपने परिवार को, उन सबको भी उसके लिए एक्सपोज कर रहे हैं। क्योंकि सिगरेट वो घर में पीते हैं तो वो धुआं जो है वो बच्चों को भी जा रहा है, उनके भी दिमाग को नुकसान कर रहा है, उनको भी सेकेंड हैंड स्मोक से बहुत सारा नुकसान हो रहा है। तो ऐसे में उनको ये समझाना, फिर उसके बाद उनको ये स्टार्ट करवाना कि अब आप क्या सोचते हैं, डिसीजन मेकिंग उन्हीं की लेनी होती है कि भी क्या डिसीजन बनाना है। ऐसी परिस्थितियों में कई बार हम कहते हैं उनको कि आप अपने और अपने परिवार की हेल्थ से ऊपर क्या रखना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं स्मोकिंग को उससे ऊपर नहीं रखूंगा। तो इस तरह से हम उनको डिसीजन मेकिंग करते हैं। और मैं तो जनरली जो लोगों को एक बहुत सिंपल टिप देता हूँ काउंसलिंग के तौर पे कि एक सिंपल आइडिया है, आइडिया मीन्स तंबाकू छोड़ने का आइडिया। आइडिया में स्टार्ट करते हैं हम आई से, एक एब्रिवेशन है, आई से स्टार्ट करते हैं कि इंटेंट एंड इन्फॉर्मेशन, इंटेंट की मुझे छोड़ना है, ये निश्चित करना है और डेट फिक्स करनी है। बहुत बार लोग कहते हैं छोड़ दूंगा, कल छोड़ दूंगा, एक हफ्ते बाद छोड़ दूंगा, न्यू ईयर पे छोड़ूंगा, डेट फिक्स करनी है कि मुझे छोड़ना ही छोड़ना है, इस दिन से मैं नहीं पीऊंगा। दूसरा है इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन का मतलब है कि हर उस इंसान को इन्फॉर्मेशन देनी है जिसके साथ वो पीते हैं, क्योंकि वही लोग हैं जो ट्रिगर करेंगे, वही लोग कहेंगे यार कोई बात नहीं थोड़ा सा ले लो ऐसे करके, तो उन लोगों को इन्फॉर्म करना कि मैंने छोड़ दिया, मैं नहीं पीऊंगा, मुझे दोबारा आपको पूछना भी नहीं है। दूसरा पॉइंट होता है डी, जिससे कहते हैं डिले एंड डिस्ट्रैक्शन, क्रेविंग की जो अर्ज है, इंटेंस डिजायर जिसको कहते हैं, वो शॉर्ट लास्टिंग होती है। अगर उसको 15 मिनट आधा घंटा डिले कर दिया जाए तो वो चली जाएगी। जब उनके मन में आता है कि मुझे अभी चाहिए तो उनको कहना है कि कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर में ले लूंगा, 15 मिनट बाद ले लूंगा, आधे घंटे बाद ले लूंगा, कि जैसे आया कि भाई मैं इस बस स्टैंड पे जाता हूं और वहां पे दुकान है उससे लेता हूं, यानी कि अभी नहीं लूंगा, कल देखूंगा। डिले करना है। डिस्ट्रैक्शन का मतलब है कि डिस्ट्रैक्ट करना है अपने आप को, जब तलब आ रही है किसी से बात कर लें, कुछ अपना फोन देख लें, कुछ और कर लें ऐसा, जिससे कि किसी घर वालों से बात कर लें, उससे नहीं जिसके साथ पीते हैं, उनके साथ जो पीते नहीं है, जो आपको एनकरेज कर सकते हैं कि यार थोड़ी तलब हो रही है क्या किया जाए, तो कहेगा अरे थोड़ी देर छोड़ दो तो छूट जाएगा, तुमने देखो कहा था तुम छोड़ सकते हो तो छोड़ सकते हो। तीसरा आता है एंगेजमेंट। अगर आपको बोर्डम होती है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग कहते हैं कि बोर हो रहा था तो मैंने एक सिगरेट पी ली, अरे यार मैं वेट कर रहा था 15 मिनट में, तेरे को पता है मैंने दो सिगरेट पी ली। तो अगर बोर हो रहे हैं तो अपने आप को एंगेज करें ऐसी किसी चीज में जो उनके माइंड को एंगेज रखे, उस तरफ जाने ना दे। और फोर्थ पॉइंट ए पे आता है एप्रिसिएशन एंड अवॉइडेंस। अवॉइडेंस कैसे? उन सारी परिस्थितियों से जिनसे ट्रिगर होता है, वो पार्टी जिनसे ट्रिगर होता है, वो दोस्त जिनसे ट्रिगर होता है, जो परिस्थितियां जिनसे ट्रिगर होता है, वो पान की दुकान या वो दुकान जिसपे ट्रिगर होता है और वहां से वो कुछ सामान लेते हैं, दुकान वाला भी कहता है 10 रुपए बच गए क्या एक सिगरेट दे दूं, ऐसी दुकान पे नहीं जाना है उनको, उनको अवॉइड करना है। और अगर उन्होंने छोड़ दिया है, सपोजली 2 दिन छोड़ दिया, तो अपने आप को एप्रिशिएट करना है कि मैंने 2 दिन छोड़ा है, मैं 2 दिन और छोड़ सकता हूं। तो एप्रिशिएशन से वो 4 दिन हो जाएंगे, 4 के बाद कहेगा कि मैं 4 दिन छोड़ सकता हूं तो 4 दिन और छोड़ सकता हूं। ये जो आइडिया है सिंपल, इसके बाद भी लोगों को अगर संभव नहीं होता है तो मनोचिकित्सक से सलाह लें और ये छूट सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कई लोग इस बात से निराश हो जाते हैं कि अब तो ये मेरे जिंदगी के साथ ही जाएगा, इस तरह की निराशा नहीं रखनी है, मैं विश्वास दिलाता हूं कि ये छूट सकता है।
0: सर, ये जागरूकता और रोकथाम कार्यक्रम और हेल्पलाइन किस तरह से सहायक होते हैं?
1: देखिए, मैं गवर्नमेंट ने जितने इनिशिएटिव लिए हैं बहुत ही अप्रिशिएबल है। उन्होंने बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट बंद किए, बहुत सारे जगहों पर रेस्ट्रिक्शंस किए, स्कूल प्रीमिसेस में नहीं होना चाहिए, पब्लिक प्लेसेस पे नहीं होना चाहिए। उन्होंने क्विट लाइन दी है कि 2356 जिसको है उस पे क्विट लाइन पे कॉल करके बात कर सकते हैं कि कैसे छुड़वाना है। और इसी को ये चाहिए कि मैं बार बार प्रयास कर रहा हूँ, ये मैं एक बताना चाहता हूँ कि छोड़ने का प्रयास जो है कई बार करना पड़ता है। कुछ लोग सोचते हैं मैंने 2 बार प्रयास कर लिया मेरे से नहीं छूटेगा, निराश हो जाते हैं। जब तक लोग 5 से 6 बार ट्राई नहीं करते हैं छोड़ने की, तब तक छूटता नहीं है। और छूटना तभी मानना है जब 1 साल हो जाए। जो लोग सोचते हैं ना 1 महीने में छोड़ दिया अब तो मैं छूट गया और कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं, दोस्तों के साथ बैठते हैं फिर ले लेते हैं, छोड़ना तभी मानना है जब 1 साल हो जाए। क्योंकि 1 साल में जाके दिमाग में वो बदलाव आएगा जो आपको निकोटिन और जो तंबाकू की लत है उसको कम करने में मदद करेगा।
0: डॉक्टर मानसी, जो लोग तंबाकू छोड़ना चाहते हैं, घर परिवार के सदस्य और दोस्त उनकी कैसे हेल्प कर सकते हैं?
2: बिल्कुल, जैसे हम कहते हैं कि जब बच्चा बीमार होता है तो दवा के साथ घर परिवार का सहयोग बहुत जरूरी होता है, प्यार बहुत जरूरी है। तो उसी तरह इस तंबाकू की लत को

0: छोड़ने के लिए भी दोस्तों और फैमिली का सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। जब हमें छोड़ने की डिसीजन ले लिया होता है या हम मन बना लेते हैं कि हमें तंबाकू छोड़ना है
1: जी।
0: तो सबसे पहले हम मरीज को ये सलाह देते हैं कि वो अपने घर के अंदर से हर जगह से तंबाकू और उससे संबंधित सभी चीजें, चाहे वो मैचेस की डब्बिया हो या फिर तंबाकू का पैकेट या फिर वो सिगरेट का पैकेट, वो सब उसे वहां से निकाल के बाहर करना है, ताकि ना घर में उससे संबंधित कोई बात हो और घर परिवार उसके साथ इस पूरी जर्नी में उसके साथ रहे। जब आपका मन बन जाए तो आप अपने परिवार और अपने दोस्तों को ये बात जरूर बताएं कि आपने अब तंबाकू ना लेने का निश्चय कर लिया है, वो आपका सहयोग जरूर बनेगा।
2: बहुत बार परिवार वालों को लगता है कि अभी 20 दिन छोड़ी थी फिर स्टार्ट कर दी, फिर महीना छोड़ा फिर स्टार्ट कर दी, तुम तो छोड़ना ही नहीं चाहते। मैं कहना चाहता हूं कि उनको क्रिटिकल नहीं होना है, उनको अप्रिशिएट करना है कि आपने 10 दिन छोड़ दी इसका मतलब तुम 10 दिन और छोड़ सकते हो। ऐसा नहीं कहना कि वापस स्टार्ट कर दी ना तुमने। क्रिटिकल जो कमेंट हैं वो उनको स्ट्रेस देते हैं और फिर वो कहेंगे अगर आप ये सोचते हो तो मैं फिर पीता ही रहूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। तो इसलिए अप्रिशिएबल होना है और अप्रिशिएट करना है। जितना अप्रिशिएट करेंगे, जितना एनकरेज करेंगे, छोड़ने की संभावना बढ़ेगी, क्रिटिकल होंगे कम हो जाएगी।
1: जी, परिवार का सहयोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है।
0: ऑलवेज मेक पॉजिटिव कमेंट, जितना पॉजिटिव ज्यादा से ज्यादा आप उनको सहयोग दे सकते हैं।
1: जी, जी,
0: क्योंकि
1: जी,
0: वो मानसिकता से मतलब बीमार है, एक तरह से उनको सहयोग की जरूरत है। कोई भी नेगेटिव कमेंट इस चीज के लिए सिर्फ आपको और उनको नुकसान ही पहुंचाएगा। तो एज मच एज पॉजिटिव सपोर्ट फैमिली दे सकती है वो देना चाहिए।
1: मैम, जो लोग तंबाकू छोड़ना चाहते हैं कहाँ वो हेल्प ले सकते हैं, हेल्पलाइन नंबर्स क्या हैं?
0: सरकार ने बहुत से हेल्पलाइन बनाए हैं जो क्विट लाइन सर्विसेज की तरह से आप उनको संपर्क कर सकते हैं। जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल में किया जाता क्विट लाइन नंबर है, आप उसे नोट कर सकते हैं, 1800112356। मैं इसे रिपीट कर देती हूँ एक बार, 1800112356। ये सरकार की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का क्विट लाइन सेंटर है। इसके अलावा हर डेंटल कॉलेज में सरकारी या प्राइवेट एक टोबैको सिजेशन सेंटर चलाया जा रहा है, जहां पर भी जाकर आप उनसे परामर्श कर सकते हैं और आसानी से उनके साथ संपर्क करके अपनी इस आदत या लत को छुड़वाने में मदद ले सकते हैं।
1: डॉक्टर सृष्टि, तंबाकू को लेकर मिथ्स क्या है?
3: सबसे पहला मिथ तो ये है कि तंबाकू से हमें एंजॉयमेंट और खुशी मिलती है, लोगों को ऐसा लगता है, पर उनको ये नहीं पता है कि वो एक्चुअली उनकी जिंदगी और उनसे जुड़े जितने भी लोग हैं उसको बर्बाद या खराब ही कर रहा है।
1: जी।
3: सेकंड चीज ये है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि उनको लगता है कि तंबाकू खाते हैं तो हमारे मुंह में कोई बीमारी ही नहीं होती, पर इट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस। वो एकदम से इंसान को नहीं समझ में आता है कि बीमारी स्टार्ट हो रही है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि चोट लगी और हमें घाव दिख गया। इट्स अ प्रोसेस जहां से वो धीरे धीरे स्टार्ट होके अल्टीमेटली जब तक उनको नहीं दिखता कि मुंह में कैंसर शुरू हो गया है, वो नहीं मानते हैं कि बीमारियां शुरू हो रही हैं।
2: जो यंगस्टर्स हैं उनको लगता है कि मेरा अटेंशन, कंसंट्रेशन और मेमोरी बढ़ जाती है, जब मैं पी लेता हूं तो मुझे उसके बाद अच्छी पढ़ाई होती है, मैं कॉन्सेंट्रेट हो सकता हूं। ऐसा नहीं है। निकोटिन अल्टीमेटली उनका कॉन्सेंट्रेशन और लर्निंग को, मेमोरी को इम्पेयर करता है, न कि बढ़ाता है। जो शॉर्ट टर्म में उनको दिख रहा है वो लॉन्ग टर्म में उनको नुकसान करता है। दूसरा, उनको एक बहुत बड़ा मिथ है लोगों को कि सुबह जब तक पहली सिगरेट नहीं मिल जाएगी या तंबाकू नहीं मिलेगा पेट साफ नहीं होगा मेरा।
1: जी,
2: ये बहुत बड़ा मिथ है। मैं उन सब लोगों को कहना चाहता हूँ, इसको कहते हैं गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स। तो इसके लिए क्या है कि अगर वो ब्रश भी करेंगे, अगर वो सौंफ भी ले लेंगे, वो भी उनके गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स को इनिशिएट करके उनको जो उनको कॉन्स्टिपेशन या जो प्रॉब्लम होती है वो ठीक कर सकता है। तो इसलिए जो सबसे बड़ा मिथ है कि हमारी मेमोरी बढ़ती है, कि इसके बिना मेरा पेट साफ नहीं होगा। तीसरा बड़ा मिथ है कि ये छोड़ा नहीं जा सकता। ये बहुत सारे लोग मानते हैं कि ये बहुत सारे लोग प्रयास कर रहे हैं पर ये छोड़ा नहीं जा सकता है। कई बार लोग क्या करते हैं कि जो निकोटीन के जो गम्स आते हैं उनको यूज करते हैं कुछ टाइम के लिए, उनको लगता है इसे छूट जाएगा। उसको सिस्टमेटिक तरीके से जब तक नहीं होगा, मनोचिकित्सक की सलाह के तरीके से नहीं होगा, तब तक नहीं छूट जाएगा। एक या दो आपने कोई चिंगम ले लिया या कोई लोजेंजेस ले ली तो इसका मतलब नहीं छूट जाएगा। उसके लिए सिस्टमेटिक तरीके से जब मनोचिकित्सक से सलाह लेंगे, और उसको निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी कहते हैं, उसके बाद दूसरे तरीके आते हैं, दूसरी दवाइयां आती है, काउंसलिंग आती है जो छुड़वा सकते।
0: बहुत लोग ये मानते हैं कि ये खाने की भूख को भी कम करती है, तो हमारे देश में इस चीज को आधे तक ज्यादा लोग, खासकर चबाने वाले तंबाकू के जो फॉर्म है उनको बहुत इसी तरह से खाया जाता है कि हमारी एक टाइम की भूख कम हो जाएगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है, ऐसा कुछ नहीं होता है। समय भर के लिए आपकी भूख कम हो जाएगी, आप एक टाइम का खाना कम कर लेंगे, मगर ये पूरे पेट और अंतड़ियों को इस तरह से जला देगा इसका रसायन कि आपको बहुत नुकसान देने वाला है लंबे समय में।
3: जिसमें एक और चीज है कि जो लोग पढ़ाई नहीं करते हैं रात भर, जिनको आदत होती है पढ़ने की, वो लोग सोचते हैं कि अगर हम धूम्रपान करेंगे तो हम रात रात भर

0: तक जिसको बोलते हैं ऑल नाइटर्स, वो पुल ऑफ करके पूरी रात पढ़ के सुबह हम एग्जाम लिख सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा कॉलेज स्टूडेंट्स के अंदर एक ट्रेंड है जो लोग फॉलो करते हैं कि हम रात में ये करेंगे और सुबह तक हम उठे रह के एग्जाम अच्छे से लिखाएंगे। तो ये टीनेजर्स में बहुत पाया जाता है।
1: अच्छा मैम, एक मिथ ये भी है कि कई लोग सोचते हैं कि धूम्रपान करने से या तंबाकू लेने से हम लोग स्लिम ट्रिम रहेंगे, एक ये मिथ ये भी
2: आजकल
1: है।
2: के यूथ में ये भी बहुत
1: हाँ, तो इसपे आप क्या
3: कहेंगे? इसमें ऐसा है कि बहुत एपेटाइट सप्रेसेंट तो है
1: जी,
3: है ना। अब क्या है कि बहुत सारे स्पेशली टीनेजर्स जो हैं वो वेस्टर्न पॉपुलेशन में भी देखा गया कि जो स्मोकिंग एक बार छोड़ते हैं थोड़ा सा वेट बढ़ता है
1: जी,
3: और उस वेट से वो डर जाते हैं
1: जी,
3: और कि वेट बढ़ गया इससे इसलिए वापस स्मोकिंग स्टार्ट कर देते हैं। वो वेट बढ़ता नहीं है, वो इनिशियल टाइम में जो सप्रेसेंट का काम कर रही है वो ठीक है, अल्टीमेटली रिसेट हो जाएगा।
1: एक आखिरी सवाल सर आपसे, किसी भी तरह के तंबाकू, अल्कोहल या मादक पदार्थों का सेवन किसी व्यक्ति को मानसिक और भावनात्मक रूप से कैसे कमजोर बनाता है और वो अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे अच्छा कर सकता है?
3: देखिए, बहुत बार लोग है ना अपने स्ट्रेस की वजह से या किसी कारण की वजह से दोस्तों के साथ में पार्टी करने के लिए क्यूरोसिटी में स्टार्ट करते हैं। अल्टीमेटली क्या होता है कि वो लोग डिपेंडेंट हो जाते हैं इन नशे के ऊपर मानसिक और भावनात्मक रूप से। जैसे इमोशनली डिस्टर्ब हुए, भावनात्मक रूप से कोई गड़बड़ हुई, किसे कुछ भी घटना है, जैसे टीनेजर्स में कोई फ्रेंड से कुछ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बहुत प्रॉब्लम इश्यूज हैं, उनको हुआ, उन्होंने स्टार्ट किया। जो स्ट्रेस को हैंडल करने का ये तरीका है वो एक्चुअली वो स्ट्रेस बढ़ाता है। अल्कोहल जो है वो और स्ट्रेस बढ़ाता है, टोबैको भी और स्ट्रेस बढ़ा देता है, क्योंकि वो मेंटल हेल्थ को खराब कर देता है, मेंटली वीक कर देता है।
1: तंबाकू के सेवन के दुष्प्रभावों पर इतनी सारी आवश्यक जानकारी देने के लिए आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर विल पावर मजबूत हो तो व्यक्ति किसी भी तरह की परेशानी या बुरी लत से आसानी से बाहर आ सकता है। बस कोशिश है एक शुरुआत की, वो शुरुआत कल से नहीं आज से कीजिए, बल्कि अभी से कीजिए और अपने जीवन में परिवर्तन देखिए। नमस्कार।
4: तंबाकू के कुप्रभाव, अभी आप विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर ये विशेष परिचर्चा सुन रहे थे। हमारे प्रतिभागी थे डॉक्टर लोकेश सिंह शेखावत, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री डॉक्टर आरएमएल हॉस्पिटल, डॉक्टर मानसी अत्री एसोसिएट प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री एंड टोबैको सेशन ईएसआईसी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, और डॉक्टर सृष्टि ग्रोवर डेंटल सर्जन। संचालन कर रही थी टीना शर्मा। इसी के साथ हमारी आज की स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत अब यहीं समाप्त होती है। फिर मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए स्वीकार करिए हमारा नमस्कार।
5: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।
6: अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम धरती आकाश। धरती आकाश के इस अंक में आप सबका स्वागत है। इस महीने दिल्ली सहित उत्तर भारत में भीषण गर्मी का प्रकोप रहा, ऐसे में चर्चा हो रही है नौतपा गर्मी की। आखिर क्या है, कब कब होता है, इसके क्या कारण हैं और बचने के उपाय सावधानियां क्या होगी, इन सब पर जानने के लिए सुनते हैं ये वार्ता नौतपा का वैज्ञानिक विश्लेषण, प्रकृति का संतुलन या चेतावनी। वार्ताकार है स्वास्थ्य पत्रकार निशि भाट।
7: अगर हम बात करें मौसम की तो जैसा कि आप देख रहे हैं, तपती धूप, तेज गर्मी, लू के थपेड़ों ने लोगों को घरों में कैद कर दिया है। पूरे उत्तर भारत में गर्मी का प्रचंड रूप दिख रहा है। देश के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान 45 से 46 डिग्री पहुंच गया है। इस बीच नौतपा भी शुरू हो गया है। नौतपा वह समय होता है जबकि सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है। गर्म हवाएं धरती से अधिक ऊपर नहीं उठ पाती और सूरज की तेज, बहुत तेज रोशनी धरती को चीरती हुई जनजीवन को प्रभावित करने लगती है। दिन के साथ ही रातें भी गर्म होने लगी है। आमतौर पर इसका असर मई के अंतिम सप्ताह में और जून के शुरुआती दिनों में रहता है। अब हम प्रश्न करें तो गर्मी, नौतपा, हीट वेव, सबका जिम्मेदार कौन है? हाल ही के वर्षों में उत्तर भारत में हीट वेव और नौतपा जैसी परिस्थितियां बढ़ी हैं। भौगोलिक कारणों को देखें तो इस साल अल नीनो को इसकी प्रमुख वजह बताया जा रहा है, जो विषुवतीय प्रशांत महासागर से उत्पन्न हुआ, क्योंकि भूमध्य रेखा की व्यापारिक हवाएं कमजोर हो गईं, जिससे गर्म पानी दक्षिण अमेरिका के पूर्व की ओर बह गया। लेकिन इसे केवल एक वजह मानना अधूरा होगा। इसके साथ

कि जलवायु परिवर्तन, शहरीकरण, पेड़ों की कटाई भी धरती के अत्यधिक गर्म होने के कारण माने गए हैं। सबसे पहले समझते हैं अल नीनो क्या है। यह प्रशांत महासागर के मध्य और पूर्वी हिस्से के समुद्री जल के असामान्य रूप से गर्म होने की स्थिति है। यह समुद्र का तापमान बढ़ता है तब वैश्विक वायुमंडलीय परिसंचरण भी बदल जाता है। इसका असर भारत के मानसून, हवा की दिशा, नमी और तापमान पर पड़ता है। भारत में अक्सर अल नीनो के दौरान मानसून कमजोर पड़ता है और उत्तर पश्चिम तथा मध्य भारत में गर्म और शुष्क हवाएं अधिक प्रभावी हो जाती हैं। यही कारण है कि राजस्थान, दिल्ली, यूपी, बिहार और मध्य भारत में लू का असर सबसे अधिक दिखाई देता है। वैज्ञानिक दृष्टि में नौतपा कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि यह सूर्य की स्थिति और पृथ्वी के मौसमी चक्र से जुड़ी प्राकृतिक घटना है। मई के अंतिम सप्ताह में सूर्य की किरणें भारतीय उपमहाद्वीप पर लगभग सीधी पड़ती हैं, जिससे जमीन तेजी से गर्म होती है। यदि इसी समय अल नीनो सक्रिय हो जाए तो वातावरण में नमी कम हो जाती है और गर्मी कई गुना अधिक महसूस होने लगती है। इसलिए अब पहले की तुलना में नौतपा अधिक तीव्र और लंबा हो गया है। अब प्रश्न उठता है कि क्या यह संतुलन बनाने का प्रकृति का अपनी तरह का तरीका है। दार्शनिक और पारिस्थितिक दृष्टि से देखें तो प्रकृति हमेशा संतुलन बनाने की कोशिश करती है। पृथ्वी का तापमान एक सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम की तरह काम करता है। जब किसी क्षेत्र में अत्यधिक प्रदूषण, जंगल की कटाई, कंक्रीट का विस्तार, कार्बन उत्सर्जन और प्राकृतिक संसाधनों का दोहन बढ़ता है, तब प्रकृति आपदाएं जैसे हीट वेव, बाढ़, सूखा, चक्रवात अधिक तीव्र होने लगते हैं। इसे प्रकृति की प्रतिक्रिया कहा जा सकता है। लेकिन वैज्ञानिक यह नहीं कहते कि पृथ्वी हमें सजा देती है, बल्कि यह भौतिक तरीका है। हम जितनी अधिक ग्रीन हाउस गैसें वातावरण में डालते हैं, पृथ्वी उतनी ही अधिक गर्म होती है। फिर अल नीनो जैसी प्राकृतिक घटनाएं उस गर्मी को बढ़ा देती हैं। इसलिए आज जो हीट वेव का प्रकोप है, वह प्राकृतिक चक्र व मानव जनित जलवायु परिवर्तन दोनों का संयुक्त परिणाम कहा जा सकता है। यहाँ अहम बात यह है कि पहले नौतपा की गर्मी के बाद अच्छी बारिश का पारंपरिक संबंध माना जाता था, क्योंकि तीखी गर्मी से निम्न दबाव गति, लो प्रेशर मजबूत होता है, जो मानसून को खींचने में मदद करता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। जलवायु परिवर्तन के कारण यह संतुलन अस्थिर हो गया है। कहीं अत्यधिक बारिश है तो कहीं सूखा है, या कहीं अधिक लंबे समय के हीट वेव के दौर देखने को मिल रहे हैं। वर्तमान स्थिति हमें एक चेतावनी भी देती है कि शहरों में हर एक क्षेत्र को बढ़ाना होगा, जल संरक्षण करना होगा, कार्बन उत्सर्जन कम करना होगा, अर्बन हीट आइलैंड के प्रभाव के कारण कंक्रीट की इमारतों और काली सड़कों के निर्माण पर भी नकेल कसनी पड़ेगी। सड़कों पर गाड़ियों की भारी भीड़ भी गर्मी को अत्यधिक बढ़ाती है, जहरीला धुआं छोड़ती है, जिसे निश्चित रूप से कम करना होगा। बड़े शहरों में लगे अरबों एयर कंडीशनर से निकलने वाली गर्म हवाएं भी धरती को गर्म करती हैं, इसे भी नियंत्रित करना होगा। और हीट वेव को केवल मौसम से नहीं बल्कि एक स्वास्थ्य आपदा की तरह भी देखना होगा। जी हां, स्वास्थ्य आपदा की तरह देखने का आशय यह है कि इस दौरान बहुत सारी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी होती हैं। घर से बाहर निकलने वालों के लिए हीट वेव यानी कि लू से बचना एक अहम चुनौती बन जाता है। स्वास्थ्य पैरामीटर की बात करें तो हीट स्ट्रोक में सबसे पहले मरीज के शरीर का तापमान जांचा जाता है। इसके बाद अस्पताल में पहुंचने के बाद 150 लीटर पानी और 70 किलो बर्फ के टब में मरीज की गर्दन को छोड़कर बाकी हिस्से को डिप किया जाता है, जिससे कि उसके सर को अत्यधिक इमीडिएट ठंडक ना पहुंचे, लेकिन बाकी जो शरीर है उसको एक सामान्य टेम्परेचर दिया जा सके। सिर को ठंडा करने के लिए स्पॉन्ज से धीरे धीरे सर पे पानी डाला जाता है। निरंतर मरीज के शरीर को तापमान को नापा जाता है। इसके दो तरीके हैं, एक तो थर्मामीटर जो हम टब में लगाते हैं, दूसरा तरीका एक शरीर के तापमान को नापने का होता है मल द्वार के जरिए। दोनों ही तरीकों से जब मरीज के शरीर का तापमान 100 डिग्री तक पहुंच जाता है, इस स्थिति को हम सामान्य स्थिति बनाते हैं। इसके बाद मरीज को वेंटिलेटर या नेक्स्ट में जो बेड होता है उस पे शिफ्ट कर दिया जाता है। लेकिन इस स्थिति में भी डॉक्टर लगातार मरीज के तापमान पर निगरानी रखते हैं कि उसका इमीडिएट कहीं शरीर का तापमान बढ़ ना जाए या कम ना हो जाए। शरीर का तापमान सामान्य होने के बाद मरीज को लगभग आधे से एक घंटे के बीच में नॉर्मल होने दिया जाता है। पानी दिया जाता है, ठंडा लस्सी, दूध वगैरह दिया जाता है। इस दौरान भी मरीज का तापमान गिर सकता है, लेकिन मॉनिटरिंग के बाद ही उसे घर जाने की इजाजत दी जाती है। हीट स्ट्रोक के प्राथमिक इलाज सबसे ज्यादा जरूरी है। अब हमने जो अभी बात करी वो ये बात करी कि हम जब अस्पताल पहुंच गए तो डॉक्टर ने क्या इंटरवेंशन किया, लेकिन इससे पहले क्या है, क्योंकि मरीज को पता नहीं है कि वो हीट स्ट्रोक के संपर्क में आ गया। तो जो हमारी बातचीत हमने की डॉक्टर से, उससे पता चला कि हीट स्ट्रोक के प्रारंभिक इलाज का सबसे अहम योगदान होता है। हीट स्ट्रोक में प्रारंभिक इलाज में देरी होने पे मरीज को किडनी फेलियर हो सकता है। इनमें हम दो तरह का इलाज देते हैं, पहले तो उन्हें प्राथमिक और उसके बाद दूसरा पेरिफेरल इलाज दिया जाता है। इस समय मरीज का शरीर बहुत गर्म हो जाता है, इसलिए जरूरी यह है कि जो भी मरीज के आसपास हो, सबसे पहले वह मरीज को पंखा हाके ठंडे पे यानी कि बाजू के नीचे थोड़ा सा बर्फ लगाएं और साथ ही उसे ठंडी यानी छांव वाली जगह पे ले जाएं। इससे होगा कि मरीज को अस्पताल पहुंचने से पहले ही थोड़ा बहुत सामान्य किया जा सकेगा, जिससे कि बाकी चीजों पे हम काम कर सकते हैं। अगर हमें हीट स्ट्रोक में इलाज ना मिले, कहने वाली बात

0: है कि बहुत सारे जो आम राहगीर होते हैं उन्हें पता ही नहीं लगता है कि वो हीट स्ट्रोक की चपेट में आ गए। तो डॉक्टर कहते हैं कि अगर हमने किसी भी मरीज का हीट स्ट्रोक में सही समय पर इलाज नहीं दिया तो इससे मरीज का किडनी फेलियर भी हो सकता है। इसलिए सबसे पहले मरीज अपना सुध-बुध खो जाता है, कई बार उसका अपनी बातों पर भी नियंत्रण खो जाता है, वो कांपने लगता है, बड़बड़ाने लगता है, या फिर उसका बोलने का सेंस होता है वो खत्म हो जाता है। इस स्थिति को गंभीर स्थिति कहा जा सकता है। डॉक्टर्स इस बात पर भी विश्वास करते हैं कि हमें अपने भी बचाव के प्रयास लगातार करते रहने चाहिए। इसके लिए हमें लगातार लस्सी और आम पन्ना का इस्तेमाल करें। अब लस्सी और आम पन्ना इसलिए कहा जाता है कि केवल और केवल पानी पीने से आप हीट स्ट्रोक से नहीं बच सकते, क्योंकि गर्मी में पसीना आने के बाद हमारे शरीर का सोडियम स्तर भी लो होता है। सोडियम हमें नमक से मिलता है, इसीलिए केवल पानी पीने की जगह आप ऐसा पेय पदार्थ पिएं जिसमें आप लस्सी या पन्ना भी ले सकते हैं, या फिर एक ग्लास पानी में एक चम्मच चीनी और आधा चम्मच नमक मिला के भी आप पी सकते हैं। उससे फायदा ये होगा कि आपका जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है ना शरीर का, वो सामान्य रहेगा और आप किसी भी तरह के लू की स्थिति में तुरंत चपेट में नहीं आएंगे।
1: हालांकि भारत मौसम विभाग ने 29 मई को कहा है कि उत्तर पश्चिमी भारत के अधिकांश भागों में चल रही उष्ण लहर थम गई है और 30 मई से मध्य भारत के अधिकांश भागों में भी इसके थमने की संभावना है। 1 से 4 जून तक उत्तर पूर्वी भारत और दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में छिटपुट भारी वर्षा की संभावना है। 29 से 31 मई के दौरान उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत में तूफानी हवाओं के साथ मध्यम से गंभीर गरज चमक की संभावना है। और अब सुनिए राधा गुप्ता से कुछ पर्यावरण संबंधी कविताएं।
2: कविताएं विज्ञान की एक ऐसी काव्यात्मक अभिव्यक्ति है जो कठिन तथ्यों को सरल शब्दों में ढाल देती है, जो विज्ञान संचार को अधिक सुगम, अधिक रोचक और अधिक ग्राह्य बनाती है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2026 को मनाया जा रहा है। इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस सेलिब्रेशन की मुख्य थीम पृथ्वी के जलवायु संकेतों और मानवता के इस पर प्रतिक्रिया पर केंद्रित रहेगी। तो आज इसी संदर्भ में मैं अपनी इस रचना के माध्यम से आपको ले चलती हूँ प्रकृति और मनुष्य, अर्थात माँ और पुत्र के संवाद स्थल पर, जहाँ पुत्र मनुष्य अपनी माँ प्रकृति का जन्म दिवस मनाना चाहता है। माँ, तूने मनाए कई जन्मदिन, आज तेरा भी दिन मैं मनाऊंगा। किया जो तूने मेरे लिए सब, वो सारा कर्ज चुकाऊंगा। माँ प्रकृति, 5 जून मैं पर्यावरण दिवस मनाऊंगा। माँ पहले थोड़ा मुस्काई, कुछ आंखें नमसी हो आई, बोली अश्रु आंचल में समेट कर, रुद्र रुदन दोनों को सहेज कर। पुत्र, कहो भला आज तक माँ का कर्ज किसी ने चुकाया है? मैंने अपनी रगों से सींचा तुझे, तू मेरा कर्ज उतारने आया है। क्या लौटा सकता है मुझे मेरा यौवन, जो तुझ पर बलिदान किया? हरी भरी धरती, वो स्वच्छ हवा, जिसको तुझ पर मैंने वार दिया। निरुत्तर सा खड़ा वो मानव, शर्म से सर झुकाया था। देखो, विनाश का कारक मानव प्रकृति का कर्ज उतारने आया था। जो कर सको प्रकृति पर एहसान, तो इतना ना मुझको बर्बाद करो, मेरी जमी जल और वायु को अपने लालच से आजाद करो। बस यही उपहार मुझे दे दो, जो सदा लुटाते आए हो, वृक्ष की छैया कर दो सर्वत्र, जिसको काटते आए हो। प्लास्टिक पन्नी को अलविदा कर, कपड़े का थैला अपनाओ, मेरे जीवों की घुट्टी सांसों से कार्बन की परत दूर हटाओ। भूल का प्रायश्चित करें सभी, एक दिन नहीं हर दिन हरियाली हो, हवा नदी जमी हो शुद्ध स्वच्छ, चारों तरफ खुशहाली हो। समझे प्रकृति के संदेश, गिरते जलवायु स्तर को उभारे हम, बने मानव मानवता सहेज कर, माँ प्रकृति का कर्ज उतारे हम। तो मेरे श्रोतागणों, अगर हम सच में माँ प्रकृति के लिए कुछ करना चाहते हैं तो उसे सहेज कर रखें। साथ ही हम चर्चा करेंगे कि विज्ञान वरदान है या अभिशाप। इस धरा को जब विज्ञान मिला, मानव मस्तिष्क को मान मिला, केवल धरती के भीतर ही नहीं शोध के लिए आसमान मिला। कहीं पारस मिला, कहीं पत्थर, कहीं कड़वे तेल की धार मिली, जब औजारों पर हाथ रखे तो आविष्कारों की कतार मिली। मानव फिर पल पल बढ़ता गया, विज्ञान की सीढ़ी चढ़ता गया, कोई सही गलत का भान नहीं, अपने ही नशे में बढ़ता गया। कल कहीं नहीं थी कल, लेकिन अब कल ही कल यहाँ दिखती है। ऊंचे ऊंचे कंक्रीट के वन, डाली ढूंढे।

नहीं दिखती है। विज्ञान की गोद में बिठा लिया, एक नया विश्व ही बना लिया। क्या सही क्या नहीं सही, यह तो मस्तिष्क से मिटा दिया। यह धरा भी कब तक धैर्य धरे, यह रोष अपना दिखाती है। कहीं भूकंप से कांपता जीवन, तो कहीं सुनामी तड़पाती है। ये अपने ही कर्मों का फल कि अम्ल वर्षा होने लगी। इस बार सुनो, स्मोग से तो दिल्ली ही धुएं में खोने लगी। विज्ञान की शक्ति को परखा, पर असर धरा पर ना जाना। परमाणु बम का आविष्कार, जैसे खुद फांसी चढ़ जाना। बढ़ जाना यूं आंखें मूंदे, विज्ञान पकड़ यह ठीक नहीं। हम करे तबाही और भोगे आने वाले, यह ठीक नहीं। आंखें खोलो अंतर मन की, विज्ञान ज्ञान है विवेक का। है जन जन का विज्ञान, यह है अमृत नहीं किसी एक का। विवेक को अपनाएं हम, संयम से हम काम लें। थोड़ा हम इसका उपयोग करें, कुछ भविष्य के लिए संभाल लें। और अब एक और कविता आपके लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, संतुलित आहार पर। शरीर को रोगों से बचाए, करे ऊर्जा का संचार। तन सृजन में हो सहयोगी, वही है संतुलित आहार। संतुलित आहार, बैलेंस डाइट, वही है जिसमें हम बॉडी बिल्डिंग की भी बात करें, जिसमें प्रोटेक्टिव फूड भी हो और एनर्जी गिविंग फूड भी हो। और अब हम बारी बारी इस पर चर्चा करेंगे। ABCD तो हमने सीखी, अब विटामिनों में इन्हें स्वीकार करो। ए रतौंधी, बी बेरी बेरी, सी स्कर्वी, डी से रिकेट्स रोगों का प्रतिकार करो। ई और के को भी पाने को, पीली हरी सब्जियां हम खाएं। खनिज लवण को भी शामिल कर, हर बीमारी को दूर भगाएं। शरीर सृजन को उचित गति दें, दुग्ध उत्पाद दालें अपनाएं। मछली और अंडे से भी प्रोटीन को शरीर में पहुंचाएं। ऊर्जा का भरपूर स्रोत, वसा कार्ब्स को पहचानें। सभी अनाजों का करें सेवन, घी तेल से शक्ति हम मांगे। रेशे की भूमिका भी कभी न जाए भूल, पाचन को दे गति, ऐसे फल खाएं भरपूर। जल बिन ना जीवन कहीं, बात नहीं ये अनजानी। दो तिहाई धरती और दो तिहाई हम भी पानी। पानी बिन ना चले क्रिया, बिन पानी सब सुन। 7 से 8 गिलास पानी पिए सभी जरूर।

हुनर पीछे गाने फिल्म में गोरा और काला इबारतंदाज राजेंद्र कुमार, हेमा मालिनी, रेखा व प्रेमनाथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर आज सुबह बिहार के गया पहुंचे। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। राष्ट्रपति के रूप में उनकी ये पहली भारत यात्रा है। म्यांमार के राष्ट्रपति ने गया में महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद वे नई दिल्ली पहुंचेंगे। उनका आज शाम विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात का कार्यक्रम है। म्यांमार के राष्ट्रपति कल म्यांमार भारत व्यापार मंच में भाग लेंगे। सोमवार को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। कल नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस संबंध में जानकारी दी।
1: म्यांमार के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता इन संबंधों को और मजबूत करने के बारे में चर्चा करेंगे। इस यात्रा का एक व्यापारिक पहलू भी है, जिसमें दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। ये एक आधिकारिक यात्रा है।
0: सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा के बीच सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल नई दिल्ली में कहा कि देश में एलपीजी की कमी की कोई सूचना नहीं है। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि खाड़ी और पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास भारतीय नागरिकों को समय पर सहायता प्रदान कर रहे हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने आज शाम विधायक दल की बैठक करेंगे। इसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सिद्धरमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। उन्हें नए नेता के चुने जाने तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में बने रहने के निर्देश दिए हैं। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान शुरू हो रहा है। 1 महीने तक चलने वाली निर्वाचन आयोग की यह प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। स्वास्थ्य शिशु कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जारी किया है। मंत्रालय द्वारा यह सर्वेक्षण 2023-24 में किया गया था। इसमें 715 जिलों के 6,79,000 परिवारों को शामिल किया गया। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सैन्य सेवाओं से विदाई ली। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए अत्यंत सम्मान की बात है।
2: मेरे लिए ये बहुत सम्मान की बात है कि मुझे तीनों सेनाओं से गार्ड ऑफ ऑनर लेने का अवसर मिला। इसके लिए मैं तीनों सेनाओं और सेना मुख्यालय को धन्यवाद देता हूँ। गार्ड ऑफ ऑनर के समापन के साथ मैं वर्दी में अपने साथियों से विदाई लेता हूँ। मैंने वर्दी में अंतिम बार समर स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किया। ये उन वीर सैनिकों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया।
0: लेफ्टिनेंट जनरल NS राजासुब्रमणि उनका स्थान लेंगे। गुजरात टाइटंस IPL क्रिकेट के फाइनल में पहुंच गया है। गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच फाइनल कल अहमदाबाद में खेला जाएगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी

0: आंगन।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं घर आंगन, जहां बातें होती हैं हौसलों की, सपनों की, रिश्तों की, और मैं हूं आज आपके साथ मंजुला। अभी आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और साथ ही साथ आप हमें सुन सकते हैं इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलो हर्ट्ज पर। और दोस्तों, जब भी कोई महिला अपने लिए आवाज उठाती है, वो सिर्फ अपनी नहीं, हर उस महिला की आवाज बन जाती है जो अब तक चुप थी। एक महिला का बस और नहीं कहना दूसरी महिला के लिए हिम्मत बन जाता है। आज हम बात करेंगे स्वास्थ्य की, सौंदर्य की, घर परिवार और जीवन जीने की कला की, और होंगे गीत संगीत। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि बदलाव की शुरुआत हमेशा एक आवाज से होती है, और शायद वो आवाज कभी आपकी हो।

अभी हम सुन रहे थे आशा भोंसले और मोहम्मद रफ़ी को फिल्म सगाई से, और आकाशवाणी को युवाओं से जोड़ने का प्रयास। दोस्तों, आकाशवाणी ने बीते 9 दशकों में देश की आवाज़ को हर घर तक पहुंचाया है। कभी यह सिर्फ समाचार और संगीत का माध्यम था, लेकिन समय के साथ इसने खुद को बदला, निखारा और नई पीढ़ी के साथ कदम से कदम मिलाया। इसी बदलाव की एक बहुत बड़ी कड़ी रही FM का विस्तार। इस अभिनव पहल की शुरुआत मुंबई से हुई और जल्द ही इसका विस्तार चेन्नई, कोलकाता और गोवा जैसे प्रमुख शहरों तक हो गया। FM के आगमन के साथ ही जो प्रोग्राम्स थे उनकी शैली में भी नया रंग देखने को मिला। अब रेडियो पर पश्चिमी संगीत की धुनें गूंजने लगी, प्रायोजित कार्यक्रमों ने अपनी जगह बनाई और काउंटडाउन और चैट शो जैसे फॉर्मेट शहरी श्रोताओं के बीच बहुत ही लोकप्रिय हो गए। FM रेनबो जैसे चैनल ने युवाओं के लिए एक अलग पहचान बनाई, जहां म्यूजिक, मस्ती और मॉडर्न कंटेंट का बेहतरीन मेल देखने को मिला। साथ ही साथ फोन इन प्रोग्राम्स ने रेडियो को एक तरफा माध्यम से आगे बढ़ाकर इंटरैक्टिव बना दिया। अब श्रोता सिर्फ सुनते नहीं बल्कि अपनी बात भी रखते हैं, अपने सवाल, अपने अनुभव और अपनी आवाज के साथ। आकाशवाणी ने करियर, हेल्थ, मोटिवेशन और सामाजिक मुद्दों पर भी ऐसे प्रोग्राम्स बनाए जो युवाओं को न सिर्फ जानकारी देते हैं बल्कि उन्हें सोचने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करते हैं। तो दोस्तों, 90 वर्षों का ये सफर हमें यही सिखाता है कि समय बदलता है, तकनीक बदलती है, लेकिन जो खुद को बदलने की हिम्मत रखता है वही हमेशा प्रासंगिक बना रहता है।

0: अभी हम सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर को फिल्म काला पत्थर से।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
0: और अब बात एक ऐसी डॉक्टर की जिन्होंने भारत में नवजात शिशुओं की देखभाल को नई दिशा दी। हम बात कर रहे हैं पद्मश्री से सम्मानित शिशु रोग विशेषज्ञ अर्मिडा फर्नांडिस की। डॉक्टर अर्मिडा फर्नांडिस भारत में नियोनेटल केयर यानी नवजात शिशु देखभाल की अग्रणी विशेषज्ञों में से एक मानी जाती है। उन्होंने अपना पूरा जीवन समय से पहले जन्मे और कमजोर नवजात शिशुओं की जान बचाने के लिए समर्पित किया। उनकी सबसे बड़ी पहल थी एशिया का पहला ह्यूमन मिल्क बैंक, जो मुंबई के लोकमान्य तिलक म्यूनिसिपल जनरल हॉस्पिटल में स्थापित किया गया। यह एक ऐसी सुरक्षित व्यवस्था थी जहां माताओं द्वारा दान किए गए स्तन दूध को इकट्ठा किया जाता था, फिर मेडिकल जांच, पाश्चराइजेशन और सुरक्षित स्टोरेज जैसी सख्त प्रक्रियाओं से उनको गुजरने के बाद उन नवजात शिशुओं तक पहुँचाया जाता था जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती थी। खास तौर पर NICU यानी नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट में भर्ती उन बच्चों के लिए जो बहुत ही कमजोर होते हैं या समय से पहले जन्म लेने की वजह से खुद दूध नहीं पी पाते। आज ह्यूमन मिल्क बैंक नवजात शिशुओं के लिए जीवन रक्षक सहायता माने जाते हैं और डॉक्टर अर्मिडा फर्नांडिस की इस पहल से प्रेरित होकर आज भारत भर में दर्जनों ह्यूमन मिल्क बैंक काम कर रहे हैं, जो हर साल

हजारों बच्चों को नई जिंदगी दे रहे हैं। उन्होंने हेल्थ केयर और महिला सशक्तिकरण को एक साथ जोड़ा, माताओं को जागरूक किया और हजारों नन्ही जिंदगियों को नई उम्मीद दी। उन्हें पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया और यह सम्मान सिर्फ एक डॉक्टर को नहीं बल्कि उस सोच को मिला जिसने ममता को चिकित्सा का हिस्सा बना दिया। डॉक्टर अर्मिडा फर्नांडिस की कहानी हमें ये सिखाती है कि चिकित्सा सिर्फ इलाज नहीं, संवेदना, जागरूकता और सही पहल भी जीवन बचा सकती है।

0: अभी हम सुन रहे थे लता मंगेशकर को, फिल्म थी मिली।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
0: और दोस्तों, आज अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस है। बात करेंगे उस साधारण सी सब्जी की जो हर रसोई की शान है। आलू सिर्फ स्वाद ही नहीं, सेहत का भी खजाना है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, पोटेशियम, विटामिन सी और फाइबर भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। यह शरीर को ऊर्जा देता है, पेट भरता है और सबसे खास बात, यह हर मसाले और हर स्वाद में आसानी से ढल जाता है। शायद यही वजह है कि भारत के हर राज्य ने आलू को अपना अलग अंदाज दिया है। छोटे आलूओं को डीप फ्राई करके काजू के पेस्ट और मसालों में पकाया जाए तो बनता है कश्मीर का दम आलू। उबले आलू को खसखस के पेस्ट और सरसों के तेल में हल्का मसाला देकर पकाया जाए तो बनता है बंगाल का आलू पोस्तो। उबले आलू को लाल मिर्च, जाखिया और धनिये के साथ भुना जाए तो बनते हैं उत्तराखंड के आलू के गुटके। मसालेदार आलू के मिश्रण को बेसन में लपेट कर तला जाए तो बनता है महाराष्ट्र का बटाटा वड़ा। नारियल के दूध, करी पत्ते और हल्के मसालों में आलू को पकाया जाए तो बनता है केरला का स्टू। उबले आलू को सरसों के कच्चे तेल, प्याज और हरी मिर्च के साथ मसल दिया जाए तो बनता है असम का पिटिका। और वैसे ही भारत के अलग अलग हिस्सों में आलू के कई और स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जाते हैं। आलू को मसालों और मक्खन के साथ आटे में भर कर तवे पर सेका जाए तो बनता है आलू पराठा। आलू और मसालों को मैदे की परत में भर कर तला जाए तो बनता है समोसा। मसालेदार आलू को कटे हुए प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, कच्चे सरसों के तेल और धनिये के साथ मिलाया जाए तो बनता है बिहार के आलू का चोखा। सच ही तो है, एक साधारण सा आलू लेकिन हर राज्य में अलग स्वाद, अलग संस्कृति और अलग कहानी। तो दोस्तों, आपका पसंदीदा आलू व्यंजन कौन सा है? क्योंकि भारत में आलू सिर्फ सब्जी नहीं, स्वादों का उत्सव है। हमें ईमेल भेजिए और बताइए। हमारा ईमेल आईडी है fmgoldg@gmail.com। हमें आपके संदेश का इंतजार रहेगा।

अभी हम सुन रहे थे लता मंगेशकर को, फिल्म थी खानदान। और अब हम बात करेंगे भारत की उस अद्भुत धरोहर की जिसे देखकर लगता है मानो पत्थरों में सूरज की रोशनी कैद हो गई है। ओडिशा का प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर, 13वीं शताब्दी में बने इस भव्य मंदिर को राजा नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। यह मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है और इसकी सबसे खास बात है इसका अनोखा आकार। पूरा मंदिर एक विशाल रथ की तरह बनाया गया है जिसमें 24 विशाल पत्थर के पहिए, 7 घोड़े बने हैं। ये सूर्य देव के रथ का प्रतीक है जो समय और जीवन की निरंतर गति को दर्शाते हैं। कोणार्क मंदिर को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है। इसकी वास्तुकला, नक्काशी और वैज्ञानिक सोच आज भी दुनिया को हैरान कर देती है। अब बात उस रहस्यमय विशाल चुंबक की, मैग्नेट की, जिसकी कहानी आज भी लोगों को रोमांचित करती है। कहा जाता है कि मंदिर के शीर्ष पर एक बहुत बड़ा मैग्नेट लगा था। लोक कथाओं के अनुसार उसी चुंबक की ताकत से मंदिर के गर्भगृह में सूर्यदेव की मूर्ति हवा में संतुलित रहती थी। कुछ कहानियां ये भी कहती है कि समुद्र से गुजरने वाले जहाजों के कंपास इस चुंबक से प्रभावित हो जाते थे, इसी वजह से बाद में उस विशाल चुंबक को निकाल दिया गया। माना जाता है कि चुंबक हटने के बाद मंदिर का संतुलन बिगड़ गया और धीरे धीरे मंदिर का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। फिर भी सदियों बाद आज भी कोणार्क सूर्य मंदिर उसी शान से खड़ा है। अपनी अद्भुत खूबसूरती, अनोखी वास्तुकला और समृद्ध इतिहास को अपने भीतर समेटे हुए। तो अगली बार जब आपके हाथ में 10 रुपए का नोट आए तो उस पे बना हुआ सन टेम्पल जरा ध्यान से देखिए। वो सिर्फ एक तस्वीर नहीं, भारत की अद्भुत कला, विज्ञान और इतिहास की पहचान है कोणार्क सूर्य मंदिर।

अभी हम सुन रहे थे किशोर कुमार और आशा भोसले को, फिल्म थी जमीर। गर्मियों में मौसम अपने साथ धूप, छुट्टियों की मस्ती तो लाता है, लेकिन साथ ही लाता है टैनिंग, सनबर्न और त्वचा से जुड़ी कई परेशानियां भी। ऐसे में जरूरी है कि इस मौसम में हम अपनी त्वचा को थोड़ा एक्स्ट्रा नहीं बल्कि सही तरीके से ख्याल रखें। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात सनस्क्रीन। घर से बाहर निकलने से लगभग 20 मिनट पहले SPF 30 या उससे अधिक वाला सनस्क्रीन जरूर लगाएं, और अगर लंबे समय तक धूप में रहना हो तो 2-3 घंटे में इसे दोबारा लगाना ना भूलें। गर्मियों में शरीर को जितनी ज़रूरत पानी की होती है उतनी ही आपकी त्वचा को भी, इसलिए दिन भर खूब पानी पिएं। नारियल पानी, नींबू पानी और मौसमी फलों को अपनी दिनचर्या में ज़रूर शामिल करें, क्योंकि स्वस्थ त्वचा की शुरुआत अंदर से होती है। धूप से बचने के लिए सिर्फ सनस्क्रीन नहीं बल्कि छाता, धूप का चश्मा और सूती कपड़े भी बहुत मदद करते हैं। दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक की तेज धूप से हो सके तो बचें। अब सनबर्न और टैनिंग के लिए ठंडक देने वाला फेस पैक भी फायदेमंद हो सकता है। 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी में 1/4 चम्मच चंदन पाउडर और 1/2 चम्मच संतरे के छिलके का पाउडर मिलाएं। इसमें खीरे का रस डालकर इसका एक मुलायम सा पेस्ट रेडी करें। इसे चेहरे पर लगभग 10 से 15 मिनट तक लगाकर रखें और फिर ठंडे पानी से धो लीजिए। ये जो मास्क है त्वचा को ठंडक देता है, सनबर्न के असर को कम करने में मदद करता है। लेकिन अगर त्वचा पर ज़्यादा जलन, खुजली या रेडनेस हो गया हो तो घरेलू उपायों के बजाय डॉक्टर की सलाह लेना बेहतर होता है। तो इस गर्मी अपनी त्वचा का ख्याल रखना बिल्कुल मत भूलिए।

अभी हम सुन रहे थे महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर को, फिल्म थी गीत। और दोस्तों, गर्मी शुरू होते ही सिर्फ तापमान नहीं बढ़ता है, हमारे घर का माहौल भी बदलने लगता है। तो क्यों ना इस बार घर को ऐसा गर्मियों वाला नया रूप दिया जाए जो आकर्षक भी हो, ठंडक भी दे और धरती माँ को भी पसंद आए। सोचिए, दरवाजा खुलते ही हल्की सी मिट्टी की खुशबू, खिड़की पर हिलती हुई बांस की घंटियां और कमरे के कोने में छोटा सा हरियाली का कोना, वाह, यही तो है रियल समर वाइब। तो सबसे पहले एक मजेदार और काम की तरकीब, पुरानी सूती साड़ियों या दुपट्टों को फेंकिए मत, उसे कुशन कवर, मेज पर बिछाने वाले कपड़े या पर्दे बनाइए। घर भी कलरफुल लगेगा और रिसाइकल का शानदार उदाहरण भी बन जाएगा। और दोस्तों, अगर घर बहुत गर्म हो जाता है तो बालकनी या खिड़की के पास वर्टिकल गार्डन लगाइए। छोटी छोटी बोतलों में पौधे टांग दीजिए, ये सिर्फ खूबसूरत नहीं लगते बल्कि आसपास की गर्मी को थोड़ा सा कम करते हैं। एक और शानदार उपाय, मिट्टी के घड़ों और मिट्टी की सजावट को घर में जगह दीजिए, यह घर को प्राकृतिक ठंडक भी देते हैं, देखने में भी बहुत ही देसी और सुरुचिपूर्ण लगते हैं। अब बात खुशबू की, कमरे को खुशबूदार बनाने वाला स्प्रे खरीदने की बजाय एक कटोरे में पानी भरिए, उसमें नींबू के टुकड़े, पुदीना और गुलाब की पंखुड़ियां डाल दीजिए, पूरा घर प्राकृतिक ताजगी से भर जाएगा। और हाँ, दिन के समय

सारी कालीन हटाकर बांस या जूट की चटाई बिछाइए। पैरों को ठंडक मिलेगी और घर तुरंत गर्मियों के लिए तैयार महसूस होगा। तो दोस्तों, इस गर्मी घर सजाइए, लेकिन थोड़ी समझदारी से, थोड़ा प्रकृति के साथ, क्योंकि सबसे खूबसूरत घर वही होता है जहां आकर्षण के साथ सुकून भी होता है।

अभी हम सुन रहे थे जगजीत सिंह और चित्रा सिंह को फिल्म थी साथ साथ। और दोस्तों, डिग्री जरूरी है, लेकिन क्या सिर्फ डिग्री ही काफी है? जरा सोचिए, हम सालों पढ़ाई करते हैं अच्छे कॉलेज, अच्छे मार्क्स, अच्छी डिग्री के लिए, लेकिन असली जिंदगी की परीक्षा में क्या ये सब अकेले हमें आगे बढ़ा पाते हैं? सच ये है कि डिग्री के साथ कुछ जरूरी लाइफ स्किल्स सीखना भी उतना ही जरूरी है। सबसे पहले संचार कौशल यानी कम्युनिकेशन। आप क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं, यही तय करता है मौके आपके दरवाजे पर दस्तक देंगे या नहीं। सार्वजनिक बोलने की कला यानी पब्लिक स्पीकिंग। भीड़ के सामने आप कॉन्फिडेंस से बोलना आपको हर जगह एक अलग पहचान देता है। इमोशनल इंटेलिजेंस, अपने जज्बातों को समझना और दूसरों को महसूस करना, यही रिश्तों को मजबूत बनाता है। नेटवर्किंग, सही लोग सही समय पर आपकी जिंदगी की दिशा बदल देते हैं। मोल भाव की कला यानी नेगोशिएशन, जो आप डिजर्व करते हैं उसे पाने की कला सीखिए। समय प्रबंधन यानी टाइम मैनेजमेंट, आपका भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आज अपने आज को कैसे इस्तेमाल करते हैं। समस्या समाधान।

अभी आप सुन रहे हैं लता मंगेशकर को, फिल्म है प्रेम पर्वत। तो दोस्तों, आज की इस प्यारी सी मुलाकात को यहीं देते हैं विराम। हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए, फिर मिलेंगे कुछ नई बातों और ढेर सारी पॉजिटिव वाइब्स के साथ। दीजिए मंजुला को इजाजत। नमस्कार।

0: आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा। आपका घर आंगन।
1: घर आंगन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन ऑनलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर आज सुबह बिहार के गया पहुंचे। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। राष्ट्रपति के रूप में उनकी ये पहली भारत यात्रा है। म्यांमार के राष्ट्रपति ने गया में महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद वे नई दिल्ली पहुंचेंगे। उनका आज शाम विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात का कार्यक्रम है। म्यांमार के राष्ट्रपति कल म्यांमार भारत व्यापार मंच में भाग लेंगे। सोमवार को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। कल नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस संबंध में जानकारी दी।
1: म्यांमार के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता इन संबंधों को और मजबूत करने के बारे में चर्चा करेंगे। इस यात्रा का एक व्यापारिक पहलू भी है, जिसमें दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। ये एक आधिकारिक यात्रा है।
0: कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया आज शाम विधायक दल की बैठक करेंगे। इसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सिद्धरमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। उन्हें नए नेता के चुने जाने तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में बने रहने का निर्देश दिया है। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान शुरू हो गया है। 1 महीने तक चलने वाली निर्वाचन आयोग की यह प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों के उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। स्वास्थ्य शिशु कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जारी किया है। मंत्रालय द्वारा यह सर्वेक्षण 2023-24 में किया गया था। इसमें 715 जिलों के 6,79,000 परिवारों को शामिल किया गया है। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सैन्य सेवाओं से विदाई ली। उन्होंने कहा कि यह उनके लिए अत्यंत सम्मान की बात है।
2: मेरे लिए ये बहुत सम्मान की बात है कि मुझे तीनों सेनाओं से गार्ड ऑफ ऑनर लेने का अवसर मिला। इसके लिए मैं तीनों सेनाओं और सेना मुख्यालय को धन्यवाद देता हूँ। गार्ड ऑफ ऑनर के समापन के साथ मैं वर्दी में अपने साथियों से विदाई लेता हूँ। मैंने वर्दी में अंतिम बार समर स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किया। ये उन वीर सैनिकों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया।
0: लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि उनका स्थान लेंगे। सिंगापुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान के शांग्रीला संवाद के दौरान रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने नीदरलैंड की रक्षा मंत्री डिलेन येसिलगो जेगेरियस के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि वार्ता में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग बढ़ाने, सैन्य संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। यह भारत और नीदरलैंड्स के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी को दर्शाता है। जम्मू कश्मीर में सीमावर्ती इलाकों में निवासियों ने केंद्र सरकार के उस फैसले का स्वागत किया है, जिसमें कहा गया है कि सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में अवैध ढांचों और अनधिकृत गतिविधियों को हटाया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। पश्चिमी मध्य प्रदेश और तेलंगाना में आज लू चल सकती है। उधर बिहार में आंधी, बारिश और बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत की खबर है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मृतकों के प्रति दुख व्यक्त किया है और परिजनों को 4,00,000 रूपये की सहायता राशि देने की घोषणा की है। गुजरात टाइटंस IPL क्रिकेट के फाइनल में पहुंच गया है। गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच कल अहमदाबाद में फाइनल मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलो हर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से।

नमस्कार श्रोताओं, एक ही फिल्म से इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका दोस्त मनोज, और आज हम आपको लेकर चल रहे हैं साल 1965 की उस हसीन दुनिया में, जहां कश्मीर की वादियां थीं, मोहब्बत के नगमे थे, और थी एक ऐसी आरजू जिसने हर दिल को छू लिया। जी हां, रामानंद सागर की ब्लॉकबस्टर फिल्म आरजू। आइए रेडियो के इस सफर में महसूस करते हैं गोपाल और उषा की प्रेम कहानी।

श्रोताओं, कहानी की शुरुआत होती है कश्मीर, जी हाँ, कश्मीर की खूबसूरत वादियों से। दिल्ली का एक नौजवान, यूनिवर्सिटी का स्कीइंग चैंपियन गोपाल, यहाँ आकर अपना नाम सरजू रख लेता है और यहीं उसकी मुलाकात होती है कश्मीर की कली उषा से।

दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा, लेकिन एक रोज बातों बातों में उषा ने कुछ ऐसा कह दिया जिसने गोपाल के दिल में एक अनजाना सा डर पैदा कर दिया। श्रोता वही हुआ जिसका डर था। गोपाल दिल्ली लौट रहा था कि रास्ते में उसकी कार का भयानक एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टर ने उसकी जान तो बचा ली, लेकिन उसकी एक टांग काटनी पड़ी। ये सदमा गोपाल सहन नहीं कर पाया और उसने खुद को उषा की जिंदगी से दूर करने का फैसला किया। उधर कश्मीर में उषा रोज अपने सूरज की राह देखती, रोती और तड़पती।

श्रोताओं, वक्त गुजरता है। गोपाल का सबसे पक्का दोस्त रमेश कश्मीर जाता है और वहां उसकी मुलाकात उषा से होती है। रमेश को उषा से प्यार हो जाता है। उषा के पिता अपनी बेटी को डिप्रेशन से निकालने के लिए रमेश से उसकी शादी कर देते हैं। उषा टूट चुकी थी पर पिता की खातिर मान जाती है।

रमेश कश्मीर से दिल्ली लौटकर आता है और अपने दोस्त गोपाल को सारी बातें बताता है। सारी सच्चाई जानने के बाद भी गोपाल अपनी मोहब्बत को अपने ही दोस्त के लिए कुर्बान कर देता है। लेकिन कहते हैं ना कि सच कभी छुपता नहीं है। शादी के मंडप में गोपाल के कश्मीर वाले नौकर ममदू के जरिए रमेश को सच का पता चल जाता है और उषा का सूरज कोई और नहीं बल्कि बैसाखी के सहारे जी रहा उसका अपना दोस्त गोपाल है। इन दोनों के बीच में बातचीत होती है। रमेश कहता है, गोपाल तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? अपनी मोहब्बत की बलि दे दी सिर्फ इसलिए कि मैं खुश रहूं? क्या इतनी कमजोर है मेरी दोस्ती? वहीं गोपाल कहता है कि रमेश मैं मजबूर था, मैं उषा के सामने एक लाचार इंसान बनकर नहीं जाना चाहता था। और यहीं पर उषा दौड़ती हुई आती है और गोपाल को गले लगाकर सिसकते हुए बोलती है, मुझे माफ कर दो सरजू, मैं इतनी

नादान थी कि जो जिस्म की अपंगता को ही सब कुछ समझ बैठी। असली अपंगता तो मेरी सोच थी। तुम्हारी ये बैसाखियां अब मेरे लिए दुनिया का सबसे बड़ा सहारा है। मुझको खुद से दूर मत करो। और उषा और गोपाल का मिलन शादी के बंधन में बन जाता है। श्रोताओं, इस तरह एक महान त्याग और सच्ची मोहब्बत की जीत हुई। आरजू सिर्फ एक फिल्म ही नहीं बल्कि जज्बातों का वो समंदर है जो आज भी हमारे दिलों को भिगो देता है। चलते चलते सुनिए इस फिल्म का वो अमर गीत जो हमें सिखाता है कि मोहब्बत कभी नहीं मरती।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। यह आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। दिन के

0: 1:40 होने को हैं, थोड़ी देर में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: खबरां।
2: नमस्कार, ए आकाशवाणी है। खबरां दे इस बुलेटिन नाल मैं रमेश लाल। पहला चोणवीं खबरां। म्यांमार दे राष्ट्रपति भारत दे 5 दिना दौरे ते अज बौध गया पहुंच गए ने। कर्नाटका दे नवे मुख्यमंत्री की चोण करन लई कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग अज बेंगलुरु विच। फौज मुखी जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय हथियारबंद सेनावां उच्च पदरी चौकसी ते ने अते लोड़ पैण ते आपरेशन सिंदूर 2.0 लई तैयार ने। चीफ आफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान अज फौजी सेवावां तों सेवा मुक्त हो गए ने। लैफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी उन्हां दी थां लैणगे। अते महिला क्रिकेट विच अज भारत अते इंग्लैंड विचकार दूजा 2020 अंतरराष्ट्रीय मैच ब्रिस्टल विच खेडिया जावेगा। हुण खबरां विस्थार नाल। म्यांमार दे राष्ट्रपति मीन आंग हलैंग ने अज बौध गया विच विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर का दौरा किया अते पवित्र बौद्धि अस्थान ते प्रार्थना कीती। उन्हां ने उस बौद्धि रुख दे हेठां भी ध्यान लाया जिथे भगवान बुद्ध नूं ज्ञान प्राप्त होया मन्निया जांदा है। अपने दौरे दौरान म्यांमार दे राष्ट्रपति ने बकौर विच इतिहासक सुजाता मंदिर विखे मत्था टेकिया अते बौध गया विच बर्मी मठ का दौरा भी किया। उन्हां दे नाल इक उच्च पदरी वफद भी सी जिस विच सीनियर अधिकारी अते बौद्धि प्रतिनिधि शामिल सन। इस तों पहलां बिहार दे राज्यपाल लैफ्टिनेंट जनरल सेवा मुक्त सैयद अता हसनैन अते राज दे खेतीबाड़ी मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने गया हवाई अड्डे ते राष्ट्रपति हलैंग का स्वागत किया। राष्ट्रपति हलैंग का यह दौरा दोवां दिशा विचकार दुवल्ले संबंधा व्यापार खेती सुरक्षा अते सांझी भाईचारक विरासत नूं नवीं गति देण वाल एक अहम कदम है। कर्नाटका दे मुख्यमंत्री वजों अपना अहुदा छड्ड चुके सिद्धरमैया ने अज शाम 4 बजे बेंगलुरु विच कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग बुलाई है जिस विच नवे नेता की चोण की जाएगी। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सिद्धरमैया का अस्तीफा स्वीकार कर लिया है अते उन्हां नूं नवे नेता की चोण तक कार्यकारी मुख्यमंत्री वजों बने रहने का निर्देश दिता है। साडे पत्रकार ने दस्या है कि DK शिव कुमार नूं रस्मी तौर पर कांग्रेस विधायक दल का नवा नेता चुने जाने की संभावना है। कांग्रेस के 136 विधायकों नूं विधानसभा मीटिंग विच मौजूद रहने लिए कहा गया है। AICC ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੂਰਜੇਵਾਲਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ। ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇਤਾ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ। ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਉਪੇਂਦਰ ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਚੌਕਸੀ ਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ 2.0 ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਪੁਣੇ ਦੇ ਖੜਕਵਾਸਲਾ ਵਿਖੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੱਖਿਆ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿਖੇ 150ਵੇਂ ਬੈਚ ਦੀ ਪਾਸਿੰਗ ਆਊਟ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਨਰਲ ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਨੇ ਸਟੀਕਤਾ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਉਕਸਾਵੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸਿੰਗ ਆਊਟ ਕੈਡਟਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰਾਨਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਉੱਚਤਮ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ। ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਨੇ ਇਸ ਕੋਰਸ ਤੋਂ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋਈਆਂ ਮਹਿਲਾ ਕੈਡਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਮਤ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਉੱਤਮਤਾ ਲਿੰਗ ਨਿਰਪੱਖ ਗੁਣ ਨੇ। ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਐਕਸੈਂਡਲੇ @AIRRNU ਜਲੰਧਰ, ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਏ RNU-AIR ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਏ @AIR ਜਲੰਧਰ। ਚੀਫ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ ਜਨਰਲ ਅਨਿਲ ਚੌਹਾਨ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੰਗੀ ਯਾਦਗਾਰ ਵਿਖੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਾਰਡ ਆਫ ਆਨਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੌਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ। ਜੰਗੀ ਯਾਦਗਾਰ ਤੇ ਫੁੱਲ ਮਾਲਾ ਭੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਰਲ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਗਾਰਡ ਆਫ ਆਨਰ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਏ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਰਲ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦੱਸਿਆ।
3: मेरे लिए ये बहुत सम्मान की बात है कि मुझे तीनों सेनाओं से गार्ड ऑफ ऑनर लेने का अवसर मिला। इसके लिए मैं तीनों सेनाओं और सेना मुख्यालय को धन्यवाद देता हूँ। गार्ड ऑफ ऑनर के समापन के साथ मैं वर्दी में अपने साथियों से विदाई लेता हूँ। मैंने वर्दी में अंतिम बार समर स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किया। ये उन वीर सैनिकों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया।
2: ਉੱਨੀ ਸੌ 1981 ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਰਲ

0: भी मरते होएगा। नमस्कार।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं माजिद अली। फौज के सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो भारतीय फौज ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे मरहले के लिए तैयार है। म्यांमार के सदर ऊ मिन आउल लाइन ने बोधगया में महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना के साथ अपना 5 दिन का भारत का दौरा शुरू कर दिया है। कर्नाटक कांग्रेस कानून साज पार्टी अपना नया लीडर मुंतखब करने के लिए आज मीटिंग करेगी। बिहार में तूफानी हवाओं, शदीद बारिश और बिजली गिरने के अलग अलग वाकयात में कम से कम 7 अफराद हलाक हुए हैं। और अमेरिका के वजीर दिफा पीट हेगसेट ने कहा है कि ईरान के साथ कोई मुआहदा ना होने की सूरत में अमेरिका ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई फिर से शुरू करने के लिए तैयार है। अब खबरें तफसील से। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आज कहा है कि अगर हालात का तकाजा हुआ तो भारतीय फौज कार्रवाई के लिए हाई अलर्ट पर और ऑपरेशन सिंदूर 2 के लिए तैयार है। पुणे के खड़कवासला नेशनल डिफेंस एकेडमी में 150वें कोर के पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुरुस्तगी और अजम के साथ इश्तेआलंगेजी का जवाब देने में भारत की सलाहियतों का मुजाहरा किया है और उभरती हुई सिक्योरिटी चैलेंजों से निपटने में मुल्क के लिए एक मेयार कायम किया है। जनरल द्विवेदी ने मजीद कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने मुल्क के मुस्तहकम अज़्म और मुसल्ला फौज के दरमियान हम आहंगी की अहमियत का मुजाहरा किया है। जनरल द्विवेदी ने ग्रेजुएट कैडेट से अपील की कि वो प्रोफेशनलिज्म के आला मेयार, क्यादत और मुल्क की खिदमत के जज्बे को कायम रखें। उन्होंने उभरती हुई सिक्योरिटी की सूरत हाल में मुस्बत नुक्ता नज़र अपनाने और सीखने के अमल को जारी रखने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने मजीद कहा कि जवानों के एतमाद और भरोसे पर मुअस्सर क़यादत की तामीर होती है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने आज नई दिल्ली के कौमी जंगी यादगार में तीनों फौजों का यादगार गार्ड ऑफ ऑनर हासिल करने के बाद कौमी खिदमात को अलविदा कहा। इस तकरीब में मुल्क में आला फौजी अफसर के तौर पर उनकी मुमताज़ खिदमात को याद किया गया। जंगी यादगार में गुलदायरा पेश करने के बाद जनरल चौहान ने कहा कि तीनों फौजों का गार्ड ऑफ ऑनर हासिल करना उनके लिए बड़े फख्र की बात है। 4 दहाइयों से ज्यादा मुश्तमिल खिदमात के बाद एक आम शहरी के तौर पर तब्दीली को बयान करते हुए जनाब चौहान ने अपनी खिदमात को इत्मीनान बख्श बताया। 1981 में भारतीय फौज में शामिल होने के बाद जनाब चौहान ने मुल्क की 40 साल से ज्यादा खिदमत की और अपने पुरकशिश फौजी करियर के दौरान कई अहम ओहदों पर फायज रहे। उन्हें परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल से नवाजा गया। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि जनरल चौहान की जगह लेंगे। पनाजी की कला एकेडमी में आज गोवा का 40वां योम तासीस मनाया गया। तकरीब से खिताब करते हुए नायब सदर जमहूरिया सीपी राधा कृष्णन ने गोवा को एक मिसाली रियासत बताया जहां तरक्की के साथ साथ उसकी मालामाल सकाफती विरसे में तवाजुन बरकरार रखा गया है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: नायब सदर जमहूरिया सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि गोवा इस बात की एक अच्छी मिसाल है कि किस तरह अपनी पहचान और तरक्की एक साथ चल सकती है। उन्होंने कहा कि गोवा ने जदीद तरक्की हासिल करते हुए अपनी सकाफती बुनियादों को भी कायम रखा है। नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि गोवा एक सियाहती मकाम से कहीं बढ़कर जगह है। उन्होंने गोवा को एक जिंदा तहजीब बताया जहां सकाफती तबादला, समाजी हम आहंगी और खुला जहन पाया जाता है। उन्होंने खानदगी, सेहत, खिदमात और माहौल के बारे में बेदारी और इंसानी तरक्की के शोबों में रियासत की हौसूलियाबी की तारीफ की। पनाजी से महेश की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं महताब आलम।
1: इम्तहानात से मुतालिक कौमी एजेंसी NTA ने कहा है कि उसकी तकनीकी शरीककार TCS की फनी खराबी की वजह से आज उसके कुछ इम्तहानी मराकज में कॉमन यूनिवर्सिटी दाखिला टेस्ट CUET UG 2026 के शुरू होने में ताखीर हुई। NTA ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि इस मसले को हल कर लिया गया है और इम्तहानात जारी हैं और उम्मीदवारों को पूरा वक्त दिया जाएगा ताकि उन्हें कोई नुकसान न उठाना पड़े। एजेंसी ने यह भी बताया है कि बाद दोपहर

0: भारत की खातिरख्वाह तरक्की का पता चलता है। यह छठा कौमी जायजा सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत के जरिए 2023-24 के दौरान किया गया था। इस जायजे में 715 अजला पर मुश्तमिल 6,79,000 घरानों को शामिल किया गया था। जम्मू कश्मीर में जम्मू में बैन अल-अक़वामी सरहद के पास रह रहे लोगों ने मरकज के उस फैसले का खैर मकदम किया है जिसमें सरहद से 15 किलोमीटर के अंदर गैर कानूनी तामीरात और गैर कानूनी कार्रवाइयां हटाए जाने की बात कही गई है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने हाल ही में एक आला सतह की सिक्योरिटी जायजा मीटिंग के दौरान यह फैसला किया था। अरनिया, आरएसपुरा और सुचेतगढ़ समेत सरहदी इलाके के लोगों ने इस अमल में अपनी हिमायत का इजहार किया और कहा है कि ऐसी कोई भी कार्रवाई जो मुल्क की सिक्योरिटी के लिए खतरा हो उसके साथ सख्ती से पेश आना चाहिए। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। म्यांमार के सदर उमिन आउ लाइन आज बोधगया में महाबोधि मंदिर गए और वहां पूजा अर्चना की। उन्होंने उस बोधि पेड़ के नीचे मराकबा किया जिस पेड़ के बारे में मशहूर है कि भगवान बुद्ध ने निर्वाण हासिल किया था। अपने दौरे के दौरान म्यांमार के सदर तारीखी बकरोर के सुजाता मंदिर गए और बोधगया की बर्मी मोनेस्ट्री का भी दौरा किया। उनके हमराह एक आला सतह का वफद भी है जो बहुत से काबीना वजीरों, सीनियर अफसरों और सरकर्दा ताजिरों पर मुश्तमिल है। सदर ओमिन का उनकी मौजूदा हैसियत से भारत का ये पहला दौरा है। कर्नाटक कांग्रेस कानूनसाज पार्टी की आज दोपहर 4 बजे मीटिंग होना मुतवक्के है जिसमें सुबुकदोश होने वाले वजीर आला जनाब सिद्दरमैया के बाद नए लीडर का इंतखाब किया जाएगा। गवर्नर थावरचंद गहलोत ने जनाब सिद्दरमैया का इस्तीफा पहले ही कबूल कर लिया है और उनसे नए लीडर के इंतखाब तक कारगुजार वजीर आला के तौर पर काम करने को कहा है। हमारे नामानिकार ने खबर दी है कि जनाब डी के शिव कुमार को बाजाब्ता तौर पर कांग्रेस कानूनसाज पार्टी का नया लीडर बनाए जाने की तवक्को है। कांग्रेस के 136 मेंबरान असेंबली से सीएलपी मीटिंग में शिरकत करने को कहा गया है। बिहार में गरज चमक, शदीद बारिश और बिजली गिरने के कई वाकयात में कम अज कम 7 अफराद हलाक हो गए हैं। हमारे नामानिकार से मौसूला रिपोर्ट के मुताबिक बिजली गिरने के वाकयात में गया में 3 अमवात हुई हैं जबकि औरंगाबाद से 2 अमवात की खबर मौसूल हुई है। दरियासना, सरन और खगड़िया जिला से 1-1 मौत की रिपोर्ट मौसूल हुई है। गरज चमक और बिजली गिरने के वाकयात में हुई अमवात पर अफसोस का इजहार करते हुए वजीर आला सम्राट चौधरी ने मरने वालों के लवाहिकीन के लिए 4-4 लाख रुपये की इमदाद का ऐलान किया है। अकलियतों के उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने आज बताया कि भारतीय हज मिशन को सऊदी अरब की हज और उमरा की वजारत की तरफ से पहली मर्तबा 2 बावकार लब्बैतों में अवार्ड्स हासिल हुए हैं। ये अवार्ड्स हज के प्रोग्राम को खुश असलूबी के साथ कराए जाने पर दिए गए हैं। अमरीका के वजीर दिफा पीट हेक्सेट ने कहा है कि ईरान के साथ कोई मुआहदा न होने की सूरत में अमरीका फिर से फौजी कार्रवाई शुरू करेगा। एशिया की अहम सिक्योरिटी फोरम शेंगरीला डायलॉग से खिताब करते हुए जनाब हेक्सेट ने कहा कि अमरीका के खित्ते में और पूरी दुनिया में फौजी मौजूदगी है और वो जरूरत पड़ने पर इस तरह की कार्रवाइयां अंजाम दे सकता है। उन्होंने कहा कि अमरीका किसी भी नागहानी सूरत का जवाब देने की अच्छी पोजीशन में है। अमरीका के वजीर दिफा ने इस बात पर भी जोर दिया कि ईरान के साथ तनाजे के बावजूद अमरीका एशिया बहरुल काहिल खित्ते के लिए पाबंद अहद है। और आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। फौज के सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो भारतीय फौज ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे मरहले के लिए तैयार है। म्यांमार के सदर उमिन आउ लाइन ने बोधगया में महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना के साथ अपना 5 दिन का भारत का दौरा शुरू कर दिया है। कर्नाटक कांग्रेस कानूनसाज पार्टी अपना नया लीडर मुंतखब करने के लिए आज मीटिंग करेगी। बिहार में तूफानी हवाओं, शदीद बारिश और बिजली गिरने के अलग अलग वाकयात में कम से कम 7 अफराद हलाक हुए हैं। और अमरीका के वजीर दिफा पीट हेक्सेट ने कहा है कि ईरान के साथ कोई मुआहदा ना होने की सूरत में अमरीका ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई फिर से शुरू करने के लिए तैयार है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम शगुन चोपड़ा विद द मिडडे न्यूज। The headlines. Indian Army prepared for Operation Sindoor 2.0 if the situation warrants, says Chief of Army Staff General Upendra Dwivedi.

0: पनामा के राष्ट्रपति ओमिन आउन लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे, महाबोधि मंदिर में की पूजा अर्चना। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज दोपहर बाद बेंगलुरु में, नए नेता का होगा चुनाव। बिहार में आंधी, बारिश और बिजली गिरने के अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत। अमरीका के रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ ने कहा, अगर समझौते के प्रयास विफल होते हैं तो अमरीका ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करेगा। और महिला क्रिकेट में आज ब्रिस्टल में 3 मैचों की T20 श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर है और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार है। पुणे के खड़गवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के 150वें बैच की पासिंग आउट परेड को संबोधित करते हुए जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि यह अभियान अब भी जारी है।
1: जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, ये अभियान अभी जारी है। इसमें फिलहाल केवल अस्थायी रूप से संघर्ष विराम है, इसलिए भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की संभावना को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस समय हमारा ध्यान तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने पर है, साथ ही हम भविष्य के युद्धों के लिए खुद को और अधिक सक्षम बना रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आने वाले समय के युद्ध केवल जमीन, समुद्र और हवा तक सीमित नहीं रहेंगे।
0: जनरल द्विवेदी ने पास आउट होने वाले कैडेटों से व्यावसायिकता, नेतृत्व और राष्ट्र सेवक के उच्चतम मानकों को बनाए रखने का आग्रह किया। सेना प्रमुख ने इस पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण होने वाली महिला कैडेटों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि साहस, दृढ़ संकल्प और सैन्य उत्कृष्टता लिंग भेद रहित गुण है। अकादमी से कुल 353 कैडेटों ने स्नातक की उपाधि प्राप्त की। मित्र विदेशी देशों के 21 कैडेटों को भी डिग्री प्रदान की गई। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सैन्य सेवाओं से विदाई ली। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए अत्यंत सम्मान की बात है।
2: मेरे लिए ये बहुत सम्मान की बात है कि मुझे तीनों सेनाओं से गार्ड ऑफ ऑनर लेने का अवसर मिला। इसके लिए मैं तीनों सेनाओं और सेना मुख्यालय को धन्यवाद देता हूँ। गार्ड ऑफ ऑनर के समापन के साथ मैं वर्दी में अपने साथियों से विदाई लेता हूँ। मैंने वर्दी में अंतिम बार समर स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किया। ये उन वीर सैनिकों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया।
0: लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि जनरल चौहान का स्थान लेंगे। सिंगापुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान के शांगिला संवाद के दौरान रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने नीदरलैंड्स की रक्षा मंत्री डिलेन एसेलगो जिगेरियस के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। यह भारत और नीदरलैंड्स के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी को दर्शाता है। जम्मू कश्मीर में सीमावर्ती इलाकों के निवासियों ने केंद्र सरकार के उस फैसले का स्वागत किया है जिसमें कहा गया है कि सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में अवैध ढांचों और अनधिकृत गतिविधियों को हटाया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया। म्यांमा के राष्ट्रपति ओमिन आउन लाइन आज भारत के 5 दिन के दौरे पर बिहार के गया पहुंचे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमा के राष्ट्रपति के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया है।
3: म्यांमा के राष्ट्रपति आज सुबह 9 बजे विशेष विमान से गया जी एयरपोर्ट पहुंचे। गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने पर बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और अन्य अधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। पदभार संभालने के बाद यह उनकी पहली विदेश यात्रा है। राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर और बकरौर स्थित ऐतिहासिक सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना किया। साथ ही वे म्यांमार के विभिन्न बौद्ध मठों का भी दौरा किया। राष्ट्रपति के साथ उच्च स्तरीय अधिकारियों और बौद्ध प्रतिनिधियों का एक शिष्ट मंडल भी मौजूद था। म्यांमार के राष्ट्रपति के आगमन को देखते हुए महाबोधि मंदिर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। आकाशवाणी समाचार के लिए गया जी से धर्मवीर भारती।
0: राष्ट्रपति ओमी नाउलाइन आज शाम नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर से भी वो मुलाकात करेंगे। म्यांमार के राष्ट्रपति

0: कल म्यांमार भारत व्यापार मंच में शामिल हो सकते हैं। राष्ट्रपति ऊ सोमवार को दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यगत संबंधों को और मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चर्चा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने आज शाम बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल की बैठक करेंगे। इसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री डीके शिवकुमार को कांग्रेस विधानसभा पार्टी के नए नेता के रूप में औपचारिक रूप से निर्वाचित किए जाने की संभावना है।
1: आज डीके शिवकुमार राज्यपाल थावरचंद गहलोत से मिले। स्वेयरिंग इन सेरेमनी के दिनांक और जगह के बारे में चर्चा करने वे लोक भवन गए थे। इस बार युवा विधायकों को अवसर मिलने की संभावना है। अगले महीने राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव होने के कारण जल्दी से जल्दी सरकार बनाने का प्रक्रिया समाप्त करने पर गौर किया जा रहा है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: कांग्रेस के 136 विधायकों को विधानसभा बैठक में उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। एआईसीसी महासचिव और कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह गुर्जेवाला कार्यवाही का अवलोकन करेंगे। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष ज्ञान पुनरीक्षण एसआईआर अभियान शुरू हो गया है। एक महीने तक चलने वाली निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि भारत में चुनाव संविधान, चुनावी कानून और निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पारदर्शी दिशा निर्देशों के अनुसार ही कराए जाते हैं। नई दिल्ली स्थित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन में श्री कुमार ने बताया कि लोकसभा चुनावों के दौरान पारदर्शिता, जवाबदेही और स्वतंत्र तथा निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए लगभग 1,08,00,000 कर्मियों को तैनात किया जाता है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की परीक्षा पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए यह पोर्टल शुरू किया जा रहा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया है कि उसके साझेदार टीसीएस की तकनीकी खराबी के कारण आज कुछ परीक्षा केंद्रों पर संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की शुरुआत देरी से हुई। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि समस्या का समाधान हो गया है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी छात्र को असुविधा न हो, परीक्षा पूर्ण समय सीमा के साथ आयोजित की जा रही है। एजेंसी ने बताया कि दोपहर के सत्र का समय संशोधित किया गया है। विद्यार्थियों को दोपहर 2:30 से प्रवेश दिया जाएगा, जबकि परीक्षा निर्धारित समय 3:00 के बजाय 4:00 से शुरू होगी। केंद्रीय उपभोक्ता मामले खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2023 के परिणामों के संबंध में भ्रामक विज्ञापन देने के लिए एक निजी कोचिंग सेंटर पर 7,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण ने अब तक कोचिंग संस्थानों को 60 से अधिक नोटिस जारी किए हैं और 1,46,00,000 रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया है। स्वास्थ्य शिशु कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जारी किया है। ये सर्वेक्षण 2023-24 में किया गया था। इसमें 715 जिलों के 6,79,000 परिवारों को शामिल किया गया। गोवा ने आज पणजी स्थित कला अकादमी में 40वां राज्य स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर सभा में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने गोवा को एक आदर्श राज्य बताया जिसने विकास और अपनी समृद्ध संस्कृति को संरक्षित रखा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज कहा कि गोवा इस बात का प्रेरणादायी उदाहरण है कि पहचान और प्रगति साथ साथ कैसे आगे बढ़ सकती हैं। पणजी के कला अकादमी में गोवा के 40वें राज्य स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि गोवा ने आधुनिक विकास को अपनाते हुए अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सफलतापूर्वक संरक्षित रखा है। गोवा केवल एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान, सामाजिक सद्भाव और बौद्धिक खुलेपन से निर्मित एक जीवंत सभ्यता है। इससे पहले उपराष्ट्रपति ने प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट मारियो मिरांडा पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, स्मारक डाक टिकट और विशेष आवरण जारी किए, पुरस्कार और नियुक्ति पत्र वितरित किए तथा दीनदयाल स्वास्थ्य सेवा योजना के अंतर्गत बढ़ी हुई सहायता का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विकसित गोवा आवश्यक है। महेश चोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: राष्ट्रपति

0: द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ ने कहा है कि अगर समझौते के प्रयास विफल होते हैं तो अमेरिका के सेना ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। एशिया के प्रमुख सुरक्षा मंच शांग्रीला संवाद में श्री हेक्सेथ ने कहा कि जरूरत पड़ने पर ऐसे अभियान संचालित करने के लिए अमेरिका के पास क्षेत्र और दुनिया भर में पर्याप्त सैन्य भंडार मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि देश किसी भी आपात स्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। श्री हेक्सेथ ने कहा कि ईरान के साथ संघर्ष में शामिल होने के बावजूद अमेरिका एशिया प्रशांत क्षेत्र के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता बनाए हुए है। इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में अपने शीर्ष सलाहकारों के साथ 2 घंटे की बैठक की। इसमें ईरान के साथ युद्ध विराम बढ़ाने के उद्देश्य से समझौते की संभावना पर चर्चा की गई। सिचुएशन रूम में हुई बैठक कोई स्पष्ट निर्णय लिए बिना समाप्त हो गई। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड और तटीय कर्नाटक में भी वर्षा की संभावना है। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में ओले पड़ने का अनुमान है। पश्चिमी मध्य प्रदेश और तेलंगाना में आज लू चल सकती है। उधर बिहार में आंधी, बारिश और बिजली गिरने के अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत की खबर है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मृतकों के प्रति दुख व्यक्त किया है और परिजनों को 4 लाख रूपये की सहायता राशि देने की घोषणा की है। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है। वर्ष 1826 में आज ही के दिन हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ था। एक रिपोर्ट।
1: उदंत मार्तंड समाचार पत्र के संपादक और संस्थापक पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे। उन्होंने हिंदुस्तानियों के हित के हेत जैसे अमर संकल्प और भारतीय पत्रकारिता की नींव रखने वाले ध्येय वाक्य के साथ उदंत मार्तंड समाचार पत्र की कोलकाता के बड़ा बाजार इलाके से नींव रखी। उस दौर में जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, तब हिंदी में समाचार पत्र निकालना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था। उदंत मार्तंड से शुरू हुआ ये सफर आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे बड़ा औजार बना। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी समाचार पत्रों और पत्रिकाओं ने जनमानस के भीतर स्वाधीनता का भाव जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 4 दिसंबर 1827 को उदंत मार्तंड का अंतिम अंक प्रकाशित हुआ, जिसमें श्री शुक्ल ने लिखा कि आज दिवस लो उग्यो मार्तंड उदंत, अस्ताचल को जात है दिनकर दिन अब अंत। समाचार पत्रों से शुरू हुआ सफर आज रेडियो, टेलीविजन, डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया तक पहुंच चुका है। हालांकि इस बदलाव के साथ पत्रकारिता की जिम्मेदारियां भी बड़ी हैं। हिंदी पत्रकारिता दिवस अवसर है उन पत्रकारों और संपादकों को याद करने का जिन्होंने अपने लेखन और साहस से समाज को नई दिशा दी। साहस की कलम से किसी ने क्या खूब लिखा है, खींचो ना कमानों को ना तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो।
0: भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज ब्रिस्टल में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा आवश्यकता पड़ने पर भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार। म्यांमा के राष्ट्रपति ओमेनाउ लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे, महाबोधि मंदिर में की पूजा अर्चना। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज दोपहर बाद बेंगलुरु में, नए नेता का होगा चुनाव। बिहार में आंधी, बारिश और बिजली गिरने के अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत। और महिला क्रिकेट में आज ब्रिस्टल में 3 मैचों की T20 श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार।

एक ही कलाकार सुनने वाले हमारे सभी दोस्तों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल दोस्तों। आज मैं हूं आपके साथ मनोज। आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम एक ही कलाकार। दोस्तों, आज हम एक ऐसे कलाकार की बात करने वाले हैं जिसने अगर पर्दे पर गुस्सा दिखाया तो लोग डर गए, रोया तो आंखें नम हो गईं, और जब हंसने पर या हंसाने पर आया तो लोग लोटपोट हो गए। जी हाँ, थिएटर की मिट्टी से निकलकर बॉलीवुड का बाबूराव बनने वाले द वन एंड ओनली परेश रावल।

श्रोताओं, 80 का दशक था। हिंदी सिनेमा में अमिताभ बच्चन, संजय दत्त और अनिल कपूर जैसे एंग्री यंग मैन का राज था। ऐसे में एक नया विलन आया, फिल्म थी नाम। परेश रावल ने शेट्टी का ऐसा किरदार निभाया कि लोग थिएटर में उनके नाम से कांपने लगे। बाद में फिल्म आई कब्जा, किंग अंकल और राम लखन, भाई साहब, क्रूरता और शातिरपने का दूसरा नाम बन गए थे। जी हां, परेश रावल। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विलन के रोल में भी वो अपनी कॉमिक टाइमिंग छुपा नहीं पाते थे।

श्रोताओं, साल था 2000 और सदी बदल रही थी और साथ ही बदल रहा था परेश रावल का अंदाज। प्रियदर्शन की फिल्म आई हेरा फेरी, धोती, सोडा वाटर जैसा चश्मा और हाथ में कड़क चाय का कप, बाबूराव गणपतराव आपटे। दोस्तों, इस किरदार ने परेश जी को हमेशा के लिए अभिनय की दुनिया में महान बना दिया। इसके बाद हंगामा, हलचल, मालामाल वीकली, कॉमेडी की ऐसी सुनामी आई कि आज के मीम्स भी बाबू भैया के बिना अधूरे हैं।

दोस्तों, परेश रावल सिर्फ हंसने या डराने तक सीमित नहीं है, वो एक बेहतरीन लेखक की सोच रखने वाले थिएटर थिंकर भी हैं। फिल्म ओ छोकरी सर के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड भी दिया गया। आपको याद है ना फिल्म ओ माय गॉड? कांजीलाल जी मेहता बनकर उन्होंने जो सवाल उठाए उसने समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया। थिएटर के मंच से लेकर राजनीति और संसद भवन तक उनकी आवाज में वो वजन है जो हर कोई सुनता है।

चाहे मोहरा हो, जुदाई हो, दौड़ या इन गानों के बीट्स, जो सुनता है वो झूमने लगता है। दोस्तों, आज का ये कार्यक्रम पद्मश्री परेश रावल जी के नाम था। उम्मीद है आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे किसी नए सितारे और नई कहानियों के साथ। सुनते रहिए हमारा ये कार्यक्रम। मैं हूं आपका दोस्त मनोज, मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम।
1: ब्रजमाधुरी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को वंदना जोहरी को
2: और वंदना को
1: प्रेम भरो अभिवंदन।
2: सखी घाम में काम करना कितेक मुश्किल है।
1: बहना किसान भाई तो देखो घाम में ही काम करें और सेना की जवान उनको तो घाम में ही खड़ो होना पड़े।
2: सखी ऐसे में पेड़ पौधन की छा कितेक सुखदाई लगे। ऐसे में घाट सरोवरन की हु महत्व समझ आवे।
1: बिल्कुल, तभी तो पर्यावरण को संरक्षित किया जानो जरूरी है बहना।
2: हाँ।
1: और तभी वृक्षन की पूजा को विधान हमारे ग्रंथन में कियो गयो है।
2: हाँ, और सखी हमारे ब्रज के साहित्य में अनेक अनेक कवियन ने वन कुंजन पे घाट सरोवरन पे बड़ी सुंदर रचनाएं करी हैं।
1: बहना ग्रंथन में तो ब्रज को नित्य स्वरूप ही प्राकृतिक आभाते आच्छादित है और यही कारण भक्ति काल के कवियन ने कुंज कदम पीपल गोवर्धन पर्वत और यमुना को अपनी रचनान में अपने

0: प्रसंगन में सुशोभित कियो है और पर्यावरण के प्रति अपने प्रेम को दर्शायो है।
1: मतलब जे है सखी के ब्रज साहित्य पेड़ पौधा नदी और वन्य जीवन के संग सामंजस्यपूर्ण जीवन जीवे की सीख देवे है।
0: बिल्कुल सही कह रही हो बेना। वैसे हूँ ब्रज साहित्य में प्रकृति को कृष्ण लीला के अभिन्न अंग के रूप में देखो गयो है।
1: हाँ सखी, यमुना नदी को वर्णन ब्रज साहित्य में जीवनदायिनी कृष्ण प्रिया के रूप में किया गया है और या की स्वच्छता और महत्व को वर्णन किया गया है, जाते ब्रजवासिन के बीच जल संरक्षण की चेतना जागे।
0: बिल्कुल। और बहना, ब्रज साहित्य केवल भक्ति काव्य ही ना है बल्कि पर्यावरण संरक्षण के संग सह अस्तित्व को सांस्कृतिक और अनूठा दस्तावेज हते और पर्यावरण ते प्रेम के प्रति चेतना जगाईवे के काजे ही श्री कृष्ण लीलान को उल्लेख ब्रज साहित्य में भयो है। और कवियन ने ब्रज में कुंज वन द्रुम लतान पतान झाड़ पीकर पाकर को उल्लेख अपनी रचनान में कियो है, प्रसंगन में कियो है।
1: हाँ सखी, ब्रज लता पताए शीतलता प्रदान करवे वाली हैं, जाते इनको संरक्षण और रोपण जरूरी है जाए और यही कारण श्री कृष्ण वन कुंजन में लीला करते।
0: बिल्कुल। नंददास जी की एक रचना है कि जब कान्हा गैया चराए के थक गए और भूख थे व्याकुल हते और घाम हूँ सताई रही तो लिखो है कि तपन लाग्यो घाम परत अति धूप भैया कह छाह शीतल किन देखो भोजन को भई अबार लागी है भूख भारी मेरी ओर पेखो बर की छैया दोपहर की बिरिया गैया सिमट सब ही जह आवे नंददास प्रभु कहत सखन सो यही ठौर मोह भावे।
1: जे ठौर तो भावेगी ही, क्योंकि गर्मी की तपन के बाद वृक्षन की छैया बड़ी सुखद लागे। और सखी, कदम्ब के पेड़ तो शीतलता के संग सुगंध हु बिखेरे।
0: बिल्कुल।
1: जायते जे वृक्ष कृष्ण को प्यारा लगता होएगा, याई के नीचे वे ठाड़े है के वो गैयन को टेरते होंगे और बंसी बजाते होंगे, गोपी ग्वाल हो बिने कदम तर बुलाते।

0: अभी आपने शशि तिवारी और सखियन के स्वर में जो लोकगीत सुनो बहना।
1: हाँ सखी।
0: ब्रज वो भूमि है जहाँ प्रतिपल प्रेम ने अपनो आंचल बढ़ायो है, वृंदावन भूमि जहाँ प्रेम पले अनुराग बढ़े कण कण श्यामा श्याम।
1: हाँ सखी, ऐसो कहे हैं भक्तजन के ब्रज में कण कण में परम ब्रह्म को निवास है। हित विशाल लाल कह में है के नित्य लीला भूमि तहाँ परम ब्रह्म प्रति पुष्प खिले स्थल स्थल अविराम। हित विशाल लाल श्याम स्वयं वहाँ चित्रित श्यामा वृक्ष पात प्रेम स्थली पावन नाम। ब्रज की कुंज कुंज और वन सभी प्रेम में हते। तो सखी यही को वर्णन करती भाई एक वार्ता सुनवाए दे अपने श्रोतान को, जाको विषय है ब्रज की कुंज गलियां और वन। वार्ताकार हैं कुलभूषण सोनी।
2: ब्रज चित्र भगवान श्री कृष्ण की जन्म भूमि अरु क्रीड़ा स्थली रहो है, बिनकी बाल लीलान की पावन स्थली याकू कहो जावे है। यहाँ की रज माटी धूल आदि नामन सो बड़ी विचित्र और सुहावनी लागे है। जाकू श्री कृष्ण ने अपनी बाल्यावस्था में ही अपने मुखार बिंद में खाए चाट के और पवित्र कर दिया हतो, या रज को विशेष महत्व बढ़ा दिया हतो। या ईसो ही रज बिरज क्षेत्र में होवे के कारण इस क्षेत्र की जगह बिरज कही जावे है, और यह रज को लोग भगत लोग माथे सो लगा के नमन करत भय अपने शरीर में हूँ लपेट के उपटन की भांति लेप करे हैं। या में लोग लोट पोट लगा में फिरऊ जीरज संसो न चिपटत है। ऐसी है जी हमारे ब्रज की रज, और या को विशेष कर महत्व भव्य दृश्य यहाँ के रमण रेती गांव में अच्छी तरह से देख बेकू जाए मिल सके है। जहाँ तन के वसन और उतार के लिए शीघ्र शरीर में साबुन की भांति भगत लोग ऐसे लगाए के शरीर में लोट पोट है जाए हैं कि अपने सगरे शरीर के अंगन में या रेत माटी सो पानी की तरह नामे हैं। जो हूँ भगत या ब्रज भूमि के दर्शन करवे आमे हैं, या रज को चंदन की भांति माथे पे लगाए के और ब्रज परिक्रमा लगात भय विभिन्न मंदिरन के विग्रहन के दर्शन करके अपने जीवन को लाभ प्राप्त करें। जिला मथुरा मधुपुरी जो कि श्री कृष्ण ने अपने कंस मामा को वध करके नहीं है और अपनी बाल्यावस्था में ही वह को उद्धार कर रहे हो, या शहर में ही एक और सूर्य पुत्री यमुना नदी बह है जो निकट ही भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला रास लीला आदि स्थलन के गांव बसे भये हैं, जो कि गोकुल वृंदावन मधुवन निधिवन नंदगांव बरसानो कोकलावन आदि नामन सो जग प्रसिद्ध भये हैं। इनमें वृंदावन की गली वृक्ष लतांसो आच्छादित है के लिए बड़ी सुहावनी लगे हैं। यद्यपि ये गली 5000 वर्षों से ज्यादा पुरानी है परंतु जीर्ण शीर्ण अवस्था में रह गई है। इनको संरक्षण और निर्माण रूप को रख रखाव जिला पुरातत्व विभाग द्वारा यो जातो रहो है। इन गलीन में विशेष रूप से 4 प्रसिद्ध गलियां जो कि श्री बांके बिहारी मंदिर सेवा कुंज राधा बल्लभ मंदिर अरुण निधि वन में हूँ ये गली अवस्थित हैं। इनके बारे में कहो जावे।

0: इन गलियन में राधा और कृष्ण को प्राय बिहार अधिक रहे हो जाकर अंसो। ये ब्रज की चार गली कुंज गलीन के नाम अंसो जग प्रसिद्ध है गई। इन गलीन के जे नाम है पहली गली दानली गली। यह गली में नाम ब्रज गोविंद सो अपने ग्वाल बाल संग श्री कृष्ण द्वारा दान अर्थात कर यानी टैक्स मांगवे के कारण दान गली नाम पर हो। दूसरी गली है मान गली। यही गली सो जब राधा सरोवर में मान सरोवर में नहावे जावे ही तो भगवान श्री कृष्ण पाए रास्ता में ही रोक ले है। नाराज है कने राधा रानी सो रूठवे के कारण या को नाम मान गली नाम पर गए हो। जो तीसरी गली है वो है गुमान गली। या गली में श्री कृष्ण सो एक दिन श्री राधा अर्जुन ने गुमान भरे वचन करे है कन्हैया मेरे ही बल पर तेरा नाम और काम पूजे है। या ही सो या गली को गुमान गली नाम पर गए हो। चौथी गली है कुंज गली। ब्रज की गोपी दान न चुकाई के कारण या गली सो दूर दूर के छिप छिप के जायो करें। जी गली सब गलियन सो लता पता कान सो सोवे तो सक्रिय है के कारण या को नाम कुंज गली पर गयो हो। तो जी तो रही ब्रज की कुंज गलियन की बात। अब यहाँ के मुख्य वर्णन के विषय में या प्रकार सो कहो जावे है। वृंदावन के आसपास के मुख्य रूप सो जग प्रसिद्ध यहाँ के 12 वन बताए गए हैं। ये 12 वन है मधुवन। ये मधुवन जी महाराज ध्रुव जी की पावन तपस्या स्थली रही है। और दूसरा है तालवन। यहाँ श्री कृष्ण ने बड़े भाई बलदाव के संग में धेनुकासुर को वध किया हो। तीसरा खादिर वन, कुमुद वन, बहुला वन। ये वन यमुना जी के पूर्व दिशा में अवस्थित है। छठा है भद्र वन, बेल वन, लोवन। नौ महावन। ये वन पश्चिम के मध्य के क्षेत्र में स्थित है। और आगे दसवां है भांडीर वन। यह वन में ब्रह्मा जी द्वारा श्री कृष्ण संग राधा जी को विवाह संपन्न कराया गया हो। ग्यारहवो है काम्यक वन। यद्यपि ये कामसेन द्वारा बसाया हुआ कस्बा डीग अंतर्गत पड़े है। यहाँ में अनेक मंदिर सरोवर और विमल कुंड जैसा भगवान ने बनाया गया हते है। अब रहो बारहवो स्थान वृंदावन। बांके बिहारी हरिदास मंदिर आदि यहाँ विशिष्ट मंदिर है जिनको लोग दर्शन करे से अपवित्र हो पवित्र है जाए है। इनके अलावा चंदन के अनेक आश्रम यहाँ अवस्थित हैं। भगवान श्री कृष्ण ने यमुना तट पे बाल लीला करी। ब्रज और यहाँ के वन उपवनन की याद करत भये अपने चचेरे भाई उद्धव सो श्री कृष्ण को विरह भक्ति कालीन महाकवि सूरदास जी ने भी अपनी कृति सूर सागर में वर्णन करयो है। उदो मोहि ब्रज ब्रज रति नाही वृंदावन गोकुल वन उपवन सगन कुंज की छाई प्रात समय मात जसुमत अरुनंद देख सुख पावत माखन रोटी दही सजायो अतिहित संग खवावत गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हसत सिरात सूरदास धन धन ब्रजवासी जिन सो हित जदुतात। भगवान श्री कृष्ण के विषय में लिखत भये जग प्रसिद्ध रसखान कवि भये जिनने भगवान और ब्रज के सौंदर्य के रूप में घनो किरीट सवैया में वर्णन आ प्रकार सो करयो है। मानस गो तो वही रस खान बसो ब्रज गोकुल गाम के ग्वारन जो पशु हो तो कहा बस मेरा चरण नित नंद की धेनु मजारन। या ब्रज क्षेत्र की छवि को वर्णन अपने छंद और लेखन के माध्यम सो समय समय पे कवि और लेखक ने कियो है। और ब्रज की भाषा को मान रखा है क्योंकि ये ब्रज भाषा बड़ी प्यारी लगे। मैं हूँ अपनी याद दोहा और सवैया के माध्यम से क्या को वर्णन प्रस्तुत कर रही हूँ। दोहा है ब्रज भाषा मीठी लगे सिरी भाषा मात व्यंगन में सूदी लगे सुनत बहन हर साथ ब्रज वसुधा और ब्रज रज के प्रति मेरी नहीं की ये भाव भरी कविता या प्रकार तो सवैया में प्रस्तुत कर रहे हूँ। ब्रज की वसुधा आओ रामू अह रज को सुति रूप निहारो करो, ब्रज चंद भयो सुख कंद भयो, ब्रज कंस निकंदा उतारे धरो, कठभूषण या ब्रज को नती हो कवि अनवरनो कब पार परो, सुख या ब्रज तो नहीं और कहूँ जन्मो ब्रज या दुख भारे हरो। तो ब्रज क्षेत्र में वन यात्रा को घनो महत्व माने गयो है। यात्रियां ये परिक्रमा 84 कोस की जो कि 252 किलोमीटर की विशेष के रूप में चैती या बैसाख मास के शुक्ल पक्ष में मथुरा के विश्राम घाट से यमुना पूजन और श्री बांके बिहारी जी की अर्चना के उपरांत प्रति वर्ष गुसाइन के डेरा दल और उनके नेतृत्व में हजारन पद यात्री याकू आरम्भ करे है। बड़ी परिक्रमा पदयात्रा के रूप में अधिकांशतः अधिक मास अर्थात तीसरे वर्ष करी जावे है, परंतु आध्यात्मिक तौर पर 12 महीना छोटी परिक्रमा को चलन यहाँ होता रहे है। 84 कोसी ये ब्रज पद यात्रा 1.5 माह की कम से कम हुए है। ब्रज परिक्रमा के अंतर्गत राह में परवे बारे ये प्राचीन गांव और वन जिनके विकास हुए के कारण आधुनिक समय में बाहुल्य जन बस्ती के रूप में दिखाई पड़े हैं। यानी वनन में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी विभिन्न बाल लीला रास लीला दुष्टन को संहार करके धर्म और भक्तन के प्राणन की रक्षा करे जीवन को कल्याण करवे को संदेश दयो, भक्ति को कल्याण को मार्ग बता मत भयो, हमारे जीवन को हर चिंतन सुमरण करके सफल बनाया जा सके, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने संदेश दिया हो।
1: अब भाई आपने कुलभूषण सोनी थे ब्रज की कुंज गलियां और वनन को वर्णन करती भई वार्ता सुनी। बहना जैसे कि ब्रज साहित्य में कुंजन को वनन को सुंदर वर्णन भयो है ना, याई प्रकार गोवर्धन पर्वत के संरक्षण की हु बात कही गई है।
2: हाँ सखी, गोवर्धन पर्वत को तो श्री कृष्ण ने अपनी कन्या उंगरिया पर धारण कियो हो जब इंद्र ने वर्षा को प्रकोप कियो।
1: हाँ बहना देखो ना, वनन के संग संग पर्वत की भूमिका हो बहुत बड़ी होए। जे पर्वत वर्षा है वे में सहायक हो मैं और संग ही संग जड़ी बूटी फल फूल घास फूस और दुर्लभ औषधीन को भंडार हूँ मैं। तो ब्रजवासीन को यह बातें परिचित करावे के काजे ही गोवर्धन लीला भई। छीत स्वामी कहे हैं कि गोवर्धन की शिखर चार ऊपर फूली नव माधुरी जाए,
2: मुकुलित फलदल सघन मंजरी सुमन सुशोभित बहुत भाए,
1: कुसुमित कुंज पंज द्रुम बेली निर्झर झरत अनेक ठाए, छीत स्वामी ब्रज युवती यूथ में बिहरत है गोकुल राय।
2: सखी गोवर्धन महाराज की परिक्रमा को हु ब्रज में बहुत महत्व है और आजकल तो अधिक मास में या को महत्व और बढ़ जाए।
1: हाँ बिल्कुल बहना, हमारे साहित्य में पर्यावरण चेतना जीवंत है जाकू नित्य कर्मन्ते जोड़ो गयो है। परिक्रमा को उद्देश्य हु यही है कि हम इनके प्रति निष्ठा रखें और इनको संरक्षण करें। तो चलो गिरी गोवर्धन की जय जय कर लें भूरेश कुमार वर्मा के स्वर में।
2: हाँ सखी बिल्कुल।

0: भूरेश कुमार वर्मा ने बड़ो ही सुंदर वर्णन कियो है गोवर्धन जी को। सखी पर्वत नदी वन सभी की इतनी बड़ी भूमिका है तो इनको संरक्षण तो बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल।
0: और ब्रज की सुंदरता बनाए रखने की काजे जी जरूरी है।
1: बिल्कुल, ये सब वन कुंज नदी पर्वत वन्य जीवन कृष्ण लीला को अंग हैं और जीवनाधार के रूप में रक्षित हैं। और यमुना मैया को अवतरण तो श्री कृष्ण की लीलान के काजे ही भयो। तो हम तो यही कहेंगे कि याकी निर्मल शीतल धार सदैव बहती रहे और ब्रजवासिन को आशीष दे।
0: हाँ।

0: शालिनी शर्मा के द्वारा गाए या लोकगीत के संग ही हमारा आज का ब्रजमादरी कार्यक्रम यही संपन्न हो गए है। भोको यानी के वंदना को
1: और मोको यानी वंदना जौहरी को जाए वे की अनुमति दे।
0: नमस्कार। कार्यक्रम प्रस्तुत करता
1: विवेक कुमार तोमर।
2: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रजमाधुरी, यह आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम।
3: आइए सुनते हैं नाटक सलोमी। मूल कहानी ऑस्कर वाइल्ड, रेडियो नाट्य रूपांतरकार विक्रम शर्मा, निर्देशन और प्रस्तुति काजल सूरी। आज आप इस नाटक की पहली कड़ी सुनेंगे।
4: कैसे हैं आप?
5: वाह, आज शहजादी सलोमी कितनी खूबसूरत लग रही हैं। आप सब मानते हैं ना कि शहजादी बहुत खूबसूरत लग रही हैं।
6: चांद की ओर देखो, देखो कितना अजीब सा दिख रहा है, और इसी तरह अजीब सी वो भी दिखती है।
5: हाँ, वो बहुत अजीब दिखती है। पीले पर्दों में लिपटी, चांदी से हाथों को लहराती, बलखाती हुई चलती है, जैसे कई युगों से कोई भयानक तांडव कर रही हो, किसी के इंतजार में, किसी की तलाश में।
6: नहीं, वो एक मुर्दा औरत की तरह है, जो बहुत धीमे आगे सरकती है एक सांप की तरह।

0: अरे अरे कितना भयानक शोर गूंज रहा है, ये कौन जंगली जानवरों की तरह चिल्ला रहा है?
1: मैं नहीं जानता।
0: देखो शहजादी सलोमी की खूबसूरती का आलम कितना चमक रहा है।
2: तुम हमेशा उसी की तरफ घूरते रहते हो। मैं तुम्हें बार बार समझा रहा हूँ कि ऐसी औरत की ओर लगातार घूरना खतरनाक हो सकता है, कुछ भी अपशकुन घट सकता है।
0: वो आज बहुत खूबसूरत लग रही है, बहुत खूबसूरत।
1: लेकिन टेट्रॉक बहुत संजीदा लग रहे हैं।
3: हाँ, वो अक्सर बहुत संजीदा दिखते हैं।
4: वो किसी को ढूंढ रहा है।
2: हाँ, वो सचमुच किसी को ढूंढ रहा है।
4: किसे ढूंढ रहा है वो?
2: मुझे नहीं पता।
0: लेकिन देखो शहजादी कितनी मासूम लग रही है, मैंने पहले इसे इतना मासूम कभी नहीं देखा। चांदी के शीशे में सफेद गुलाब की परछाई की तरह दिख रही है ना? वो आज दिख रही है ना?
2: तुम्हें उसकी ओर नहीं देखना चाहिए, तुम बहुत ज्यादा घूरते हो उसे।
5: ये जो काले लिबास में लिपटी है और रंगीन मोतियों का हार पहने हुए है, क्या यही मल्लिका हेरोडियस है?
6: हाँ, यही हेरोडियस है, टेट्रक की बीवी।
3: और उसका रंग महान सीजर के जामुन लिबास से बहुत मेल खाता है।
5: अफसोस, मुझे सीजर से मिलने का मौका कभी नहीं मिला।
7: और मेरे बाद मुझसे भी अधिक ताकतवर का जन्म होगा। मुझमें वो हिम्मत नहीं कि मैं उसे बंधन मुक्त कर सकूं, लेकिन जब वो आएगा सुनसान राहें खुशी से झूम उठेंगी, जब और खुशी के फूल महकेंगे, अंधे दिन के उजाले को देख सकेंगे, बहरे संसार का गीत सुन सकेंगे, माओ की कोख से जन्मे नए बच्चे जंगली जानवरों के हमजोली होंगे, जो आदम खोर शेरों की सवारी करेंगे।
8: खामोश करो इसे, हमेशा बकवास करता रहता है।
3: अरे नहीं नहीं, वो बड़ा ही शरीफ आदमी है। रोज जब मैं उसे कुछ खाने को देता हूँ तो वो मेरा शुक्रिया अदा करता है।
5: कौन है ये?
1: एक इलाहमी।
5: और इसका नाम क्या है?
1: जोकनान।
5: कहाँ से आया है ये?
1: रेगिस्तान से, जहाँ पर ये जंगली फल और फूल खाता था। ऊन के बालों के फटे लिबास में लिपटा हुआ था जब ये पहली बार यहाँ आया था। इसकी मुख मुद्रा भी बड़ी भयानक थी।
5: ये अभी किस बारे में बात कर रहा था?
8: हम नहीं बता सकते, कोई भी नहीं बता सकता। कभी कभी ये बहुत डरावनी बातें करता है, पर ये समझना बिल्कुल नामुमकिन है कि ये क्या कहता है।
5: कोई इससे बात क्यों नहीं करता?
9: नहीं, टेट्रॉक ने ऐसा करने से मना कर रखा है।
0: शहजादी ने अपना खूबसूरत चेहरा पंखे के पीछे छुपा रखा है। उसके छोटे छोटे चांदी से हाथ पंखे को इस तरह हिला रहे हैं जैसे वो उड़ने को बेकरार हो। उसके हाथ सफेद तितली की तरह हिल रहे हैं।
2: तुम्हें उससे क्या लेना बेवकूफ, तुम उसकी ओर क्यों देख रहे हो? उसकी ओर मत घूरो, सचमुच कुछ अपशकुन हो जाएगा।
5: कितना अजीबोगरीब जेलखाना है ये।
9: आपको शायद मालूम नहीं कि टेट्रॉक ने अपने बड़े भाई जो कि हेरोडियस के पहले पति थे, इसी बंदी खाने में 12 साल के लिए कैद में रखा था, और इसके बावजूद भी उनकी मौत नहीं हुई, इसलिए उनकी हत्या कर दी गई।
2: हत्या कर दी गई थी? ऐसा किसने किया?
8: उस राक्षस नमान ने।
5: उसे ऐसा करते हुए डर नहीं लगा?
8: शायद बिल्कुल नहीं, क्योंकि टेट्रॉक ने उसे वो अंगूठी दी थी।
5: कौन सी अंगूठी?
8: मौत की अंगूठी, और शायद इसीलिए उसे बिल्कुल डर नहीं लगा।
5: लेकिन फिर भी एक राजा को गला घोटकर मौत के घाट उतारना डरावना फैसला है।
0: ओह, शहजादी उठ खड़ी हुई, उसने अपने टेबल को भी छोड़ दिया। वो परेशान नजर आ रही है। अरे वो इसी ओर आ रही है। हाँ, सच सच, अरे इसी ओर आ रही है। कितनी मायूस दिख रही है।
2: उसकी ओर मत देखो, मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूँ, मत देखो।
0: ये बदहवास पंछी की तरह झूमती हुई आ रही है, एक सूखे फूल की तरह कांप रही है, जो हवा के थपेड़ों को सह नहीं पा रही हो। वो आ रही है।
10: मैं यहाँ रुकना नहीं चाहती, मैं यहाँ नहीं रुक सकती। टेट्रॉक मुझे कैसे घूरता रहता है?

0: मुझे ये समझ नहीं आता, मेरी माँ का पति होने के बावजूद वो मुझे ऐसी निगाहों से क्यों घूरता है? मुझे समझ नहीं आता इसका क्या मतलब है, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो ऐसा क्यों करता है।
1: शहजादी, आप अभी अभी दावत छोड़कर आई हैं, आप यहाँ आराम से बैठ जाएं।
0: कितनी मीठी हवा है यहाँ, मैं यहाँ सुकून से सांस ले सकती हूँ।
2: तुमने उससे फिर बात की और तुम उसे अभी भी घूर रहे हो? ओह, मुझे अंदेशा हो रहा है कि कुछ अपशकुन होकर ही रहेगा।
0: ये चांदनी कितनी सुहानी है, एकदम निर्मल और ठंडी।
3: वो परम शक्तिशाली आ पहुंचा है, वो मनुष्य का बेटा आ चुका है। देखो देखो, वो नरभक्षी आत्मा गहरे पानी में झुक रही है और वो जहरीले समुद्र को छोड़कर आकाश पर ऊपर उठ रही है। जंगल से आने वाली पत्तों की सरसराहट से

0: उफ, ये किसकी चीखने की आवाजें थी?
1: वो इल्हामी शहजादी।
0: ओह, वो इल्हामी, वो जिससे टेट्रॉक को डर लगता है?
2: ये हम नहीं जानते शहजादी, पर ये इल्हामी ही था जो जो चीखा था।
3: शहजादी, अगर इजाजत हो आपका मखमली बिछौना मंगवा दूं? बाहर बगीचे में इस वक्त सुहाना मौसम है।
0: वो मेरी माँ के बारे में बहुत भयानक बातें कहता है, कहता है ना?
4: वो क्या कहता है हम कभी समझ नहीं पाते शहजादी।
0: नहीं, वो सचमुच में बहुत अजीब और भयानक बातें कहता है उसके बारे में।
1: शहजादी सलोमी, टेट्रॉक ने आग्रह किया है कि आप कृपा करके वापस दावत में आ जाएं।
0: नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगी।
3: क्षमा करें शहजादी, अगर आप लौट कर नहीं गई तो मुझे यकीन है कि कुछ अप्रिय घट जाएगा।
0: क्या ये इल्हामी कोई वृद्ध आदमी है?
1: नहीं शहजादी, वो एक खूबसूरत नौजवान शख्स है।
5: हम यकीन से नहीं कह सकते क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि वो इलियस है।
0: ये इलियस कौन है?
6: इस मुल्क का एक पुराना इल्हामी शहजादी।
7: ओ नारायण बाशिंदो, खुशियां मनाने के लिए इतने बेताब मत बनो। उस लाठी को जो तुम पर कहर बरसाती है टूटी हुई मत समझो, क्योंकि अजगर के बोए हुए बीजों से सांपों का जन्म होने वाला है। और याद रखो, प्यार के पंछियों को निगलने के लिए उनके फन उठ चुके हैं।
0: उफ, कितनी अजीब आवाज है उसकी। मैं उसे बात करना चाहती हूँ।
1: मुझे डर है शहजादी कि आप ऐसा नहीं कर पाएंगी। शहजादी साहिबा, टेट्रॉर्क ये कभी नहीं चाहता कि कोई भी उससे बात करे। उसने शहर के सबसे बड़े पादरी को भी उससे बात करने के लिए मना कर रखा है।
0: लेकिन मैं उससे बात करना चाहती हूँ।
1: ये नामुमकिन है शहजादी।
3: शहजादी, मेरे ख्याल में आप वापस दावत में जाना पसंद करेंगी।
0: इल्हामी को मेरे सामने लाया जाए, मैं हुक्म देती हूँ।
1: हम ये हिमाकत नहीं कर सकते शहजादी।
8: रुक जाइए शहजादी,
1: रुक जाइए शहजादी,
0: आप लोग हट जाइए यहाँ से, हटिए।

0: यहां पर कितना अंधेरा है। इतने गहरे अंधेरे में तो बहुत डर लगता होगा। ये तो बिल्कुल किसी मकबरे की तरह है।
1: तुम लोगों ने मेरा हुक्म नहीं सुना? इस इल्हामी को फौरन बाहर निकालो, मैं इसे देखना चाहती हूँ।
2: शहजादी साहिबा, मैं इल्तिजा करता हूँ कि हमें ऐसा करने पर मजबूर ना करें।
1: मैं अपना सब

0: खो रही हूँ जो तुम्हारे लिए बहुत महंगा साबित होगा।
1: साहिबा, हमारी जिंदगी आपके आदेशों पर चलती है, लेकिन आप जो हमसे करने के लिए कह रही हैं वो हम नहीं कर सकेंगे। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप अपना आदेश वापस ले लें।
0: ओ,
2: मैं नहीं जानता कि क्या होने वाला है, पर मुझे पूरा यकीन है कि कुछ ना कुछ अप्रिय घटने वाला है।
0: प्रिय सीरियन
3: जी,
0: तुम मेरे आदेश का पालन करोगे ना? हाँ, तुम मेरे आदेश का पालन जरूर करोगे, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए बहुत कुछ है
3: जी,
0: जो कोई खास मायने नहीं रखता, लेकिन तुम्हारे लिए बहुत अहम है ना? बेशक तुम्हारे दिमाग में अजीब हलचल है, लेकिन तुम्हारा दिल ये जरूर मानेगा कि तुम मेरे आदेश का पालन करो, और तुम ऐसा जरूर करोगे, क्योंकि मैं इस इल्हामी को देखना चाहती हूँ
3: जी।
0: अक्सर बहुत से लोग इसके बारे में बातें करते हैं, और टेट्रॉक को भी मैंने कई बार इसके बारे में कहते सुना है। मुझे लगता है कि टेट्रॉक इससे बहुत डरता है, और शायद तुम भी। क्या तुम भी इससे बहुत डरते हो प्रिये?
3: नहीं शहजादी, लेकिन टेट्रॉक ने सख्त फरमान दे रखा है कि इस बंदीगृह के दरवाजे को कोई नहीं खोलेगा।
0: तुम इसे मेरे लिए खोलोगे प्रिये? और जब मैं कल महल के दरवाजे की दहलीज पर से गुजरूंगी, तो मैं तुम पे एक सुर्ख गुलाब फेंकूंगी।
3: शहजादी, नहीं नहीं शहजादी, नहीं नहीं, मैं हरगिज नहीं कर सकता।
0: तुम मेरे लिए ऐसा जरूर करोगे प्रिये सीरियन।
4: इलामी को सामने लाया जाए, शहजादी उसे देखने की तमन्ना रखती हैं।
2: ओह, चांद कितना अजीब लग रहा है, जोकनान बाहर आ रहा है, जोकनान बाहर आ रहा है।
5: कहाँ है वो? कहाँ है वो जिसकी नफरत का प्याला भर चुका है? कहाँ है वो जो सुनहले परिधानों में लिपटी है और अपने कयामत के दिन की ओर दौड़ रही है? जो जानती है उसे अपने लोगों के बीच ही मौत के घाट उतार दिया जाएगा, उसे सामने मुंतखिब किया जाए ताकि वो उस फरमान को सुन सके जो शहंशाहों के महल और बंजर धरती पर एक ही सुर में बजता है।
0: सीरियन, ये किसके बारे में बोल रहा है?
3: शहजादी, कुछ नहीं कहा जा सकता, कुछ भी नहीं कहा जा सकता।
0: पर ये बहुत ही डरावना और भयानक बोल रहा है।
3: आपसे गुजारिश करता हूँ मोहतरमा, चली जाइए।
0: सबसे डरावनी इसकी आंखें हैं, जो इससे ज्यादा और बहुत भयानक बोलती हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या ये फिर से बोलेगा?
3: यहाँ मत रुकिए शहजादी, यहाँ मत रुकिए।
0: ये तो एकदम अलग निकला, एक कमजोर पीले बुत की तरह, बेजान और ठंडा। लेकिन फिर भी मुझ में इसकी कशिश है, और मुझे पूरा यकीन है कि ये चांद से भी कम बेदाग होगा। इसकी ठंडी चांदनी में एक अजीब सी गर्माहट है, मैं इसे करीब से देखना चाहती हूँ।
3: मोहतरमा सलोमी, रुकिए रुकिए, उसके करीब मत जाइए।
0: नहीं, मुझे उसे और करीब से देखना ही होगा।
3: नहीं शहजादी, नहीं।
5: ये कौन औरत मुझे इस तरह घूर रही है? मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि वो मुझे इस तरह देखे। ये अपनी चमकती पलकों के नीचे सुनहली आंखों से मुझे इस तरह क्यों देख रही है? मैं नहीं जानता कि ये कौन है, और मुझे ये जानने की कोई जरूरत भी नहीं। इसे यहां से चले जाने को कहो, मैं इससे बिल्कुल बात नहीं करना चाहता।
0: मैं सलोमी हूं, हेरोडियस की बेटी और जूडी की शहजादी।
5: दूर रहो बेबीलोन की बेटी, देवताओं के मसीहा के करीब आने की हिमाकत।

0: मत करना।
1: ओ जोकनान, फिर से बोलो। अरे बोलो, बोलते जाओ।
0: मेरे करीब मत आओ। ध्यान से देवताओं की मर्जी समझो और उन रेगिस्तानों की ओर भागो जहां तुम मनुष्य के बेटे को ढूंढ सको। वो बेटा जो तुम्हारी राह देख रहा है।
1: ओ जोकनान, ये मनुष्य का बेटा कौन है? कहां ढूंढ पाऊंगी मैं उसे? मुझे बताओ कि क्या वो उतना ही हसी है जितना कि तुम?
0: चुप हो जाओ सलोबी। हेरोडियस की बेटी और जुड़िया की शहजादी, चुप जाओ। मुझे महल से मौत के मसीहा के पंख फड़फड़ाने की आवाज आ रही है। जाओ छुप जाओ, हमेशा हमेशा के लिए छुप जाओ।
2: शहजादी साहिबा, मैं इंतजार करता हूं कि आप भीतर चली जाएं। कृपा करके मेरी बात माने और यहां से भाग जाएं।
0: ओ देवताओं के मसीहा, अपनी चमकती तलवार लेकर तुम यहां क्यों आ गए? वो कौन है जिसकी तलाश में तुम इस मनहूस जगह पर आए हो? वो जो चमकते लिबास में लिपटा होगा और जिस दिन अपनी मौत के आगोश में जा पहुंचेगा। वो घड़ी कहीं आज तो नहीं।
1: जोकनान,
0: ये कौन बोला?
1: ओ जोकनान, मैं तुम्हारी शख्सियत से प्यार करती हूँ। तुम वो प्यार के देवता हो जिसकी चाह किसी भी औरत को दुनिया के दूर कोने से खींच कर भी तुम्हारे पास ले आए। दुनिया में इतना सफेद कुछ भी नहीं है जितनी की तुम्हारी शख्सियत। जोकनान, मैं तुम्हें छूना चाहती हूँ। मुझे अपने आप को छूने दो। हाँ,
0: दूर सलोमी, बेबीलोन की बेटी, मुझसे दूर रहो। मैं तुमसे कोई भी बात नहीं करना चाहता और ना ही तुम्हारी कोई बात सुनना चाहता हूं। मैं सिर्फ उस देवता की आवाज सुनता हूं जिसका मैं पयंबर हूं। मैं तुम्हें आदेश देता हूं, हेरोडियस की बेटी, मुझसे दूर रहो। मुझे छूने की हिमाकत मत करना। इस देवता के पवित्र मंदिर को पवित्र मत करो।
1: उफ, कितने बदसूरत और भद्दे बाल हैं तुम्हारे, धूल और मिट्टी से भरे ये बाल। छी, कितने गंदे और बदबूदार हैं। मुझे इनसे घिन आती है। लेकिन तुम्हारा चेहरा, मुझे तुम्हारे चेहरे की इच्छा है जोकनान। ये कितना खूबसूरत और हसीन है। तुम दुनिया के सब हसी चेहरे वालों में भी सबसे हसी हो। ये राजस्वी चेहरा उन राजाओं के चेहरों से भी ज्यादा दमकता है जो पूरी दुनिया पर राज करते हैं और जिनके कदमों पर दुनिया की सब हसी स्त्रियां अपना सब कुछ लुटाने के लिए बेकरार रहती हैं। तुम्हारे चेहरे का नूर इतना प्रगाढ़ है कि सूर्य को अपनी उद्दंडता पर तरस आता होगा, जो सिर्फ इस संसार को ही रोशन कर पाता है। ओ प्रिय जोकनान, दुनिया में कोई भी चीज इतनी लाल नहीं जितना कि तुम्हारा चेहरा। मैं तुम्हारे चेहरे को चूमना चाहती हूँ।
0: कभी नहीं बेबीलोन की बेटी, कभी नहीं।
2: शहजादी साहिबा, मुझसे ये सब नहीं देखा जा रहा। मैं ये सब सहन नहीं कर सकता। साहिबा, मैं विनती करता हूं कि इस शख्स से दूर हो जाओ। यह किसी अनहोनी की तरफ

0: इशारा करता है, ये इशारा करता है।
1: ओ, ओ, ओ, ओ, सीरियन ने अपने आप को कत्ल कर दी। इस नौजवान कप्तान ने अपने आप को काट डाला।
0: ये क्या किया उन्होंने? ये क्या किया?
2: ये क्या मार रहा?
1: ये नौजवान जो जो मेरा सबसे प्रिय मित्र था और जिसे जिसे मैं हमेशा कोई ना कोई उपहार देता था, उसने मुझे कितना बड़ा उपहार दे दी, अपनी जिंदगी का उपहार। ओह, वो मेरी इस बात को मानता था कि कुछ अप्रिय जरूर घटेगा, क्योंकि क्योंकि मैं हमेशा कहता था कि कुछ अपशकुन घटने वाला है। देखो, वो अपशकुन घट गया। मैं जानता था कि आज चांदनी किसी मुर्दा चीज की हवस में चमक रही है, लेकिन वो किसको अपनी आगोश में समेटेगी ये नहीं जानता था। ओह, बदकिस्मती, मैं उसे चांद से छुपा क्यों नहीं सका। अगर मैं इसे किसी गुफा में छुपा देता तो चांदनी इसे देख नहीं पाती।
3: शहजादी साहिबा, अभी अभी इस नौजवान कप्तान ने अपने आप को मौत के घाट उतार दिया है।
4: हेरोडियस की बेटी सलोमी, क्या तुम्हें इस बात का खौफ नहीं? क्या तुमने सुना नहीं जो मैंने तुमसे कहा था कि महल से मौत के मसीहा के पंख फड़फड़ाने की आवाज आ रही है? और अब भी तुम्हें यकीन नहीं कि मौत का मसीहा इस मनहूस जगह आ पहुंचा है? सावधान सावधान शहजादी सलोमी, मौत का तांडव शुरू हो चुका है। मैं तुम्हें नहीं देखना चाहता, मैं तुमसे बात भी नहीं करना चाहता। तुम श्रापित हो, घोर श्रापित।
3: हमें इस लाश को जल्दी यहां से हटा देना चाहिए। टेट्रॉर्क को लाशों से सख्त नफरत है, सिवाय उन लाशों को जिन्हें उसने खुद मौत के घाट उतारा हो।
1: वो मेरा भाई था, भाइयों से भी ज्यादा करीब था। मैंने उसे एक इत्र का डिब्बा दिया था और एक सोने की अंगूठी जिसे वो हमेशा अपनी उंगली में पहने रखता था। रोज शाम को हम नदी के किनारे बादाम के पेड़ों में से गुजरते थे और वो मुझे अपनी सरजमी के कई दिलचस्प किस्से सुनाया करता था। वो हमेशा हमेशा बहुत आहिस्ता बोलता था और उसकी आवाज बांसुरी की धुन की तरह बहुत मीठी थी। नदी के पानी में अपना अक्स देखना उसे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि क्योंकि वो बहुत खूबसूरत था और मुझे उससे बहुत जलन होती थी।
5: तुम ठीक कहते हो,
3: हमें इस लाश को कहीं छुपा देना चाहिए ताकि टेट्रॉक की नजर इस पर ना पड़ सके।
6: फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, टेट्रॉक इस ओर नहीं आएगा क्योंकि उसे इस इल्हामी से बहुत डर लगता है।
7: सलोमी, सलोमी कहाँ है? कहाँ है शहजादी? मैंने उसे दावत में वापस आने का आदेश भेजा था, लेकिन वो वापस नहीं आई।
8: आह, तो शहजादी सलोमी यहाँ है।
9: उसे ऐसी निगाहों से मत देखो, तुम हमेशा उसे इसी तरह घूरते रहते हो।
8: आज रात चांद कितना अजीब लग रहा है, देखो है ना, कितना अजीब। मैं ठीक कह रहा हूं ना, है ना?
9: गलत, एकदम झूठ। चांद चांद की तरह ही है हमेशा के लिए। और यही सच है। चलो हम वापस दावत में चले। मेरे ख्याल में तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है।
8: नहीं, मैं यहीं रुकना चाहता हूँ, यहीं पर सब इंतजाम किया जाए। यहाँ की हवा कितनी मधुर है। क्यों मल्लिका, हमें सीजर के भेजे गए एम्बेसडर्स का पूरा ख्याल रखना चाहिए, है ना?
9: मैं जानती हूँ तुम किसका ख्याल रखने के लिए यहाँ रुकना चाहते हो। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ।
8: कितनी मीठी हवा है यहाँ, ठंडी और निर्मल। आओ हेरोडियस, मेहमान हमारा इंतजार कर रहे हैं, आओ। ओह,

0: ओह, लेकिन इसकी वजह क्या थी? मैंने तो उसे कप्तान नियुक्त किया था।
1: हम नहीं जानते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन ये सच है कि उसने अपने आप को मार दिया।
0: ये मुझे बहुत अजीब लग रहा है। मुझे इसके मर जाने पर बहुत अफसोस है। ये बहुत ही खूबसूरत नौजवान था और इसकी बड़ी बड़ी आंखों में झील सी गहराई थी। ये अपनी गहरी आंखों से बहुत से लोगों को देखता था और मुझे याद है इसी गहराई से ये सलोमी को भी देखता था। सच, मैं सोचता हूं कि ये सलोमी की तरफ बहुत ज्यादा गहराई से देखता था। है ना, मैं ठीक कह रहा हूं ना?
2: हाँ, इसके अलावा बहुत से लोग हैं जो सलोमी को घूरते हैं।
0: मैंने इसे अपना कप्तान नियुक्त किया था। मुझे बेहद अफसोस है कि अब मर चुका है। ओ, तुमने ये लाश यहां क्यों पड़ी रहने दी? ले जाओ इसे।
3: जी हुजूर।
0: यहां बहुत ठंड है मल्लिका, बहुत ठंडी हवा चल रही है ना? है ना हेरोडियस?
2: नहीं, कोई हवा नहीं चल रही। यहाँ तो सब कुछ बड़ा शांत है।
0: नहीं, तुम गलत कह रही हो। हवा चल रही है और इस हवा में ऐसा कुछ है जो बुरी तरह फड़फड़ा रहा है। मुझे बड़े बड़े भयानक पंखों के फड़फड़ाने की आवाज सुनाई पड़ रही है। क्या तुम सुन रही हो ये आवाजें?
2: नहीं, मुझे तो कुछ भी सुनाई नहीं पड़ रहा।
0: हाँ, अब ठीक है। मुझे भी अब कुछ नहीं सुनाई पड़ रहा, लेकिन मैंने कुछ सुना जरूर था।
2: अरे,
0: तेज आंधियों के चलने की आवाज। अब तो सब कुछ थम गया, आंधी गुजर चुकी है। लेकिन ठहरो, सुनो।
2: क्या?
0: मुझे वो आवाज फिर से सुनाई पड़ रही है। सुनो, तुम्हें भी आवाज सुनाई पड़ रही है ना? वो भयानक पंखों के फड़फड़ाने की आवाज। क्या सुनो?
2: क्या कह रहे हो? मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। चलो, हमें अंदर चले जाना चाहिए।
0: मेरी तबीयत को कुछ नहीं हुआ।
2: ओफो।
0: तुम्हारी बेटी बहुत बीमार दिख रही है। कितनी बीमार लग रही है, मैंने इसे इतना मायूस कभी नहीं देखा।
2: मैंने तुम्हें कितनी बार टोका है कि मेरी बेटी की तरफ ऐसे निगाहों से मत देखा करो।
0: सलोमी।
4: अभी आप सुन रहे थे नाटक सलोमी, मूल लेखक ऑस्कर वाइल्ड, रेडियो नाट्य रूपांतरकार विक्रम शर्मा, भाग लेने वाले कलाकार थे अनुराग अरोरा, लालिमा अनेजा डैंग, गीता वर्मा, राहुल दक्ष, राजीव शर्मा, जयदीप सिंह, जयंत घोष, कपिल, हिम्मत सिंह नेगी, अमर साहा और तरुण भल्ला। निर्देशन और प्रस्तुति काजल सूरी।
5: आइए सुनते हैं ये समाचार।

这里广播电台听众朋友们，请收听拉达长的歌曲。

0: नमस्कार, मैं आकाश
1: और मैं दर्पण। आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा खेल खिलाड़ी, वो कार्यक्रम जहां रोजाना हम आपको खेल जगत से जुड़ी तमाम खबरों से रूबरू कराते हैं और सुनाते हैं खिलाड़ियों के संघर्ष और सफलता की किस्से कहानियां, इस उम्मीद में कि वो आपको प्रेरित करेंगी और जीवन में आगे बढ़ने की सीख और हौसला देंगी। और आज खेल खिलाड़ी कार्यक्रम में बात करने वाले हैं हम युवा शक्ति की।
0: युवा उम्र की सबसे बड़ी खूबसूरती शायद यही होती है कि उसे ये नहीं पता होता कि क्या असंभव माना जाता है, इसलिए वो कोशिश कर बैठता है। बड़े मंच से डरने के बजाय उसी मंच पर अपनी पहचान बनाने निकल पड़ता है। खेल में जब कम उम्र के खिलाड़ी बड़े मुकाम पर जीतते हैं तो सिर्फ मेडल नहीं जीतते, वो ये भी याद दिलाते हैं कि कई बार ज्यादा सोचने से बेहतर होता है पहला कदम उठा लेना, क्योंकि आत्मविश्वास हमेशा अनुभव से नहीं आता, कभी कभी कोशिश करने से भी आता है।
1: जिंदगी में भी हम अक्सर सही समय, सही मौके और पूरी तैयारी का इंतजार करते रह जाते हैं, लेकिन आगे वही बढ़ते हैं जो घबराहट के बावजूद शुरुआत कर देते हैं। क्योंकि खेल हो या जिंदगी, नई उड़ाने हमेशा उसी जगह से शुरू होती है जहां हौसला उम्र से बड़ा हो जाता है। और आज ऐसी ही कुछ रोचक कहानियां हैं, युवा शक्ति की कहानियां हमारे पास हैं। तो अगले आधे घंटे बने रहिए अपने रेडियो सेट के पास, क्योंकि कुछ प्रेरित कर देने वाली कहानियां आपके समक्ष हम पेश करने वाले हैं। आइए कार्यक्रम को शुरू करते हैं।

0: साथ बात करेंगे रैकेट स्पोर्ट्स में, टेनिस, बैडमिंटन की, चेस में क्या कुछ चल रहा है उसके बारे में बताएंगे, और साथ के साथ कुश्ती की दुनिया में क्या चल रहा है उस पर भी नजर डालेंगे।
1: हॉकी की दुनिया में क्या चल रहा है, भारत ऑस्ट्रेलिया गई है उसके बारे में भी बात करेंगे, और नॉर्वे में चेस की भी बात करेंगे कि नॉर्वे में चेस का फिफ्थ राउंड में आज क्या होने वाला है।
0: जी हाँ, दो दिग्गज भारतीय खिलाड़ी आमने सामने होने वाले हैं उस पर चर्चा होगी, लेकिन साथ के साथ कुछ दिग्गज खिलाड़ियों ने शूटिंग में भी कमाल करके दिखाया है उस पर चर्चा करेंगे, और क्या कहा हमने, युवा शक्ति पर आज हमारा केंद्र बना रहेगा। तो इसलिए युवा खिलाड़ी टीनेजर्स ने देश विदेश में अलग अलग खेलों में कहां कहां परचम लहराया है उसकी बात करेंगे, एथलेटिक्स पर भी चलते चलते नजर डालेंगे। तो बने रहिए अपने रेडियो सेट के पास, आप सुन रहे हैं खेल खिलाड़ी।

0: जी हाँ, आईपीएल में तय हो चुका है कि कौन सी दोनों टीमें होने वाली हैं आमने सामने ग्रैंड फिनाले में। कल फाइनल का मुकाबला खेले जाने वाला है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, जो कि डिफेंडिंग चैंपियंस भी हैं, उनके सामने होने वाली है गुजरात टाइटंस की टीम, क्योंकि क्वालिफायर टू में शानदार प्रदर्शन करते हुए राजस्थान रॉयल्स को उन्होंने हराया 7 विकेटों से। 215 का लक्ष्य था जिसको 8 गेंदे रहते गुजरात टाइटंस की टीम ने चेज कर लिया। आपको ये बता दें कि शुभमन गिल ने एक कमाल का शतक जड़ा, 104 रन बनाए, जिसके चलते गुजरात टाइटंस की टीम ने मुकाबले को एक तरफा कर जीत को हासिल किया। दिल टूटा राजस्थान रॉयल्स का, क्योंकि कमाल की पारी खेली थी एक युवा खिलाड़ी ने। जी हाँ, वही युवा खिलाड़ी जो चर्चा का केंद्र पिछले 1-1.5 महीने से आईपीएल में बने हुए हैं, वैभव सूर्यवंशी ने 96 रन की एक परिपक्व पारी खेली। आप सभी जानते हैं कि आईपीएल जब शुरू हुआ था तो उद्देश्य ये था कि इस तरह के टैलेंट को, इस तरह की प्रतिभाओं को एक मंच दिया जाए, और वो काम बखूबी किया है इस सीजन ने आईपीएल में। वैभव सूर्यवंशी चर्चा का केंद्र लगातार बने हुए हैं।
1: जी बिल्कुल, जब साल 2025 में महज 14 साल की उम्र का एक बच्चा हाथ में बल्ला थामे आईपीएल के बड़े मंच पर आया था ना, तो क्रिकेट के बड़े बड़े दिग्गजों ने मुस्कुराकर कहा था, ये तो बस एक ट्रेलर है, अभी इसे बड़ा तो होने दो। लेकिन ठीक एक साल बाद 2026 के इस सीजन में उसी बच्चे ने एक ऐसी पिक्चर दिखाई कि दुनिया के सबसे खूंखार गेंदबाजों के पसीने छूट गए। नाम है वैभव सूर्यवंशी, उम्र महज 15 साल और जिगर बिल्कुल शेर जैसा। एक लड़के के सामने जब दुनिया का सबसे खतरनाक यॉर्कर किंग जसप्रीत बुमराह आए तो लोग दुआएं मांग रहे थे, लेकिन वैभव ने क्या किया, बुमराह की पहली गेंद और हवा में उड़ते हुए सीधे बाउंड्री के पार। सामने पैट कमिंस भी आए, वैभव ने उनको भी पहली ही गेंद पर गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। दुनिया रणनीति बनाती रह गई और ये लड़का पहली ही गेंद से तबाही मचाता रहा। लोग कहते हैं कि T20 में संभल कर खेलना चाहिए, लेकिन वैभव ने तो रिकॉर्ड्स की किताब ही फाड़ दी। 14 मैच 583 रन और स्ट्राइक रेट ऐसा कि कैलकुलेटर भी शर्मा जाए, 237.31। क्रिस गेल का 14 साल पुराना 59 छक्के लगाने का रिकॉर्ड इस बच्चे ने एक सीजन में तोड़ दिया। आंद्रे रसल के सबसे तेज 1000 आईपीएल रन के रिकॉर्ड को महज 440 गेंदों में धुआं धुआं कर दिया। हैदराबाद के खिलाफ तो मानो चक्रवात ही आ गया था, सिर्फ 37 गेंदों में शतक। लेकिन वैभव सिर्फ बल्ला घुमाना नहीं जानता, वो मैच्योरिटी भी जानता है। गुजरात के खिलाफ क्वालिफायर मैच जब पूरी टीम संकट में थी, तब वैभव 18वें ओवर तक क्रीज पर डटकर 47 गेंदों में 96 रनों की वो जिम्मेदार पारी खेली।
0: जी हाँ, मैच्योरिटी दिखाई, परिपक्वता दिखाई, और हम सब तो उनके मुरीद हुए ही हैं। साथ के साथ दुनिया भर में अपनी बल्लेबाजी का और अपनी कप्तानी का लोहा मनवा चुके कुमार संगकारा, जो इस वक्त राजस्थान रॉयल्स के हेड कोच है, वो भी वैभव सूर्यवंशी के मुरीद हो गए हैं। उन्होंने कल के मुकाबले के बाद कहा,

0: much tougher batting innings with wickets falling around him, and he held his nerve and really got us to a defendable total. Vaibhav is, for 15 years old, he's very mature. He reads the game really well. He reads situations well, and he's got no fear. I think we are very, very proud of the season that he's had, and we just want to make sure that he keeps going, keeps that intent, keeps that no fear attitude, and keeps growing. I think he's going to be even better as the years go by.
1: राजस्थान रॉयल्स की टीम भले ही ट्रॉफी की रेस से बाहर हो गई हो, लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने 140 करोड़ देशवासियों के दिल में वो जगह बना ली जहां से उसे कोई नहीं निकाल सकता।
2: अब सवाल ये है कि क्या वैभव सूर्यवंशी भारत के लिए खेलने के लिए तैयार है? कुमार संगकारा से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा,
0: You never know if anyone's ready until they play them. And with everything Vaibhav shown against some of the best bowlers in the world, I think he's more than ready to take on any challenge that you throw at him. And I'm sure that he'll get that call up very, very soon. He's batted with a lot of maturity. He shouldered the responsibility of that opening partnership so well for us this season.
2: जी हाँ, तो सभी वैभव के मुरीद हो रखे हैं, हम भी मुरीद हो रखे हैं, पूरा देश उनका दीवाना हो रखा है, लेकिन आकाश मेरे साथी कुछ ज्यादा दीवाने हो गए हैं, क्योंकि वैभव भी बिहार से हैं, आकाश भी बिहार से हैं। क्यों आकाश?
1: बिल्कुल सही, और मैं चाहता हूँ कि उसी अंदाज में मैं बयां करूँ।
2: जी जी बिल्कुल कीजिए।
1: भोजपुरी में कह रहा हूँ कि लोग कहते रहे कि लयका हवे लयका हवे, अरे भाई ये तो बिहार के माटी का ऐसा लाल हवे जो बुमराह और कमिंस सबके छक्का छुड़ा देला सा। ये कोनो आम लड़का ना हवे, ये तो सीधा गर्दा उड़ावे वाला शेर हवे। जिये हो बिहार के लाला, तू तो पूरा आईपीएल हिला देला हो।
2: जी हाँ, तो वैभव सूर्यवंशी की बातें हो रही है, लेकिन एक और युवा खिलाड़ी की चर्चा होनी चाहिए, और वो युवा खिलाड़ी है साई सुदर्शन, जिन्होंने कल एक और अर्धशतक लगाया, 58 रन की पारी खेली, जिसके बाद वो हिट विकेट हो गए। यानी बल्लेबाज ऐसे जिनको गेंदबाज नहीं आउट कर सके, वो आउट भी तब हुए जब उनका बल्ला उनके हाथ से छूटा और विकेट पर जाकर गिर पड़ा। दूसरी बार साई सुदर्शन के साथ दो मुकाबलों में ये चीज हुई है, लेकिन कमाल की बात ये रही है कि इस सीजन में सबसे ज्यादा 50 से ज्यादा स्कोर बनाने वाले खिलाड़ी साई सुदर्शन है, यानी उनकी भी चर्चा होनी चाहिए है। 9 से ज्यादा 50 प्लस स्कोर्स बनाए हैं साई सुदर्शन ने, और ये भी युवा खिलाड़ी हैं, और गुजरात के डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट विक्रम सोलंकी कहते हैं कि उनकी भूख इतनी ज्यादा है कि कई बार उनको नेट्स में से खींचकर बाहर निकालना पड़ता है और कहना पड़ता है थोड़ा आराम भी कभी-कभी कर लो।
0: But aside from that, there are a lot of talented people, but perhaps some don't have the same work ethic that he does. He's almost somebody that we have to hold back, which is a great quality. He studies the game, he studies his opposition, so he effectively leaves no stone unturned in terms of his preparation, and he's been getting better and better, understanding his game a little bit better. He's still got a lot of things to work on. Part of sort of resting and understanding that he needs to find time to rest as well is one point we've tried to stress to him. But you'd rather young people be that hungry and have an appetite for work like he has.
2: जी हाँ, साई सुदर्शन ने भी इम्प्रेस किया है, काफी सारे खिलाड़ियों ने इम्प्रेस किया है, लेकिन अब चुनौती कठिन होने वाली है, क्योंकि फाइनल मुकाबले में सामने आरसीबी यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु होने वाली है। आपको याद दिला दे कि जब पिछली बार गुजरात का सामना आरसीबी से हुआ था इसी हफ्ते, तो एक तरफा अंदाज में आरसीबी ने उन्हें 92 रन से हराया था, लेकिन फाइनल में परिस्थिति थोड़ी सी अलग होने वाली है, क्योंकि फाइनल अहमदाबाद में यानी कि गुजरात के घर पर होने वाला है, और इसलिए डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट आरसीबी मो बॉबट ये कहते हैं कि हमें कोई भी चीज को हल्के में नहीं लेना है, अहमदाबाद पहुंचेंगे, वहां की परिस्थितियों को आंकेंगे और उसके हिसाब से अपनी रणनीति तैयार करेंगे।
3: Obviously, moving into the final, we'll have to look at that very differently again. You know, try and deal with the conditions in front of us. So we'll get there, have a look at the surface, get a feel for how things might be there, and line up accordingly.
1: Final mukabla kal sham 7:30 baje Ahmedabad mein.
2: Ji haan, to kya hoga usme? Uske baare mein charcha karte rahenge. Lekin 13 din baki hain. ICC Women's विश्व कप 2026 T20 क्रिकेट फॉर्मेट की हम बात कर रहे हैं, उसका आगाज होने में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं वुमेन्स क्रिकेट की। तो भारतीय टीम जिसने ODI क्रिकेट का खिताब पिछले साल हासिल किया था, वो अब बनना चाहती है T20 वर्ल्ड चैंपियन वुमेन्स क्रिकेट में, और उसकी उसकी तरफ

0: टीम मेहनत कर रही है। इस वक्त टीम इंग्लैंड के दौरे पर है जहां पर 3 मैच की एक T20 श्रृंखला खेली जा रही है। पहला जो मैच भारतीय टीम ने खेला था उसमें एक तरफा अंदाज में जीत हासिल की, लेकिन कमाल की बात ये रही, ये जीत तब आई जब हरमनप्रीत कौर टीम का हिस्सा उस दिन पर नहीं थी। स्मृति मानधना पहली गेंद पर आउट हो गई, शेफ अली और ऋचा घोष का भी बल्ला खामोश रहा। इसके बावजूद भारतीय टीम ने एक तरफा जीत हासिल की और मैच में हीरो बनकर उभरी यास्तिका भाटिया, जो 576 दिन बाद भारतीय टीम के लिए खेल रही थी। उनके पांव में लगी ACL की चोट के कारण वो 1.5 साल तक क्रिकेट के मैदान से दूर रही, सर्जरी हुई, लेकिन उसके बाद कमाल का कमबैक करते हुए यास्तिका भाटिया ने दिखाया कि अगर ठान लिया जाए तो नामुमकिन कुछ भी नहीं।
1: Felt really special. I'm very grateful. I have been coming back after a long time and the team has welcomed me very nicely and it has been very good to be back. Like in the injury time it's not easy, but there were people backing me and supporting me. The center of excellence in Bangalore, they took care of me very well, and the physios, trainers, I'm very thankful to them, and even the surgeons who did my surgery. I'm very grateful to all of the people who were behind me at that time. Those who undergo ACL surgery, a whole muscle of that leg goes away. Like we have to build everything from scratch. So after the surgery, like it was pretty tough to just go through the rehab process, and there were days where no progress was visibly seen, but still, like, because of the support and everything, I just kept on going, kept showing up. After months, like, I could see the improvement. Like I said, beautiful support in COE and my family and friends, and like teammates also, like Jemmy and all the teammates were in touch with me. Like team management was in touch, like how are things going on. Like I'm very grateful for all their support. All's well that ends well.
2: 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज शाम 7 बजे ब्रिस्टल में खेला जाएगा।
0: जी हाँ, तो उस पर हमारी नजरें बनी रहेंगी, लेकिन नजरें हमारी बनी हुई है रेसलिंग ट्रायल्स पे भी। क्या कुछ चल रहा है वहां पर, आइए रुख करते हैं। जी हाँ, रेसलिंग यानी कुश्ती की हम बात कर रहे हैं। इस वर्ष आप जानते ही हैं एशियन गेम्स होने वाले हैं, और एशियन गेम्स के अंदर कौन से खिलाड़ी हमारे पहुंचने वाले हैं भारत का प्रतिनिधित्व करने, उसके बारे में ये रेसलिंग ट्रायल्स हो रहे हैं। और सीधा अब आपको जोड़ते हैं हमारे सहयोगी नवीन कुमार शर्मा से, जो कि मौजूद है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में जहां पर ये ट्रायल्स हो रहे हैं, और बातचीत करते हैं नवीन कुमार शर्मा से। नवीन, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में।
3: जी बिल्कुल दर्पण, और आज जो है

0: हेलो ग्राम संसार।
1: नमस्कार जी। शिवराम
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
1: बोल रहा हूँ जी, जिला भिवानी हरियाणा से।
0: आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
1: ऋषि पाल खजाना को सुना देना जी।
0: जरूर सुनवाएंगे।
1: कुछ नाम लियो जी।
0: हाँ बोल दीजिए।
1: छोटे जी मोहित, रक्षित, अंकित, जतिन, दीपांशु, दीक्षांत और नितिन और दो पोती पूजा और आरती। नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी। हेलो ग्राम संसार।
2: नमस्कार सर।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
2: मैं अनवर बिहारी बोल रहा हूँ, बिहार शरीफ जिला नालंदा।
0: अनवर भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
2: ऋषि पाल खजाना की आवाज में एक लोकगीत सुना दीजिए।
0: जरूर सुनवाएंगे।
2: हमारे दोस्त हैं शीश पाल अकेला जी, बबली कुमार प्रजापति जी और राजीव अग्रवाल।
0: चलिए, कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो ग्राम संसार।
3: हेलो ग्राम संसार। नमस्कार जी।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
3: मैं गांव अरैन, जिला श्री गंगानगर, राजस्थान से बोल रहा हूँ जी। बनवारलाल जयपाल।
0: आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
3: ऋषि पाल खजाना को सुना दी।
0: जरूर सुनवाएंगे।
3: और मेरे घर के नाम ले लो जी।
0: हाँ बोल दीजिए।
3: विमला जयपाल, ममता, सोनू, सुशांत, विक्रम और सभी परिवार के सदस्य।
0: हेलो ग्राम संसार।
4: मैं अमरजीत बात कर रहा हूँ आपसे, खंडिया गेट कॉलोनी, जिला रामपुरी, यूपी, उत्तर प्रदेश से।
0: आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
4: ऋषि पाल खजाना का कोई भी लोकगीत।
0: जरूर सुनवाएंगे। कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो ग्राम संसार।
5: हेलो सत्य भाई का नमस्कार।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
5: महेंद्र सिंह बोल रहे, गाँव बराना, जिला बुलंद शहर।
0: महेंद्र भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
5: आज ऋषि पाल खजाना को सुनवा देना और मेरे साथ आरती भारती साथी मैसेज करता देवी।
0: चलिए, कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए सुनते हैं आप सभी भाइयों की पसंद पर।

0: तो बहन भाइयों, ये था आज का फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम संसार। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप भी हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमें प्रत्येक मंगलवार को दोपहर 1 बजे से 1:30 बजे तक फोन कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, फोन करने के लिए नंबर है 0112346731, और दूसरा नंबर है 0112346732। इन दोनों नंबरों पर आप फोन करके अपने पसंद के कलाकार को सुनने के लिए फरमाइश रिकॉर्ड करवा सकते हैं।
0: और बहन भाइयों, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का। इसी के साथ कार्यक्रम ग्राम संसार के प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर और कार्यक्रम के संयोजक शिव नंदन लाल के साथ दीजिए अनुमति। सभी बहन भाइयों को राम
1: राम
0: राम।
1: राम। श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर। अब से कुछ ही देर में यानी ठीक 7 बजे प्रसारित किए जाएंगे समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल की बैठक में डीके शिवकुमार को नया नेता चुना गया है। इस संबंध में विधायकों ने सिद्धारमैया और डॉ जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया। विधायकों ने उन्हें अपना नेता और अगला मुख्यमंत्री चुना है। श्री शिवकुमार को नेता चुने जाने के प्रस्ताव को पारित करने के बाद कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बैठक में पार्टी विधायकों को आधिकारिक रूप से इसकी सूचना दी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान में खेतों, किसानों और गांव को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि सोमवार से शुरू हो रहे अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांव को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि उर्वरकों के अंधाधुंध प्रयोग को न्यूनतम करना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। 30 जून तक चलने वाले अभियान के लिए 1600 से अधिक दल गठित किए गए हैं। इसके अलावा उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग करने वाले जिलों के लिए 500 दल बनाए गए हैं। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन भारत की 5 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इससे पहले म्यांमा के राष्ट्रपति बिहार में गया गए और महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर है और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे चरण के लिए तैयार है। पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में पासिंग आउट परेड में जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि ये अभियान अब भी जारी है। राष्ट्रीय संचालन समिति ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम आईटीआई क्लस्टर के लिए आर्सेलर मित्तल निपॉन स्टील इंडिया नामक एक निजी कंपनी की निवेश योजना एसआईपी को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने वाली पहली एसआईपी है। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश इस योजना के अंतर्गत उद्योग साझेदारी को क्रियान्वित करने वाला पहला राज्य बन गया है। मंत्रालय ने कहा कि ये उपलब्धि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को उद्योग प्रबंधित और परिणाम उन्मुख संस्थानों में बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में स्टार्टअप लोहम का दौरा किया। श्री वैष्णव ने कहा कि लोहम, लिथियम आयन बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों तथा

0: उन्नत सामग्रियों का उत्पादन कर रहा है।
1: एक यंग स्टार्टअप लोहम, इन्होंने कंप्लीट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बाद में वहाँ से प्रोडक्शन का लेवल लेके आए। आज उस प्लांट को देखने का मौका मिला। लिथियम कार्बोनेट बनाने की मशीनें जो कि आगे सीधा बैटरी बनाने में काम में आए, और परमानेंट मैग्नेट बनाने की मशीनें जो कि बहुत ही एक अच्छे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से डेवलप किया।
0: कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। ब्रिस्टल में दूसरे महिला टी20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत के साथ मुकाबले में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में उन्होंने दक्षिण कोरिया के सियो सेंग जाए और किम वॉन हो को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज। श्रोताओं, वक्त शाम के 7:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को
1: राम
0: राम
1: राम।
0: तो नीलम बहन, हम हाजिर हैं अपने किसान बहन भाइयों का मन पसंद कार्यक्रम कृषि जगत लेकर के। नीलम बहन, मोटे अनाज यानी कि इनको आजकल श्री अन्न के नाम से जाना जाता है, सुपर फूड के नाम से जाना जाता है, पोषण की दृष्टि से और स्वास्थ्य की दृष्टि से और साथ ही साथ हमारे जो किसान बहन भाई हैं उनके लिए आर्थिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हमारे किसान बहन भाई जैसे जानते ही हैं कि जो मोटे अनाज में जो अनाज आते हैं, जिसमें कि बाजरा है, मक्का है, ज्वार है, इनके अलावा श्री अन्न में जई है, कोदो है, कुटकी है, रागी है और समा, ये भी मोटे अनाज में ही आते हैं। अब वो बात आती है कि क्या खास बात है मोटे अनाजों में।
1: बिल्कुल शशि भाई, मोटे अनाज गुणों की खान है। इनकी सबसे बड़ी खासियत है इनमें पाया जाने वाला रेशा जो बहुत मात्रा में मौजूद होता है। इस रेशे के घुलनशील और अघुलनशील दोनों ही रूप में हमारे शरीर में पाचन तंत्र के लिए वरदान की तरह काम करते हैं। घुलनशील रेशा पेट में कुदरती तौर पर मौजूद बैक्टीरिया को सहयोग करके पाचन को बेहतर बनाता है, तो वहीं अघुलनशील रेशा पाचन तंत्र से मल को इकट्ठा करने और उसकी आसान निकासी में मदद करता है। ये पानी भी खूब सोखता है और व्यक्ति को मोटा अनाज खाने के बाद प्यास भी खूब लगती है, जो पाचन तंत्र के लिए बहुत स्वास्थ्यवर्धक है।
0: बिल्कुल, इसका मतलब ये हुआ कि महीन अनाज खाने और व्यायाम से दूर रहने के चलते जो कब्जियत और शरीर के फूलने जैसी बिन बुलाई बीमारियां हम झेलते हैं, मोटा अनाज यानी कि श्री अन्न उनका सटीक उपचार है। गेहूं में मिलने वाला प्रोटीन, ग्लूटेन इन अनाजों में नहीं होता, इसीलिए इनसे पाचन तो अच्छा होता ही है। तो किसान बहन भाइयों, ये तो आपने समझा कि जो मोटे अनाज होते हैं, श्री अन्न होते हैं, पोषण की दृष्टि से और गुण की दृष्टि से उनका क्या महत्व है। लेकिन मोटे अनाज उपभोक्ताओं तक तभी पहुंचेंगे जब आप इनकी खेती करेंगे, तो ऐसे में बाजरा है, मक्का है, जो मोटे अनाजों में ही आते हैं और आप इनकी खेती करना चाहते हैं, तो इसी क्रम में आपको एक जानकारी सुनवाते हैं जिसका विषय है मक्का और बाजरा मोटे अनाज की खरीफ की बिजाई। जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर शंकर लाल जाट, मक्का वैज्ञानिक, और इनसे बात

0: रहे हैं शिव नंदन लाल। तो आइए सुनते हैं ये जानकारी।
1: किसान भाइयों नमस्कार। खरीफ की फसलों की जब हम बात करते हैं तो किसान भाई उसकी बिजाई, बीज, खेत की तैयारी बहुत पहले से ही शुरू कर देते हैं, चाहे उसमें गर्मी की जुताई हो, चाहे बीज को बाजार से लेना हो और चाहे उर्वरकों का प्रबंधन। लेकिन हमारे देश में ज़्यादातर खेती वर्षा पर आधारित होती है, लेकिन अब सिंचाई के साधन भी कहीं कहीं उपलब्ध हो गए हैं, जिसके कारण कुछ हमारे किसान भाई बहुत सी फसलें अगेती भी लगाने लगे हैं। और जब हम बात खरीफ फसलों की करते हैं तो उसमें विशेष तौर पर आज हम बाजरा है, मक्का की बात करते हैं, जिसको हमारे बहुत से किसान भाई मोटे अनाज भी कहते हैं और ज़्यादातर किसान इनको खाने में भी प्रयोग करते हैं और दूसरे उत्पादों में भी इनका ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। मक्का और बाजरे की खेती किस तरीके से की जाए जिससे अधिक उत्पादन मिल सके और किसान को लाभकारी खेती सिद्ध हो, इसके बारे में आज हम विस्तार से जानकारी लेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर शंकरलाल जाट, जो कि मक्का विशेषज्ञ हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद सर।
1: तो डॉक्टर साहब, जो हमारे किसान भाई मक्का है, बाजरा है, इसकी खेती करना चाहते हैं तो उनके लिए क्या ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको आप बताना चाहेंगे जिससे कि हमारे किसान भाई उस पे अमल करके मक्के और बाजरे से अच्छा ही नहीं लाभकारी भी उनके लिए सिद्ध हो।
2: जी बिल्कुल, जो मक्का और बाजरा जैसे आपने कहा कि जो वर्षा आधारित मुख्य फसलों में अपने देश में इस मौसम में आती है, और जो इन फसलों का अगर कोई किसान इसका लाभकारी उत्पादन लेना चाहता है तो इसमें दो चीज़ें बड़ी मुख्य निकलने बल के आती है। एक तो बुआई का तरीका और दूसरा है उसके अंदर खरपतवार का पूरा अच्छे से प्रबंधन। तो जो शुरू के इसके दोनों फसलों में जो 30 दिन का खरपतवार का प्रबंधन होता है, उसमें जब बुआई करते ही उसके अंदर जो शाकनाशी हो गया या फिर आपके पास पशु चलित ऐसे इम्प्लीमेंट है या आप उसकी निराई गुड़ाई कर पाते तो अच्छा है। तो शुरू के 30 दिन इनके बड़े महत्वपूर्ण रहते हैं। आप जो इसकी बुआई का तरीका है, हालांकि हम जानते हैं कि सारे किसान बड़े रिसोर्स पुअर हैं, कम रिसोर्सेज हैं, लेकिन जिस क्षेत्र में, जैसे आप अलीगढ़ का क्षेत्र लीजिए, आलू बहुत होता है। अब आलू के अंदर तो वो मेड़ बना के बोते हैं और बाजरे को फ्लैट में बोते हैं, तो ऐसा नहीं करना। आपको मेड़ बनानी है जो आलू के लिए बना रहे हैं और फिर उसके ऊपर आप संकर मक्का, हाइब्रिड संकर जो बाजरा है या साधारण बाजरा है, उसका आप लगा के देखिए, आपको 30-40% आपको उपज का इजाफा मिलेगा। ऐसे ही मैं मक्का में बात करता हूँ, मक्का में भी ये है, आप मेड बना के बुआई करिए। जो पानी ज़्यादा बरसता है तो भी उसकी नाली में पड़ा रह जाता है, पानी अगर कम बरसता है तो भी नाली में भरा रह जाता है, तो वो आगे तक चलता है। और जो छोटा पौधा जब होता है तो कभी कभी क्या होता है कि शुरू शुरू में 15-20 दिन लगातार बारिशें होती है तो पौधा दब जाता है या तो मर जाता है, नहीं मरता तो भी मरे जैसा होता है, तो उसमें फसल में काफ़ी नुकसान होता है। तो ये आपको जो महत्वपूर्ण काम है, एक तो बुआई का तरीका बड़ा अच्छा करें, दूसरा आप खरपतवार प्रबंधन करें, और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, आप अच्छी किस्मों का चयन करें। अच्छी किस्में मतलब जो गुणवत्ता युक्त किस्में हैं और जिनका बीज उपचारित है, तभी आप उसको सबसे अच्छा उपज ले सकते हैं। और क्योंकि ये फसलें दोनों ऐसी हैं जो आप देखिए, बाजरा 70-80 दिन में आ जाता है, 90 दिन में, मैक्सिमम 100 दिन में आ जाता है, ठीक है। ऐसे मक्का भी 80-90 दिन से लेके 110-120 दिन की फसल है। तो कम दिन में आप ये समझिए, प्रतिदिन ये फसलें रोज की अगर दिनों का भाग देना तो 2 सेंटीमीटर बढ़ती है, तो आपको जो शुरू का जो कृषि कार्य है वो काफ़ी इसमें महत्वपूर्ण हो जाता है। और बहुत अच्छे से अगर आप बीज लेंगे, उसको उपचारित करेंगे, अगर जैसे मैं आपको बाजरे की बात करूं कैसे उपचारित करना है, तो आप उसके अंदर जो ट्राइकोडर्मा हार्जिनियम है उसका 4 प्रति किलोग्राम बीज से आप उपचारित करें, या थेराम जो होता है उसका 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से आप उपचारित करें। जो बाजरे का बीज है वो आप 3-4 किलो ही लेना, ज़्यादा बीज नहीं बोना है, क्योंकि इसमें बीज भी छोटा होता है, दूसरे इसमें कल्ले भी फूटते हैं, सभी अपन लोग जानते हैं। तो जब आप 3-4 किलो बीज लेते हैं तो बहुत सफिशियंट होता है 1 हेक्टेयर में अच्छी बाजरे की उपज लेने। ऐसे अगर हम मक्का की बात करें तो मक्का का बीज है वो आप लें, जो सर्टिफाइड किस्में हैं, अच्छी किस्में हैं, उनका बीज लें। अगर आप अपने पास खुद बीज पैदा किया है तो बीज उपचारित करना जरूरी है, नहीं तो जो बाजार से ले रहे हैं अमूमन आपका बीज उपचारित आता है।
1: तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने मक्का का जिक्र किया, जैसे आपने प्रमाणित बीज की बात करी, मक्का में एक शंकर मक्का होती है, संकुल मक्का होती है। तो डॉक्टर साहब, इसमें क्या अंतर है और कौन सा बीज है?

0: देखिए, संकर और संकुल मक्का है। संकुल मक्का के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे संकर मक्का का एक मिश्रण है। एक बड़े लेवल पे देखा जाए, वैसे साइंटिफिक नहीं है, उसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के भुट्टे रहते हैं। जैसे उसके अंदर भुट्टे लगना आज से स्टार्ट होंगे तो 10 दिन तक उसके अंदर भुट्टे आते रहेंगे, ठीक है ना। और हरे भुट्टे भी उतने दिन तक चलते हैं, नर मंजरी भी उतने दिन तक चलती है। तो उसमें आपकी परिपक्वता एक समय नहीं होती है। ये संकुल मक्का हो गई। तो आप इसका बीज अगर एक बार आपने खरीद लिया तो 3 बार तक आप बो सकते हैं उसी बीज को। वो सब संकुल मक्का है। उसमें पूसा कंपोजिट 2, पूसा कंपोजिट 3, 4, ऐसे करके आपका बीजे हैं। उसके बाद में हमारा कंपोजिट वैरायटी भी है। ये होगी संकुल किस्में। और संकर किस्में वो होती है जो दो पेरेंट होते हैं, ठीक है, उनका जो बच्चे होता है उसको संकर कहते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या यूनिफॉर्मिटी रहती है, उसमें केवल दो ही पेरेंट इन्वॉल्व है। संकुल के अंदर बहुत सारे पेरेंट इन्वॉल्व है, तो जब एक जैसी रहती है। जैसे आप कहोगे कि भाई आज जैसे भुट्टा आना स्टार्ट हुआ तो 3 दिन में सबके भुट्टा आ जाएगा। कभी कभी क्या
1: जी
0: होता है, कभी पौधा बाद में जन्मता है, कभी पहले जन्म जाता है, ठीक है, कभी पानी में डूब गया तो वो उसमें लेट भुट्टा आएगा, लेकिन 2-3 दिन में सबके भुट्टा आ जाता है। तो इससे क्या होता है कि आप जितने भी कृषि कार्य कर रहे हैं तो वो एक साथ कर सकते हैं। और जो उत्पादन क्षमता की अगर बात करें तो उत्पादन क्षमता की जो संकर किस्में हैं उनमें ज्यादा रहती है संकुल किस्मों की बजाय।
1: और डॉक्टर साहब, हाइब्रिड मक्का कौन सी होती है?
0: जो संकर अपन कर रहे हैं
1: जी
0: वही एक हाइब्रिड किस्म है। और उसमें यह है कि कभी कभी किसानों के अंदर और सभी के अंदर यह संशय रहता है कि यार मैं हाइब्रिड लूक नहीं लूँ। अगर मैं कुछ किसानों की बात करूँ, फेम 2 करके एक हाइब्रिड था,
1: जी
0: उसको किसान मानते ही नहीं थे ये हाइब्रिड है, क्योंकि उसका दानों का रंग इतना पीला, इतना आकर्षक था कि लोग कहते थे ये तो हमारी संकुल किस्म है, ये तो हमारा अपना बीज है। ऐसे ही आजकल मार्केट में काफी हाइब्रिड आ गए हैं। अगर आप IMS 224 लेंगे, IMS 230 लेंगे, 231 लेंगे, DHM 206 लेंगे, इन सबके बीज वैसे के वैसे ही हैं। आप संकुल और संकर में आप डिफरेंस नहीं कर पाएंगे। तो अभी ये बड़े लेवल पर आया है कि जैसी मक्का हमारी संकुल या अपने पहले खाते थे उस तरह के हाइब्रिड मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं।
1: डॉक्टर साहब, बहुत से किसान भाई मक्का बरसात में लगाते हैं, लेकिन कुछ हमारे किसान भाई मक्का पहले भी लगाते हैं, तो क्या
0: जी
1: एक ही बीज का प्रयोग करते हैं या इसकी अलग अलग किस्में हैं?
0: देखिए, हर समय जब भी आप बीज का चयन करते हैं तो अमूमन वैसे तो ये रहता है कि आप बीज अगर सही है तो आप किसी भी सीजन में लगा सकते हैं। ये आपके फसल चक्र पे डिपेंड करता है। जैसे आज आपने लगाया और आपको खेत चाहिए 100 दिन बाद खाली,
1: जी
0: तो आप वैसी किस्म चयन करें जो 100 दिन बाद आपका खेत खाली कर दें। तो मक्का में ऐसा कुछ नहीं, लेकिन कुछ किस्में, हालांकि ये रहता है कि एक समय विशेष की होती है, जो प्री खरीफ प्लांटिंग करते हैं और खरीफ में प्लांटिंग करें, दोनों किस्में बराबर है। जो अगर मई जून में स्टार्ट करते हैं, अगर हम हिमालय क्षेत्र का लें जो नॉर्थ ईस्ट से मेघालय मिजोरम, वहां पे अभी भी मक्का की बुआई हो चुकी है।
1: जी
0: इधर हमारे जम्मू कश्मीर में भी मक्का की बुआई हो चुकी है। जो ऊपर का क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, हिमाचल प्रदेश, वहां भी हो रखी है। तो वो अप्रैल लास्ट से स्टार्ट कर देते हैं और ये जून लास्ट तक इसकी बुआई चलती है। तो कह रहा हूँ, जैसे जैसे बारिश चलती है वैसे वैसे मक्का की बुआई होती जाती है पूरे देश में।
1: और कई जगह डॉक्टर साहब मैंने देखा कि मक्का खड़ी है इस समय खेतों में।
0: वो जो मक्का अभी खड़ी है खेतों में, वो या तो आपकी बसंत कालीन मक्का है, और या कुछ ऐसे मक्का के खेत है जो पकने वाले हैं, वो आपकी शरद कालीन मक्का है जो नवंबर दिसंबर में बुआई की गई है उसका है। ज्यादातर मक्का वो है बसंत कालीन जो फरवरी में बुआई हुई है। कुछ किसान भाई, हालांकि वो प्रैक्टिस काफी गलत है, जो गेहूं को काटने के बाद मक्का बोते हैं साइलेज के लिए।
1: जी
0: जो साइलेज एक आप देखिए, जैसे
1: हाँ,
0: अपना
1: चारा वो तैयार
0: चारा का
1: करते
0: अचार
1: हैं।
0: होता है वैसा ही। तो आपको मक्का आपके गेहूं के काटने के बाद भी लगाइए, तो उसको आप साइलेज के लिए प्रयोग करते हैं। तो बहुत सारे अलग अलग किस्म की आज की डेट में शिवनंदन जी ये हो गया है, अपने देश में हर दिन मक्का काटी जा रही है, हर दिन मक्का बोई जा रही है।
1: जी
0: तो वैसा हो गया, क्योंकि इसको पूरे साल भर आप कहीं न कहीं इसकी कटाई, कहीं न कहीं इसकी बुआई का कार्य चलता रहता है।
1: डॉक्टर साहब, आपने देखा है कि कोई अमेरिकन मक्का बोलता है, कोई मीठी मक्का बोलता है, और कुछ ऐसे हैं कि हमारे कुछ किसान भाई बेबी कॉर्न के लिए मक्का उगाते हैं, तो ये तीनों की किस्में अलग अलग होती हैं डॉक्टर साहब?
0: देखिए, जो अमेरिकन भुट्टा या स्वीट कॉर्न बोलते हैं वो
1: जी
0: एक चीज़ है, दोनों उसकी किस्म सबसे अलग है। जो मक्का की स्पीसीज होती है जिया मेज करके बोलते हैं, और आगे अगर उसके सेकराटा लगा देते हैं, इसका मतलब मीठी मक्का है। तो उसका दाना बिल्कुल सिकुड़ा हुआ होता है, जब बुआई करते हैं तो बहुत सिकुड़ा हुआ दाना होता है।
1: जी
0: और उसकी जो बीज दर है वो आपकी 7 से 8 किलो 1 हेक्टेयर की होती है। साधारण मक्का 20 किलो 1 हेक्टेयर की होती है। तो मिट्टी मक्का अमेरिकन भुट्टा एक ही है, लेकिन साधारण मक्का से डिफरेंट है। बेबी कॉर्न क्या करते हैं, साधारण मक्का ही है, लेकिन उसमें क्या करते हैं कि

0: जो भुट्टा होता है वो छोटी अवस्था में होता है, 2 से 3 दिन का होता है तभी तोड़ लेते हैं। तो उसकी जो अंदर की जो भुट्टा होता है, गुल्ली जिसको कहते हैं,
1: जी
0: वो गुल्ली बड़ी स्वादिष्ट और पौष्टिक होती है। उसके अंदर कैल्शियम ज्यादा होता है, उसके अंदर आपका राइबोफ्लेविन ज्यादा होता है, तो उसकी वजह से, और सबसे अच्छा है वो हाइजेनिक है, इसमें कभी पेस्टिसाइड का लोड नहीं होता है। अगर लोड कोई छोटा मोटा इसने डाला भी है तो इसके ऊपर 6 से 7 पत्तियां लगी होती है,
1: जी
0: उन पत्तियों के अंदर लिपटा रहता है। तो ये बहुत ही मतलब
1: सुरक्षित
0: हेल्दी, सुरक्षित और ऐसे करके सेफ वाला एक स्नैक बनता जा रहा है। इसको आप ऑर्गेनिकली भी पैदा कर सकते हैं अपने घर में। अगर कोई किसान भाई या कोई चाहे कि मैं पैदा करना चाहता हूँ, वो 4 मक्का के दाने लाएं, उनको लगाएं, और जब भुट्टा आने लगे उस समय उस भुट्टे को 3-4 दिन में तोड़ लें। एक भुट्टा तोड़ेंगे नीचे या ऊपर, फिर भुट्टा आएगा। ऐसे 3 भुट्टे एक ही पौधे पे आते हैं। जैसे हम भिंडी की सब्जी तोड़ते हैं ना,
1: जी
0: बैंगन की तोड़ते हैं या भिंडी को तोड़ते हैं, भिंडी सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। एक भिंडी तोड़ी, उसके ऊपर फिर भिंडी आ जाएगी। ऐसे ही इसके अंदर भुट्टा आता है, वो बेबी कॉर्न।
1: जैसे बाजरे की बात करते हैं, लग सब बाजरा पहले होता था कि वो उसको खाते हैं और खाने हुए उसका आटा खराब होता है। क्या नई किस्में कुछ ऐसी निकाली जा रहे हैं जिसमें पौष्टिक गुण भी हों और उसका आटा भी ज्यादा दिन तक रखा जा सके?
0: देखिए, जो बाजरा है उसके अंदर नई किस्में जितनी भी आ रही है अपने देश में पिछले 5-7 साल में, उनके अंदर हाई आयरन और हाई जिंक है।
1: जी
0: जिंक है जो शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाता है। जैसे हम कोविड के टाइम में देखा तो जिंक की टेबलेट काफी लोगों को दी गई, तो इम्यूनिटी बूस्टर है जिंक की, और जो ग्रोथ को भी प्रमोट करता है। तो आजकल जितनी भी वेरायटी हमारी रिलीज हो रही है, जिसमें अगर आप देखें राजस्थान पर, गुजरात और हरियाणा के लिए KBH 108 है, GHB 558 है, फिर एक बहुत ब्लॉकबस्टर वेरायटी MPMH 17 वेरायटी हाइब्रिड, सबके अंदर हाई आयरन हाई जिंक और बायोफोर्टिफाइड है। जितने भी हाइब्रिड रिलीज हो रहे हैं अभी बायोफोर्टिफाइड है। और अगर कोई चाहे जैसे कंपोजिट या संकुल वेरायटी लेना चाहे, जैसे आप PC 443 हैं, उसके बाद PC 383 ले सकते हैं। अगर कोई खरीफ के अन्य रीजनों में जैसे पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में बुआई करना चाहता है, तो उसमें भी एक MPMS 17 कावेरी सुपर बोस बायो 448 है, MP 78 72 है, और संकुल किस्म में आपकी राज 171 है, PCB 164 है। संकुल किस्म में बाजरे में या तो कुछ थोड़ी बहुत कोई खाने के लिए या पशु के चारे के लिए ज्यादा उगाई जाती है। जो बाजरा है बेसिकली जो आप कह रहे हैं, तो इनके अंदर बायोफोर्टिफाइड किस्मों का विकास हो रहा है। लेकिन जो आटा खराब हो रहा है
1: जी
0: तो उसमें क्या रहता है, रेंसिडिटी रहती है, वो रेंसिडिटी की वजह से ही खराब होता है। तो उसमें थोड़ा सा एक प्रोसेस को ऑप्टिमाइजेशन का कार्य जो भूसा संस्थान कर रहा है, वो उससे नई नई रेसिपी बना रहा है, उसके अंदर आपको रेंसिडिटी कम करने के लिए उसे प्रयास कर रहा है। लेकिन अभी रेंसिडिटी कम हुई है, उसको जैसे हम 5 दिन रख पा रहे थे तो अभी 20 दिन रख पा रहे हैं, तो वो प्रयास भी हो रहे हैं, लेकिन वो प्रोसेसिंग के ऊपर है। ऐसी कोई किस्म नहीं है जिसके अंदर बाजरे का आटा खराब नहीं होता। बाजरे का आटा खराब सब में होता है, अगर लेकिन वो प्रोसेसिंग आप ठीक कर देते हो तो आपका ठीक रह सकता।
1: डॉक्टर साहब, क्या कुछ ऐसी भी किस्में निकाली गई हैं, क्योंकि जलवायु परिवर्तन होता रहता है,
0: जी
1: कभी एकदम बारिश हो जाती है और कभी ज़्यादा गर्मी पड़ जाती है, तो इस जलवायु को भी सहन कर सके किस्में निकाली गई कुछ?
0: देखिए, अभी क्या होता है, जब जलवायु परिवर्तन की हम बात करें तो 1 साल में नहीं होता है, 2 साल में नहीं होता है, 5 साल में धीरे धीरे धीरे धीरे छोटा छोटा होता है। तो जब भी हम कोई किस्म को ब्रीड करते हैं तो उस किस्म को जितने भी उसकी प्रोजीनी है, जैसे 1000 प्रोजीनी लगाई हमने,
1: जी
0: उनके बच्चे लगाए, 1000 में से अगर 4 बच्चे ठीक कर रहे हैं, दूसरे साल भी ठीक कर रहे हैं, तीसरे साल भी ठीक कर रहे हैं, तब जाके उनको हम लोग कहते हैं कि ये किस्म अच्छी है और किसानों को दी जाएगी। तो वो जलवायु प्रतिरोधन क्षमता हम लोग पहले से डेवलप करते हैं। दोनों जो हमारी फसलें हैं उनके अंदर ये इनग्रेंड है, अगर नहीं रहेगा तो आप देखिए पिछले काफी सालों से हमारा मक्का और बाजरे का उत्पादन काफी बड़ा है, स्पेशली मक्का का तो बड़ा है लेकिन बाजरे का भी काफी बड़ा है। तो ये इसलिए बढ़ पा रहा है कि हम लोगों ने एक प्राकृतिक वेरिएशन है उसमें उनके बच्चों में से वो निकाल के ला रहे हैं, और वैसी किस्म को हम लेके आ रहे हैं जो आपकी जलवायु के प्रतिरोधन या सहिष्णुता होती है। दूसरा यह है कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ बारिश बहुत कम होती है, तो
1: जी
0: वहाँ एक छोटी ड्यूरेशन की वेरायटी HHB 67, 67 मतलब वो 70 दिन की फसल है,
1: जी
0: और सबसे ब्लॉकबस्टर वेरायटी रही ये, हमारे हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय से डेवलप हुई, अभी HHB 67+ भी आ गई है उसकी। तो ये चीज उस क्षेत्र के लिए, क्योंकि अगर मार्केट में आपको रहना है तो उस हिसाब से चीज आनी चाहिए। और ये दोनों फसलें ऐसी जगह हैं, हालांकि आपने ओपनिंग में कहा था कि हमारे यहाँ पानी का बढ़ता जा रहा है, इरिगेटेड एरिया बढ़ता जा रहा है, पर 20% से ज्यादा इरिगेटेड एरिया नहीं है इस मौसम में इन फसलों में।
1: जी
0: ये उसी जगह होती है, बाजरा वहां होगा जब 500 mm से कम रेनफॉल होगी, मक्का वहां होगा जब 500 से 700 mm रेनफॉल होगी, दोनों का एरिया अलग है।
1: तो डॉक्टर साहब,

0: हम तो ये चाहेंगे कि आप किसान भाइयों को क्या सलाह देना चाहेंगे जो धान की फसल लगाते हैं उसको छोड़ के मक्का और बाजरा की लगाएं जिससे पानी की भी बचत हो।
1: देखिए, हम किसानों को यही सलाह देंगे कि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, आपके पास एक संभावना है। अगर आप धीरे धीरे इनको करना स्टार्ट करेंगे, मक्का और बाजरा को, जहाँ पे मक्का हो सकता है वहाँ मक्का करिए, ज़्यादा रेतीली ज़मीन है वहाँ पे आप बाजरा करिए, और वहाँ पे जैसे जैसे आप पानी को बचाएंगे, आप देखिए 3 से लेकर 5 इरीगेशन लगती है मक्का और बाजरा में, और आप चावल में लेंगे तो आपकी 25 से कम कहीं नहीं लगती। तो आप देखिए, जो आप पानी नीचे से डाल के ऊपर लेके आ रहे हो, और उसके अंदर आप चावल के अंदर भी काफ़ी पेस्टिसाइड यूज करते हैं, वो पेस्टिसाइड आपके नीचे जा रहे हैं। किसान भाई ये नहीं देख रहा है कि मेरे पास जो पैदा हो रहा है, अब नीचे का जो पानी है, ग्राउंड वाटर पोल्यूशन जो हो रहा है पेस्टिसाइड से, उसको जरूर आप एक अंदाज में देख करके देखें। और इन फसलों की तरफ आप जाएंगे तो धीरे धीरे मार्केट डेवलप होगा। मार्केट क्योंकि इन दोनों फसलों का काफ़ी है, ये जैसे बायो फोर्टिफाइड हो गया, मिलेट का भी अपना है पूरा जोर है तो उससे है, और मक्का एक औद्योगिक फसल है, 95% से ज़्यादा मक्का उद्योगों में प्रयोग होती है, बायोइथेनॉल के लिए भी प्रयोग बढ़ रहा है। तो अगर इससे छोड़ के निश्चित रूप से वहाँ जाते हैं तो आपका सेहत, फिर मिट्टी का सेहत, ठीक है, और तीसरा पर्यावरण, तीनों की सुरक्षा होगी, और चौथा जो मैंने आपको बताया, जो आपकी मिट्टी के अंदर जाके पानी प्रदूषित हो रहा है जिसकी वजह से तरह तरह की बीमारी फैल रही है, उससे भी हमें निजात मिल सकता है।
0: जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने काफ़ी विस्तार से बताया किस तरीके से मक्का और बाजरे की खेती कर सकते हैं अगर इसमें भी तकनीक का किसान भाई प्रयोग करें। जैसे सिंचाई के नए नए साधन आए हैं, उसमें बूंद बूंद सिंचाई है, आपकी फवारी सिंचाई है, उसके द्वारा भी अगर करते हैं उसमें भी पानी की बचत होगी और आपका उत्पादन भी अच्छा मिलेगा और लागत में भी कमी आएगी।
1: जी
0: डॉक्टर शंकर लाल जाट जी, आप स्टूडियो में आए और बहुत अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: किसान बहन भाइयों, आप सुन रहे थे बातचीत, विषय था मक्का और बाजरा, मोटे अनाज की खरीफ की बिजाई। जानकारी दे रहे थे डॉक्टर शंकर लाल जाट, और इनसे बात कर रहे थे शिव नंदन लाल।
3: नीलम बहन, आज का जो समय है वो इंटरनेट डिजिटल मीडिया का समय है, और कोई भी व्यक्ति इंटरनेट का उपयोग करते हुए घर बैठे ही कोई भी जानकारी बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकता है अगर वो अपने फोन का, इंटरनेट का सदुपयोग करता है तो। और देखिए, आजकल तो हर क्षेत्र में तरह तरह के ऐप आ चुके हैं, हर विभाग के अपने अपने ऐप हैं और उनका बखूबी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो हमारा जो कृषि क्षेत्र है वो कैसे पीछे छूट सकता है। तो हमारे जो किसान बहन भाइयों को घर बैठे ही जरूरी जानकारियां हैं वो मिल जाएं, इसके लिए किसान सुविधा ऐप भी आ चुका है और हमारे जो किसान बहन भाई हैं इसका उपयोग भी कर रहे हैं। किसान सुविधा ऐप कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा विकसित एक एकीकृत मोबाइल एप्लीकेशन है जो आप किसान भाइयों को मौसम, मंडी के भाव, खाद की उपलब्धता, सरकारी योजनाओं की जानकारी, कृषि सलाह, इस तरह की 22 से अधिक आवश्यक सेवाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर प्रदान करता है।
2: बिल्कुल शशि भाई, किसान सुविधा ऐप की विशेषताओं की अगर बात करें तो ये ऐप मौसम की जानकारी, वर्तमान तापमान, बारिश और नमी के साथ साथ अगले 5 दिनों का मौसम का पूर्वानुमान बताता है, और इस ऐप के माध्यम से देश भर की मंडियों के भाव और फसलों की दैनिक और नवीनतम मूल्य की जानकारी मिलती है, और इस ऐप के माध्यम से स्थानीय डीलरों के पास खाद की उपलब्धता और कीमतों की जानकारी आसानी से मिल जाती है, और साथ ही इस ऐप के माध्यम से सरकार द्वारा चलाई गई कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी किसान भाइयों को आसानी से मिल जाती है, और इसके अलावा किसानों के सवालों का समाधान और किसान कॉल सेंटर से सीधे जुड़ने की सुविधा भी उपलब्ध है।
3: बिल्कुल, तो अब बात आती है कि हमारे वो किसान बहन भाई जो अभी तक इस किसान सुविधा ऐप का इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं और अब वो करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उनको इस ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। तो आपके पास जो स्मार्टफोन है तो उस पर आप आसानी से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, आपको अपने मोबाइल फोन के गूगल प्ले स्टोर में जाकर के या एप्पल ऐप स्टोर में जाकर के आपको सर्च करना है किसान सुविधा, और जब सर्च करेंगे आप तो कृषि मंत्रालय के लोगो वाले ऐप को आप पहचान करके इंस्टॉल कर लें, और फिर जितनी भी बातें हमने आपको बताई हैं उन सब का फायदा आप किसान सुविधा ऐप के जरिए ले सकते हैं। तो नीलम बहन, ये तो जानकारी रही किसान सुविधा ऐप की, और देखिए अब समय हो चला है कि अपने किसान बहन भाइयों से अनुमति ली जाए, लेकिन अनुमति लेने से पहले अपने किसान बहन भाइयों से कहना चाहेंगे कि आपको आज का ग्राम संसार

0: और कृषि जगत कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में कोई भी प्रतिक्रिया आप देना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है, कृषि एवं गृह एकांश द्वारा केंद्र निदेशक, कमरा नंबर 610, नव प्रसारण भवन, आकाशवाणी, नई दिल्ली। और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है feedback@gmail.com। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि जगत के प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर और कार्यक्रम के संयोजक शिव नंदन लाल के साथ दीजिए अनुमति। सभी किसान बहन भाइयों को
1: राम
0: राम
1: राम।
0: राम।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कृषि जगत का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी दिल्ली का हिंदी प्रेस चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्स। समय स्टूडियो की घड़ी के अनुसार 7:30 हुए हैं।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की, कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
2: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
3: जी,
2: ये KYC अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
3: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर KYC अपडेट करवाना चाहिए।
2: पर ये होगा कैसे?
3: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या ATM या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी BC के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
2: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
3: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर KYC अपडेट करवा सकते हैं।
2: बस
3: बस
2: समझ गया।
3: अपना KYC अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
4: RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: ये आकाशवाणी दिल्ली का हिंदी प्रेस चैनल है। श्रोताओं, वक्त 7:30 हो चुके हैं और गजलों के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आशा भोसले की आवाज़ से।

श्रोताओ, आप सुन रहे हैं गज़लों का कार्यक्रम। अभी आपने आशा भोसले की आवाज़ में इस गज़ल को सुना। वो कौन है उसे सूरज कहूँ कि रंग कहूँ, करूँगा जिक्र तो खुशबू जुबा से आएगी। जी हाँ, एक ऐसी खूबसूरत आवाज़ के साथ अगली गज़ल है जगजीत सिंह से।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं गज़लों के कार्यक्रम में मुझे यानी चेतना को, और अभी आपने जगजीत सिंह की आवाज़ में इस गज़ल को सुना। समय स्टूडियो की घड़ी के अनुसार शाम की 7:42 हो चुके हैं और गज़लों के सफ़र में सिर्फ इतनी ही गज़लें, लेकिन कुछ अनमोल शब्दों के साथ जगजीत सिंह की आवाज़ के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गजलों का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्स। समय शाम के 7:45 होने को है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, दिल्लीवासियों को 1,000 करोड़ रुपए से अधिक की नई जल और सीवेज परियोजनाओं से यमुना स्वच्छता अभियान को गति मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा, सरकार का लक्ष्य राजधानी को देश और दुनिया के सबसे बेहतरीन शहरों में से एक बनाना। दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने उत्तर पूर्वी दिल्ली के सभापुर क्षेत्र में प्रस्तावित विकास कार्यों का निरीक्षण किया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तान आईएसआई और मुंबई अंडरवर्ल्ड नेटवर्क के 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया और दिल्ली में जल आपूर्ति की बढ़ती मांग को देखते हुए हरियाणा सरकार ने न्यूनतम 1,000 क्यूसेक जल आपूर्ति बनाए रखने का आश्वासन दिया। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि 1,000 करोड़ रुपए से अधिक की नई जल और सीवेज परियोजनाओं से यमुना स्वच्छता अभियान को नई गति मिलेगी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार पहले दिन से ही यमुना को स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए मिशन मोड में कार्य कर रही है। उन्होंने नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लान, आधुनिक सीवेज व्यवस्था और वर्षा जल संचयन जैसे प्रयास स्वच्छ, प्रदूषण मुक्त और अविरल यमुना के संकल्प को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य राजधानी को देश और दुनिया के सबसे बेहतरीन शहरों में से एक बनाना है।
4: हमारी ये राजधानी देश में और विश्व में सबसे अव्वल शहर बने, ऐसा शहर बने जहां रहने वालों का दिल खुश हो, जहां रहने वालों को ये लगे कि हाँ, हम ऐसे शहर में रहते हैं जहाँ सब एक दूसरे से जुड़े हैं, सबके दुख में अपना दुख देखते हैं और दूसरे की खुशी में अपनी खुशी देखते हैं। और ये सुख तब बढ़ेगा और ये दुख तब कम होगा जब हम इसे शेयर करना शुरू करें।
3: दिल्ली में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्रीमती रेखा गुप्ता ने कहा कि डिजिटल पेमेंट्स के मामले में भारत पहले स्थान पर है और इस क्षेत्र में पूरी दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से देश प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर रहा है वो एक असाधारण उपलब्धि है।
4: हर आदमी पेटीएम जैसी सुविधाओं का उपयोग कर रहा होगा। भारत नंबर 1 है डिजिटल पेमेंट्स में, सबसे आगे है। तो ये टेक्निक का इस्तेमाल जो हम लोग कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी चीज, इन सब में आप सबका रोल प्ले है।
3: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आगामी कांवड़ यात्रा को अधिक सुगम, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से उच्च स्तरीय कांवड़ समिति का पुनर्गठन किया है। दिल्ली सरकार के संस्कृति और कानून मंत्री कपिल मिश्रा को इस समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि विधायक अजय महावर, अनिल शर्मा, कर्नैल सिंह, संजय गोयल और उमंग बजाज को समिति का सदस्य बनाया गया है।
5: नवगठित समिति के अध्यक्ष कपिल मिश्रा के नेतृत्व में जल्द ही जिला अधिकारियों, दिल्ली पुलिस, लोक निर्माण विभाग, स्वास्थ्य विभाग तथा अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में यात्रा मार्गों के प्रबंधन, शिविरों में वाटरप्रूफ टेंटों की व्यवस्था, चिकित्सा सुविधाओं, निर्बाध बिजली पानी आपूर्ति तथा सुरक्षा उपायों की समीक्षा की जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि कांवड़ यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि देश की सांस्कृतिक विरासत, सामाजिक समरसता और जन आस्था का महत्वपूर्ण प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार कांवड़ यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। प्रादेशिक समाचार के लिए अक्षित वैद्यान।
3: कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉयस चैटबोट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा भाषिणी के सहयोग से विकसित ये चैटबोट नागरिकों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। एक रिपोर्ट।
6: संवाददाताओं से बातचीत में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने बताया कि समाधान दीदी वर्तमान में सभी 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं का समर्थन करती है और अतिरिक्त क्षेत्रीय तथा स्थानीय भाषाओं को शामिल करने के प्रयास जारी हैं। डॉक्टर सिंह ने बताया कि प्रतिवर्ष दर्ज की जाने वाली लोक शिकायतों की संख्या 2014 से पहले लगभग 2 लाख थी, जो आज बढ़कर लगभग 25 से 30 लाख हो गई है। उन्होंने बताया कि मालदीव, मॉरिशस और अफ्रीका के कई देशों ने भारत के शिकायत निवारण मॉडल का अध्ययन करने में रुचि दिखाई है। समाधान दीदी वॉयस आधारित और बहुभाषी शिकायत पंजीकरण प्रणाली है। ये नागरिकों को उचित विभाग या प्राधिकरण से शीघ्र और कुशलतापूर्वक जुड़ने में मदद करती है। नागरिक कई भारतीय भाषाओं में आवाज या संदेश के माध्यम से शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार के लिए विशाल शर्मा।
3: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तान ISI और मुंबई अंडरवर्ल्ड नेटवर्क के लिए काम कर रहे 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के विशेष पुलिस आयुक्त अनिल शुक्ला ने कहा कि इन आरोपियों को दिल्ली में महत्वपूर्ण ठिकानों और सुरक्षा कर्मियों पर हमला करने का काम सौंपा गया था।
7: इसमें मुंबई से 2 और उससे पहले 2 और हम लोगों ने पुणे से और झारखंड से लड़कों को उठाया। उनकी पूछताछ से पता चला कि ये मुंबई में और दिल्ली में अटैक के लिए कुछ मुंबई अंडरवर्ल्ड और गैंगस्टर्स का ग्रुप इनको हैंडलर बनके सामान जमा करा रहे हैं और टारगेट्स की रेकी करने के लिए उकसा रहे हैं।
3: दिल्ली यातायात पुलिस के सड़क सुरक्षा जागरूकता ग्रीष्मकालीन शिविर 2026 के दूसरे चरण का आज सफलतापूर्वक समापन हो गया। ये शिविर बाबा खड़क सिंह मार्ग, राष्ट्रीय बाल भवन, पंजाबी बाग और रोशनारा बाग स्थित 4 ट्रैफिक प्रशिक्षण पार्कों में आयोजित किया गया। यातायात पुलिस ने बताया कि इस अभियान के अंतर्गत आयोजित शिविर के दूसरे चरण में लगभग 750 विद्यार्थियों ने भाग लिया। पुलिस ने कहा कि शिविर के दौरान सड़क सुरक्षा प्रश्नोत्तरी, ट्रैफिक ड्रिल तथा चित्रकला प्रतियोगिता जैसी विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार प्रदान किए गए। दिल्ली में भीषण गर्मी के कारण जल आपूर्ति की बढ़ती मांग के चलते हरियाणा सरकार ने मुनक नहर के माध्यम से राजधानी को न्यूनतम 1000 क्यूसेक जल आपूर्ति बनाए रखने का आश्वासन दिया है। ये जानकारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने साझा की। श्रीमती रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार राजधानी में जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिल्ली में जल आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि पिछले एक सप्ताह में जल आपूर्ति को लेकर 11,000 से अधिक शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 8,500 से अधिक का समाधान किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान स्थिति से निपटने के लिए दिल्ली जल बोर्ड के 980 से अधिक टैंकर प्रतिदिन 6,000 से अधिक फेरे लगा रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को तत्काल राहत उपायों और

0: दीर्घकालीन जल प्रबंधन योजनाओं पर कार्य करने के निर्देश दिए। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर स्थित लोहम का दौरा किया। ये महत्वपूर्ण खनिजों और उन्नत सामग्रियों का उत्पादन करती है। संवाददाताओं से बातचीत में श्री वैष्णव ने कहा कि लिथियम बैटरी और स्थायी चुंबक कई आधुनिक तकनीकों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की परिकल्पना है कि इनका निर्माण भारत में ही किया जाए और इनकी तकनीक का विकास स्वदेशी स्तर पर हो। उन्होंने कहा कि इसी परिकल्पना के अनुरूप लोहम नामक एक युवा स्टार्टअप ने सफलतापूर्वक जटिल तकनीक विकसित की है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने आज उत्तर पूर्वी दिल्ली के सभापुर क्षेत्र में प्रस्तावित विकास कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र और दिल्ली सरकार की विकास योजनाओं को जनता का व्यापक समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि करावल नगर विधानसभा क्षेत्र में अब तक 300 करोड़ रूपये के विकास कार्य स्वीकृत किए जा चुके हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी विकास परियोजनाएं निर्धारित समय सीमा के भीतर और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरी हो। निरीक्षण के दौरान दिल्ली जल बोर्ड, सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण विभाग और एमसीडी के अधिकारी भी उपस्थित रहे। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सैन्य सेवाओं से विदाई ली। उन्होंने कहा कि उनके लिए अत्यंत सम्मान की बात है।
1: मेरे लिए ये बहुत सम्मान की बात है कि मुझे तीनों सेनाओं से गार्ड ऑफ ऑनर लेने का अवसर मिला। इसके लिए मैं तीनों सेनाओं और सेना मुख्यालय को धन्यवाद देता हूँ। गार्ड ऑफ ऑनर के समापन के साथ मैं वर्दी में अपने साथियों से विदाई लेता हूँ। मैंने वर्दी में अंतिम बार समर स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किया। ये उन वीर सैनिकों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया।
0: लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि जनरल चौहान का स्थान लेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में खेत बचाओ अभियान की तैयारियों के संबंध में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये टिप्पणी की। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है। वर्ष 1826 में आज के दिन ही हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड प्रकाशित हुआ था। एक रिपोर्ट।
1: उदंत मार्तंड समाचार पत्र के संपादक और संस्थापक पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे। उन्होंने हिंदुस्तानियों के हित के हेत जैसे अमर संकल्प और भारतीय पत्रकारिता की नींव रखने वाले ध्येय वाक्य के साथ उदंत मार्तंड समाचार पत्र की कोलकाता के बड़ा बाजार इलाके से नींव रखी। उदंत मार्तंड से शुरू हुआ ये सफर आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे बड़ा औजार बना। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी समाचार पत्रों और पत्रिकाओं ने जनमानस के भीतर स्वाधीनता का भाव जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समाचार पत्रों से शुरू हुआ ये सफर आज रेडियो, टेलीविजन, डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया तक पहुंच चुका है। हिंदी पत्रकारिता दिवस अवसर है उन पत्रकारों और संपादकों को याद करने का जिन्होंने अपने लेखन और साहस से समाज को नई दिशा दी।
0: इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और भोपाल के माधवराव सप्रे स्मृति समाचार पत्र संग्रहालय के संयुक्त तत्वाधान में हिंदी पत्रकारिता द्विशताब्दी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। राजधानी में आज शाम बारिश होने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 37.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 24.6 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार कल राजधानी में बादल छाए रहने के साथ बारिश और बिजली कड़कने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और

0: और व्यापारिक नेताओं का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, दिल्ली वासियों को 1000 करोड़ रुपए से अधिक की नई जल और सीवेज परियोजनाओं से यमुना स्वच्छता अभियान को गति मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा, सरकार का लक्ष्य राजधानी को देश और दुनिया के सबसे बेहतरीन शहरों में से एक बनाना है। दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने उत्तर पूर्वी दिल्ली के सभापुर क्षेत्र में प्रस्तावित विकास कार्यों का निरीक्षण किया और दिल्ली में जल आपूर्ति की बढ़ती मांग को देखते हुए हरियाणा सरकार ने न्यूनतम 1000 क्यूसेक जल आपूर्ति बनाए रखने का आश्वासन दिया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: सामईन की खिदमत में शाहनवाज हाशमी का पुरखलूस आदाब। सामईन कराम, अदब व सकाफत किसी भी तहजीब का एक अहम हिस्सा होते हैं। अदब, जिसे साहित्य लिटरेचर के नाम से हम जानते हैं, उसे दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक है नसर, जिसमें किस्सा, कहानियां और तरह तरह के अफसाने बुने जाते हैं। दूसरी तरफ है नज्म। उस जुमरे में हम शेरी असनाफ को डालते हैं। इस सिन्फ में नज्म, गज़ल, कसीदा, रुबाई, मसनवी और भी कई तरह के शेरी पैराहन हमें देखने को मिलता है। मुशायरा हर ज़माने में मकबूल व मारूफ रहा है। इस बज़्म में हम आपको उन शायरों के कलाम सुनवाते हैं जो शेरी दुनिया में अपना मकाम रखते हैं। शायर की ये खूबी होती है कि वो दरिया को कूजे में बंद कर दे और कूजे को दरिया बना दे। कई बार ऐसा भी होता है कि जिन बातों को या जिन एहसासात को हम लफ्ज़ों में बयान नहीं कर पाते या हमारे लिए लफ्ज़ कम पड़ जाते हैं, ऐसे एहसासात को बयान करने के लिए हम शेर का सहारा लेते हैं और ये अशआर हमारे एहसासात की बेहतर तर्जुमानी करती है। यही वजह है और यही शायरी का कमाल है। तो आइए सामईन, आपको सुनवाते हैं बज़्म मुशायरा। आज इस मुशायरे को जीनत बख्श रहे हैं जनाब परवेज शहरयार, आसिफ अमान सैफी, अब्दुल नसीब खान और निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं शकील जमाली। तो लीजिए, समात कीजिए मुशायरा।
2: आज की इस नशस्त में जो शोराए किराम हिस्सा ले रहे हैं, उनमें मोहतरम जनाब नसीब खान साहेब, जनाब परवेज शहरयार साहेब, आसिफ अमान सैफी और मैं शकील जमाली। तो सबसे पहले एक ताज़ा कार और ख़ूबसूरत लब लहजे के शायर आसिफ अमान के रूबरू चलता हूँ और उनसे दरख्वास्त करता हूँ उनकी शायरी के लिए। आसिफ अमान सैफी।
3: बेहद शुक्रिया। एक ताज़ा गज़ल के चंद अशआर मुलाहिज़ा फरमाएं।
2: मतलब,
3: पलकों पे रखे ख्वाब से कुछ हो नहीं रहा, पलकों पे रखे ख्वाब से कुछ हो नहीं रहा, होठों पे इनकलाब से कुछ हो नहीं
4: बहुत
3: रहा।
4: क्या बात है,
2: बहुत अच्छा।
3: कुछ और ही जहां हो ये मेरे हिसाब से।
2: क्या बात,
4: कुछ और ही
3: जहां हो ये मेरे हिसाब से, लेकिन मेरे हिसाब से कुछ हो नहीं रहा।
2: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
3: खुद से सवाल कीजिए अपने जवाब पर।
4: खुद से सवाल कीजिए अपने जवाब पर।
3: खुद से सवाल कीजिए अपने जवाब पर, जब आपके जवाब से कुछ हो नहीं रहा।
4: क्या बात,
2: बहुत बहुत।
3: खुद से सवाल कीजिए अपने जवाब पर, जब आपके जवाब से कुछ हो नहीं रहा। अब फिर से माहताब की दरकार है उन्हें।
2: अब फिर से माहताब की दरकार है उन्हें।
3: अब उनका आफताब से कुछ हो नहीं
2: कुछ
3: रहा।
2: नहीं रहा। वा, वा, क्या बात वा, है।
3: क्या कीजिए कि खत्म हो अंदर की उजलतें।
4: क्या
3: कीजिए कि खत्म हो अंदर की उजलतें। बाहर की आबो ताब से कुछ हो नहीं रहा।
2: बहुत अच्छा।
3: कुछ सोच कर जनाब नहीं कर रहे हैं कुछ।
2: क्या बात है, क्या बात है।
3: कुछ सोच कर जनाब नहीं कर रहे हैं कुछ। ऐसा नहीं जनाब से।

0: कुछ हो नहीं,
1: क्या बात है,
2: क्या बात है,
0: बहुत सोच कर जनाब नहीं कर रहे हैं कुछ,
3: ऐसा नहीं जनाब से कुछ,
0: ऐसा नहीं जनाब से कुछ हो नहीं रहा, हम पर मजीद कहर कोई पड़ना चाहिए, हम पर मजीद कहर कोई पड़ना चाहिए, बदलाव इस अजाब से कुछ हो नहीं रहा,
1: क्या बात, अच्छा,
3: क्या बात, वाह वाह,
0: बदलाव इस अजाब से कुछ हो
1: कुछ
0: नहीं,
1: हो
0: रहा।,
1: नहीं रहा।
0: एक गजल के चंद अशआर और देखेगा, मतलब यूं है कि सारे मजहब थे एक आंगन था,
3: क्या बात है,
1: सारे मजहब थे,
0: सारे मजहब थे एक आंगन था, काबिले फख्र अपना बचपन था,
3: बहुत अच्छा,
1: बहुत अच्छा,
0: सारे मजहब थे एक आंगन था, काबिले फख्र अपना बचपन था, ये खला दोस्त भर नहीं सकते,
3: क्या बात,
1: ये खला दोस्त भर नहीं सकते,
0: ये खला दोस्त भर नहीं सकते, वो खुले दिल से मेरा दुश्मन था,
1: क्या बात,
3: बहुत अच्छा,
0: ये खला दोस्त भर नहीं सकते,
3: बहुत अच्छा,
0: वो खुले दिल से मेरा दुश्मन था, अब उसी बात पर पशेमा है, अब उसी बात पर पशेमा है,
3: क्या बात है,
0: मुझसे जिस बात पर वो बदजन था,
3: क्या बात,
1: क्या बात,
3: क्या बात,
1: बहुत खूब,
0: अब उसी बात पर पशेमा है, मुझसे जिस बात पर वो बदजन था, तेरे दर से ही जी नहीं भरता,
3: तेरे दर से ही जी नहीं भरता,
0: तेरे दर से ही जी नहीं भरता, शहर देखें तेरा बड़ा मन था,
3: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा,
1: अच्छा शेर,
0: तेरे दर से हिजी नहीं भरता, शहर देखें तेरा बड़ा मन था, और शेर देखें शेर आखिर के, एक दूजे के दिल में थे आजाद,
1: मतलब
0: एक दूजे के दिल में थे आजाद, कैसा मजबूत वो अपना बंधन था,
3: क्या बात, क्या बात,
1: वाह,
0: शुक्रिया। एक गजल और
3: जी फरमाइए,
0: यही तावीज का बस फायदा है,
1: यही तावीज का बस फायदा है,
0: यही तावीज का बस फायदा है, तुम्हारे हाथ का बांधा हुआ है,
3: क्या
1: बात, बहुत खूबसूरत,
0: तुम्हारे हाथ का बांधा हुआ बस फायदा है,
3: तुम्हारे हाथ का,
0: तुम्हारे हाथ का बांधा हुआ है, हमारे बीच एक रिश्ता बना है,
1: हमारे बीच एक रिश्ता बना है,
0: हमारे बीच एक रिश्ता बना है, तुम्हें भी उसने ही धोखा दिया है,
3: बहुत अच्छा, बहुत,
0: हमारे बीच एक रिश्ता बना है, तुम्हें भी उसने ही धोखा दिया है, वो रूठा दोस्त वापस आ गया है, वो रूठा दोस्त वापस आ गया है, मगर बेसाख्तापन जा चुका है,
3: बहुत अच्छा,
0: और शेर बतौर खास के, तेरी तस्वीर उतारी जा चुकी है,
3: तेरी तस्वीर उतारी जा चुकी है,
0: तेरी तस्वीर उतारी जा चुकी है, मगर चेहरा वहीं पर रह गया है,
3: क्या बात, क्या बात,
0: तेरी तस्वीर उतारी जा चुकी है, मगर चेहरा वहीं पर रह गया है, ये रातें नींद से परहेज की हैं,
1: ये रातें नींद से
0: परहेज की हैं, इन्हें सोकर गुजारा जा रहा है,
3: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा,
1: बहुत खूब,
0: और शेर देखें कि जो होते हैं मेरी बातों के दौरान, जो होते हैं मेरी बातों के दौरान, वो उन वक्फों की भाषा जानता,
3: बहुत अच्छा,
1: वाह,
3: बहुत अच्छा,
1: क्या क्या नहीं हुआ,
0: जो होते हैं मेरी बातों के दौरान, वो उन वक्फों की भाषा जानता है, चुराती हैं नजर मेरी ही आंखें, चुराती हैं नजर मेरी ही आंखें, इन्हें एक ख्वाब अक्सर देखता है,
3: बहुत,
1: वाह वाह,
0: चुराती हैं नजर मेरी ही आंखें, इन्हें एक ख्वाब अक्सर देखता है, तेरी तस्वीर उतारी जा चुकी है, मगर चेहरा वहीं पर रह गया है,
3: बहुत अच्छा। दोस्तों, ये थे आसिफ अमान सैफी साहब, जिनके कलाम से हम लोग महसूस हो रहे थे। अब हमारे दरमियान एक ऐसी शख्सियत है कि जो न सिर्फ शेरी सतह पे, बल्कि अगर उनका नसरी काम देखा जाए तो ये तय करना मुश्किल हो जाता है कि ये शख्सियत शेरी सतह पे या नसरी सतह पे कई असनाफ की हामिल

0: जिस्म जां के उतरन भी तार हाय सीमो जर होंगे शहद के छत्ते, होंगे शहद के छत्ते रात ख्वाब में देखा।
1: क्या बात है, क्या बात है,
2: बहुत अच्छी मंजर निगारी का तो कमाल है।
0: दूसरी नज्म का उन्वान है एक सियाह मर्ज होगा। रात ख्वाब में देखा नीम जान करगस सिक ना उम्मीद कुछ तरसा, तौलता है पर अपने पास गोरकन बूढ़ा नीम जान करगस से जेरे लब मुखातिब है। शाम है जमिस्ता की और दबीज है कोहरा सरमगी सी चादर की, शाम है जमिस्ता की और दबीज है कोहरा सुरमगी सी चादर एक दूर आसमानों से अब उतरने वाली है। माबदों के जीने सब बांग देने वाले हैं, रात मुर्गो माही के खान सजने वाले हैं।
2: क्या बात है,
0: आज तुम यहीं ठहरो शहर में खमोशा के वक्त के सलासिल के मुनहनी से कैदी हो, चाहते हो गर्दिश क्यों राह एक बेगानी, लाल जानवर वहशी मुश्क नाप की खातिर तुमको नोच डालेंगे शहर में खमोशा के, आना सहल कितना है पर यहां से जाने के रास्ते गुजरते हैं, ऊंघते शराबों से मुस्तरद मकानों से झाग जिस्म पानी से कल अदम जमानों से।
1: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
0: शहर में खमोशा के आना सहल कितना है पर यहां से जाने के रास्ते गुजरते हैं, ऊंघते शराबों से मुस्तरद मकानों से झाग जिस्म पानी से कल अदम जमानों से, राहगीर भी गुमसुम हापते झपटते हैं, शाहिबा सफा हूँ मैं काजिए जहां हूँ मैं, बात मान लो मेरी आज तुम यहीं ठहरो वरना बाव के झोंके, वरना बाव के झोंके और बगुले शोरीदा सारी खाक कब्रों की डाल जाएंगे तुम पर, और जमी की गहराई रास आती जाएगी तेवरों की दुनिया से दूर एक दुनिया में, चोबदारों के दस्ते और संतरी सारे धारदार कतबों के बेशुमार टुकड़ों से संगसार कर देंगे या कि जबह कर देंगे, आज तुम यहीं ठहरो शहर में खमोशा के, बस पलक झपकते ही झिलमिलाने लगता है और एक नया मंजर, नीम जान करगस फिर तौलता है पर अपने, अधमरी सी कुमरी एक झूलती है गर्दन में नीम जान करगस की, अधमरी सी कुमरी एक झूलती है गर्दन में नीम जान करगस की, माबदों के जीने सब बांग देने लगते हैं, नींद टूट जाती है, नींद टूट जाती है।
1: बहुत
0: आओ भाई आओ तुम बोलो ख्वाब क्या देखा, नीम जान करगस सिक ना उम्मीद कुछ तरसा, तौलता है पर अपने ख्वाब मैंने दोहराया।
1: बहुत
0: सख्त जहाँ दरिंदे हैं और वो होश जिन्नाती, करवटें तो बदलेंगे दांत कटकटाएंगे, हुक्मरान शेरों के फीलबा सजीले सब सैद होंगे हाथी के और असीर पंजों के, आजमाएंगे जादू बूढ़ा सोच कर बोला, और गिजा में शेरों की हाथियों के बच्चों की ताजियानों के टुकड़े धारदार अनी होंगी हाथियों के पैरों में, आबले पड़े होंगे जंगलों के राजा को एक सियाह मरज होगा, एक सियाह मरज होगा।
1: बहुत अच्छा।
0: रात ख्वाब में देखा, रात ख्वाब में देखा।
1: बहुत
2: खूबसूरत
1: दोस्तों, ये थे नसीब खान साहब जो बहुत खूबसूरत नज्मों से हमें नवाज रहे थे। आज की ये नशस्त यहीं इख्तिताम पजीर होती है। आज की इस नशस्त में जो शोराए किराम हिस्सा ले रहे थे उनमें जनाब नसीब खान साहब, जनाब परवेज शहरियार, जनाब आसिफ अमान सैफी और मैं आपका खादिम शकील जमाल ही। इजाज़त दीजिए, शुक्रिया।
3: सामईन कराम, अभी आप सुन रहे थे बज़्म मुशायरा। इस बज़्म में शामिल थे परवेज शहरियार, आसिफ अमान सैफी, अब्दुल नसीब खान और निज़ामत के फ़रायज़ अंजाम दे रहे थे जनाब शकील जमाली। तो सामईन कराम, हमें उम्मीद है और यकीन है कि आप इस बज़्म में लुत्फ़ अंदोज़ हुए।

0: होंगे, इस बज्म का लुत्फ उठाया होगा। तो इसी उम्मीद के साथ कि हम आपके लिए ऐसे ही बज्म सजाते रहेंगे, आपके लिए ऐसे ही शोरा को स्टूडियो में हम बुलाते रहेंगे और आपको उनके अशआर सुनवाते रहेंगे। चलते चलते आपको ये भी बता दें कि इस प्रोग्राम की तरतीब व पेशकश इंतज़ार सैफी की थी। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और प्रोग्रामों के साथ, तब तक के लिए अपने मेज़बान शाहनवाज हाशमी को प्रोग्राम ख़त्म करने की दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अभी आपने मुशायरा सुना और अब से कुछ ही देर बाद यानी ठीक 8:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी दिल्ली का दिल्ली केंद्र है और अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत जिसे गाया है प्रिया ने।

आज बरसा तो है और इश्क की स्याही नहीं, लेकिन बहुत खूबसूरत बूंदे जरूर पड़ी हैं जिसने मौसम पर असर डाला है और मौसम बड़ा खुशगवार हो गया है।

गाने में एक लाइन थी कि तेरा मेरा प्यार हुआ है और उस जमाने को ना हो खबर, लेकिन एक बहुत ही बेहतरीन मिसाल है कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता, तो इश्क को चाहे जितना छुपाइए वो छुपता नहीं है, जाहिर हो जाता है, और कई लोग तो इसकी दावत तक दे देते हैं। तो दावते इश्क फिल्म का अब आप अगला गीत सुनेंगे जिसे गाया है जावेद अली ने, और ये होगा इस कार्यक्रम का आखिरी गीत। आपसे फिर मुलाकात होगी 11:10 पर। फिलहाल इस गीत के साथ तलत को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब से कुछ ही देर बाद यानी ठीक 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या, 9 बजे सुनेंगे आप इवनिंग न्यूज़ और 9:15 पर समय होगा उर्दू में खबरों का। 9:30 पर आप सुनेंगे युवा भारती कार्यक्रम। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। कर्नाटक में डी के शिवकुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया, बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 1 महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन के डबल्स फाइनल में पहुंचे। और ब्रिस्टल में दूसरे महिला T20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डी के शिवकुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। विधायक दल की बैठक में पार्टी विधायकों ने उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना। इस संबंध में विधायकों ने सिद्धरमैया और डॉक्टर जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि डी के शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।
2: जब मीटिंग आरंभ हुई तो सिद्धरमैया द्वारा एक लाइन का रेजोल्यूशन दिया गया कि CLP नेता का चयन का कार्य AICC को सौंप देना चाहिए। इसके बाद AICC जनरल सेक्रेटरी KC मेरोगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सिद्धरमैया से अलग मुख्यमंत्री के कक्ष में बातचीत की। तब तक CLP मीटिंग रुकी रही। जब फिर से मीटिंग आरंभ हुई तो ये रेजोल्यूशन पारित किया गया कि डी.के. शिवकुमार नेता के रूप में चुने गए हैं। इसके बाद सभी विधायक राज्यपाल से मिले और डी.के. शिवकुमार को मुख्यमंत्री की शपथ दिलाने के लिए वक्त मांगा। अब डी.के. शिवकुमार और अन्य मंत्रिमंडल के सदस्य June 3 को 4:05 पर शपथ ग्रहण करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना DMK पार्टी के सचेतक एग्री SS कृष्णमूर्ति ने आज राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लीकर से मुलाकात की और उनसे सत्तारूढ़ TVK द्वारा कथित तौर पर 4 विधायकों की खरीद फरोख्त के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि ये चारों विधायक ऑल इंडिया अन्ना DMK से इस्तीफा देने के तुरंत बाद TVK में शामिल हो गए। श्री कृष्णमूर्ति ने कहा कि इन विधायकों ने व्हिप का उल्लंघन करते हुए TVK सरकार के पक्ष में मतदान किया। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 1 महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: किसानों की खेती और मिट्टी को सुरक्षित रखने के लिए खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा और यह 30 जून तक पूरे देश में चलाया जाएगा। इस अभियान में कृषि विज्ञान केंद्र सभी भाग लेने वाली संस्थाओं के मुख्य समन्वय की भूमिका निभाएंगे। इस अभियान के लिए 1600 से अधिक टीमें बनाई गई हैं। इसके अलावा जिन 100 जिलों में रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग होता है वहां विशेष रूप से 500 टीमें गठित की गई हैं। इस अभियान के दौरान खेतों को बचाने और किसानों को समय पर सही सलाह देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के लगातार हो रहे उपयोग को कम करना है। किसानों को मिट्टी की जांच के आधार पर उर्वरकों और अन्य कृषि संसाधनों के संतुलित उपयोग के बारे में जागरूक किया जाएगा। साथ ही उन्हें जैविक खाद और जैव उत्पादों के अधिक उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि समाधान दीदी वर्तमान में सभी 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में काम करता है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि एआई और तकनीक के उपयोग के कारण लोक शिकायतों की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हुई है।
4: सन 2014 से पहले केवल यहाँ पर 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी प्रतिवर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25 से 30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव, और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
1: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में स्टार्टअप लोहम का दौरा किया। श्री वैष्णव ने कहा कि लोहम लिथियम आयन बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों और उन्नत सामग्रियों का उत्पादन कर रहा है।
5: एक यंग स्टार्टअप लोहम, इन्होंने कंप्लीट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बाद में वहां से प्रोडक्शन का लेवल लेके आए। आज उस प्लांट को देखने का मौका मिला। लिथियम कार्बोनेट बनाने की मशीन है जो कि आगे सीधा बैटरी बनाने में काम में आए, और परमानेंट मैग्नेट बनाने की मशीन है जो कि बहुत ही एक अच्छे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से डेवलप किया।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। इसका प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी ये कार्यक्रम प्रसारित करेगा। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन भारत की 5 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज शाम श्री ऊ मिन से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने के प्रति म्यांमा के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। उन्होंने कहा कि वे शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सोमवार को उनकी मुलाकात का इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले दिन में म्यांमा के राष्ट्रपति बिहार में गया गए और महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि चिकित्सा वस्त्र, तकनीकी वस्त्र और स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी क्षेत्र भारत की आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने की अपार क्षमता रखते हैं। विशाखापट्टनम में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार भारत को वैश्विक विनिर्माण और नवाचार केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि ये प्रयास मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है। सरकार ने सोमवार से 31 अक्टूबर तक कपास के आयात पर सीमा शुल्क में अस्थायी रूप से छूट दी है। कपड़ा मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि ये निर्णय कपास किसानों और संपूर्ण कपास मूल्य श्रृंखला के हितों को सर्वोपरि रखते हुए लिया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान लागू किया गया ये उपाय कपड़ा उद्योग के लिए कपास की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर हैं और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे चरण के लिए तैयार हैं। पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में पासिंग आउट परेड में जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प

0: के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि ये अभियान अब भी जारी है।
1: जहां तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, ये अभियान अभी जारी है। इसमें फिलहाल केवल अस्थायी रूप से संघर्ष विराम है, इसलिए भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की संभावना को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस समय हमारा ध्यान तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने पर है। साथ ही हम भविष्य के युद्धों के लिए खुद को और अधिक सक्षम बना रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आने वाले समय के युद्ध केवल जमीन, समुद्र और हवा तक सीमित नहीं रहेंगे।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
2: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में पहले हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट और प्रथम दिन का कवर जारी किया। इस अवसर पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष राम बहादुर राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बधाई संदेश पढ़ा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हिंदी पत्रकारिता की द्विशताब्दी भारत की चेतना, विचार और जन जागरूकता का उत्सव है। श्री सिंधिया ने कहा कि पत्रकारिता का इतिहास भारत का इतिहास भी है। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि ये राष्ट्रीय जागृति का एक आंदोलन है। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने डिजी यात्रा ऐप के माध्यम से 10 करोड़ से अधिक निर्बाध यात्राएं संपन्न कराने के लिए डिजी यात्रा टीम को बधाई दी है। श्री नायडू ने कहा है कि ये उपलब्धि निर्बाध और कागज तथा संपर्क रहित प्रक्रिया पर यात्रियों के बढ़ते भरोसे को दर्शाती है। वर्तमान समय में डिजी यात्रा ऐप पर 38 हवाई अड्डे हैं और अगले वर्ष इनमें 27 और हवाई अड्डे जुड़ जाएंगे। पश्चिम बंगाल में स्वच्छता में सुधार और नागरिक समस्याओं का तेजी से समाधान करने के लिए एक नया स्वच्छ मोबाइल ऐप जारी किया गया है। आवासन और शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने आज कोलकाता में इस ऐप को जारी किया। इस ऐप के जरिए नागरिक अपनी समस्याओं जैसे रुका हुआ पानी, कचरा या नालियों का फोटो अपलोड कर सकते हैं। राष्ट्रीय संचालन समिति ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम ITI क्लस्टर के लिए एक निजी कंपनी आर्सेलर मित्तल निपोन स्टील इंडिया की रणनीतिक निवेश योजना SIP को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने वाली पहली SIP है। आंध्र प्रदेश इस योजना के अंतर्गत उद्योग साझेदारी को क्रियान्वित करने वाला पहला राज्य बन गया है। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की है। कल आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, माहे, लक्षद्वीप और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में तेज वर्षा की संभावना है। अगले दो दिनों में ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारिकाल और मध्य प्रदेश में भी तेज बारिश हो सकती है। कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में तेज हवाओं के साथ बादल गरजने और बिजली चमकने का अनुमान है। और अब बात खेलों की। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के डबल्स फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में उन्होंने दक्षिण कोरिया के सीओ सेउंग जाए और किम बॉन हो को हराया। ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो मिक्स डबल्स सेमीफाइनल में हार गई। ब्रिस्टल में दूसरे महिला T20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने पांचवें ओवर में एक विकेट पर 34 रन बना लिए हैं। तीन मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। भारतीय हज मिशन ने सऊदी अरब में आयोजित इस वर्ष के खितमाहु मिस्क समारोह में 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते हैं। ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। सऊदी हज मंत्रालय द्वारा तीर्थयात्रियों की उत्कृष्ट सेवाओं को मान्यता देने के लिए प्रतिवर्ष दिए जाने वाले लब्बैतुम पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ हज समन्वय और संचार श्रेणी के तहत भारतीय हज मिशन को प्रदान किए गए हैं। इस वर्ष लगभग 1,75,000 भारतीय हज के लिए गए थे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।

यह म्यांमा के सदर का ओहदा संभालने के बाद यह उनका भारत का पहला दौरा है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज उनसे मुलाकात की। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर डॉक्टर जयशंकर ने तवील मुद्दती बाहमी इश्तराक को मुस्तहकम करने के तई म्यांमा के सदर की मुस्बत सोच की सताइश की। उन्होंने कहा कि वो अमन, तरक्की और खुशहाली की खातिर शराकतदारी की पेशरफ के सिलसिले में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ जनाब लाइन की मीटिंग के मुंतजर हैं। म्यांमा के सदर दोनों मुल्कों के दरमियान तारीखी और तहजीबी रवाबित को मजीद मुस्तहकम करने की खातिर पीर के रोज वजीर आजम मोदी से बातचीत करेंगे। वो एक कारोबारी फोरम में भी शिरकत करेंगे। कौमी सेहत अथॉरिटी की जानिब से नाफिज करदा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत मुल्क भर में 90 करोड़ आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट्स आभा का तारीखी संगे मील हासिल किया गया। सेहत व खानदानी बहबूद की वजारत ने कहा कि एक मरबूत मुश्तरक तरीक़ेकार और शहरियों पर मरकूज डिजिटल सेहत इको निज़ाम की जानिब भारत के सफर में यह एक अहम पेशरफ्त है। वजारत ने कहा कि 2021 में 14 करोड़ से ज्यादा आभा अकाउंट्स की तादाद बढ़कर इस साल 90 करोड़ हो गई है। दिल्ली पुलिस के खसूसी शोबे ने पाकिस्तान की आईएसआई और मुंबई के जराइम पेशा ग्रोह के नेटवर्क के इशारे पर काम करने वाले 8 मुलजिमों को गिरफ्तार किया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए दिल्ली पुलिस के खसूसी शोबे के खसूसी पुलिस कमिश्नर अनिल शुक्ला ने बताया कि इन मुलजिमों को दिल्ली में अहम तनसीबात और सिक्योरिटी एहलकारों पर हमला करने का काम सौंपा गया था। उन्होंने कहा कि इन मुलजिमों के कब्जे से हथियार और धमाकाखेज मादा जब्त किया गया है। जनाब शुक्ला ने बताया कि ये मुलजिम सरहद पार अपने आकाओं के इशारे पर काम कर रहे थे। इन्हें दिल्ली, महाराष्ट्र और पुणे से गिरफ्तार किया गया है। भारतीय मौसमियात महकमे ने कल आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरलम, माहे, लक्षद्वीप और मुल्क के शिमाल मशरकी हिस्सों में तेज बारिश की पेशगोई की है। अगले 2 दिन के दौरान ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, क्राइकल और मध्य प्रदेश में भी शदीद बारिश का इम्कान है। मौसमियात महकमे ने मशरकी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ खित्ते में कल आंधी और ज्वालाबारी के साथ बारिश की पेशगोई की है। इसके अलावा दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और मगरबी बंगाल में गंगा की तराई वाले खित्ते में भी कल गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश होने का इम्कान है। केरलम में मानसून से पहले की बारिश के तनाजुर में भारतीय मौसमियात महकमे ने तिरुवनंतपुरम जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जिले के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश हुई है। कई इलाकों से पानी जमा हो जाने और ट्रैफिक में खलल पड़ने की इत्तला मिली है। शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर राम मोहन नायडू ने डिजी यात्रा ऐप के जरिए 10 करोड़ से ज्यादा बिना रुकावट सफर के तजुर्बात को यकीनी बनाने के लिए डिजी यात्रा टीम को मुबारकबाद दी। जनाब नायडू ने कहा कि इस संगे मील से बिला रुकावट, पेपर के बगैर और किसी खास राब्ते के बगैर मुसाफिरों के बढ़ते एतमाद की अक्कासी होती है। बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की मर्दों के डबल्स की भारतीय जोड़ी आज सिंगापुर ओपन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने सेमीफाइनल मुकाबले में आलमी नंबर 1 जनूबी कोरिया की जोड़ी सियू सियांग जाए और किम वोन हो को 21-19, 21-18 से हरा दिया। इससे कबल ध्रुव कपिला और तनिशा क्रास्तो की मिक्स्ड डबल्स की भारतीय जोड़ी सेमीफाइनल में जापान की जोड़ी से 16-21, 21-17, 13-21 से हार गई। खवातीन क्रिकेट में 3 T20 मैचों की सीरीज के तहत ब्रिस्टल में खेले जा रहे दूसरे T20 मैच में इंग्लैंड की टीम ने भारत की जीत के लिए 169 रन का निशाना रखा है। अब से कुछ देर पहले तक खवातीन की भारतीय टीम ने 12 ओवर्स में 2 विकेट पर 95 रन बना लिए थे। इससे कबल इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। इंग्लैंड ने मुकर्रा 20 ओवर्स में 5 विकेट के नुकसान पर 168 रन बनाए थे। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। कर्नाटक में कांग्रेस कानून साज पार्टी ने डी के शिव कुमार को अपना लीडर मुंतखब किया है। वो बुध के रोज नए वजीर आला की हैसियत से हलफ लेंगे। कीमियावी खाद के मुतवाजन और सोच समझकर इस्तेमाल को फरोग देने की खातिर पीर से 1 माह तवील खेत बचाओ अभियान शुरू होगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। भारतीय महकमे मौसमियात ने मशरकी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में कल ज्वालाबारी और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की पेशगोई की है। बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी सिंगापुर ओपन के मर्दों के डबल्स के फाइनल में पहुंच गई है।
और ख्वातीन क्रिकेट में ब्रिस्टल में

दूसरे T20 मैच में इंग्लैंड ने भारत के सामने 169 रन का निशाना रखा। अब से कुछ देर पहले तक खवातीन की भारतीय टीम ने 12 ओवर्स में 2 विकेट पर 95 रन बना लिए थे। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डी के शिवकुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया है। विधायक दल की बैठक में पार्टी विधायकों ने उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना। इस संबंध में विधायकों ने सिद्धारमैया और डॉ जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया। डी के शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि सोमवार से शुरू हो रहे अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉइस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस

0: देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित करेगा। केंद्रीय विद्युत, आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल आज आधिकारिक दौरे पर त्रिपुरा जाएंगे। इस दौरान वे सुबह अगरतला के मुक्तधारा सभागार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 134वें संस्करण का प्रसारण सुनेंगे। इसके बाद वे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से जुड़े एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। नागालैंड में उच्च शिक्षा को मजबूत करने के लिए दीमापुर सरकारी कॉलेज में कल 3 नई परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। ये परियोजनाएं प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान पीएम उषा के तहत शुरू की गई हैं। निर्वाचन आयोग ने कानूनी परामर्शदाताओं का राष्ट्रीय सम्मेलन कल नई दिल्ली में आयोजित किया गया। सम्मेलन का उद्घाटन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने किया। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष और सही मतदाता सूची ही निष्पक्ष चुनाव की आधारशिला होती है। उन्होंने बूथ स्तर के अधिकारियों और बूथ स्तर के एजेंटों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि वे मतदाता सूची को सही और अद्यतन रखने में अहम योगदान देते हैं। अगरतला की विशेष सीबीआई अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसले में प्रगतिशील इंफ्रा प्रोजेक्ट्स एंड सर्विसेज लिमिटेड के 3 वरिष्ठ अधिकारियों को 6 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने तीनों को आपराधिक साजिश रचने, लोगों से धोखाधड़ी करने और त्रिपुरा जमाकर्ता हित संरक्षण कानून का उल्लंघन करने का दोषी पाया। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के डबल्स फाइनल में पहुंच गए हैं। आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। अहमदाबाद में ये महामुकाबला शाम 7:30 बजे शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में ओलावृष्टि के साथ बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना व्यक्त की है। आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में तेज हवाओं के साथ बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Akhila. In Karnataka, the Congress Legislature Party meeting in Vidhan Sauda has elected D.K. Shivakumar as its new leader after the designation of Siddaramaiah. His name was proposed by outgoing Chief Minister Siddaramaiah and Dr. G. Parameshwar. After adopting the resolution of AICC General Secretary, K.C. Venugopal made the official announcement. Later briefing the media persons in Bengaluru, Mr. Venugopal said D.K. Shivakumar will visit the governor to stake claim to form the government. He also announced that the swearing-in ceremony will be held on 3rd of June. The Khet Bachao Abhiyan to promote balanced and judicious use of fertilizers will be launched across the country on 1st June and will be carried out throughout the month. Union Minister for Agriculture and Farmers' Welfare, Shivraj Singh Chauhan, chaired a high-level meeting regarding the preparations of the campaign in New Delhi yesterday. He said that the campaign should need a comprehensive national drive connecting farms, farmers and villages. The minister said the focus of the campaign will be on balanced and judicious use of fertilizers, timely advice to farmers in view of weather-related challenges, active participation at panchayat level and delivering the benefits of the schemes directly to the villages. President of Myanmar, U Min Aung Hlaing, arrived in New Delhi yesterday on a 5-day visit to India. Union Minister of State for External Affairs, Kirti Vardhan Singh, received him at the airport. Earlier yesterday, the President of Myanmar visited Gaya in Bihar and prayed at Mahabodhi Temple. He is accompanied by a high-level delegation comprising several cabinet ministers, senior officials and business leaders. This is the first visit of President U Min Aung Hlaing to India.

अगला गीत श्रोताओं आइए सुनते हैं, फिल्म चांदनी रात से शमशाद बेगम और मोहम्मद रफी की आवाज में।

इसी के साथ श्रोताओं, गीत सुनहरे कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं ये गीत फिल्म अमर से लता मंगेशकर की मधुर आवाज में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डी के शिव कुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया है। विधायक दल की बैठक में पार्टी विधायकों ने उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना। इस संबंध में विधायकों ने सिद्धरमैया और डॉक्टर जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया। डी के शिव कुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि सोमवार से शुरू हो रहे अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉइस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवाददात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
1: सन 2014 से पहले केवल यहाँ पर 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी प्रतिवर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25 से 30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव, और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन

0: पर त्रिपुरा जाएंगे। इस दौरान वे सुबह अगरतला के मुक्तधारा सभागार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 134वें संस्करण का प्रसारण सुनेंगे। इसके बाद वे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से जुड़े एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। म्यांमा के उपराष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने श्री ऊ मिन से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने के प्रति म्यांमा के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काई कास्ट प्रणाली के शुभारंभ का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि स्काई कास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणाली कोहरे के दौरान उड़ान संचालन में सुधार कर सकती है। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे ये तकनीक देश भर के अधिक हवाई अड्डों तक विस्तारित होगी, इससे सुरक्षा मजबूत और यात्रियों के यात्रा अनुभव में वृद्धि होगी। नागालैंड में उच्च शिक्षा को मजबूत करने के लिए दीमापुर सरकारी कॉलेज में कल तीन नई परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। ये परियोजनाएं प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान पीएम उषा के तहत शुरू की गई हैं। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के डबल्स फाइनल में पहुंच गए हैं। आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। अहमदाबाद में ये महामुकाबला शाम 7:30 बजे शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में ओलावृष्टि के साथ बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना व्यक्त की है। आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में तेज हवाओं के साथ बादल गरजने की भी संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। In Karnataka, the Congress Legislature Party meeting in Vidhan Sauda has elected D.K. Shivakumar as its new leader after the resignation of Siddaramaiya. His name was proposed by outgoing Chief Minister Siddaramaiya and Dr. G. Parmeshwar. After adopting the resolution, AICC's General Secretary K.C. Venugopal made the official announcement. Later briefing the media persons in Bengaluru, Mr. Venugopal said D.K. Shivakumar will visit the governor to stake claim to form the government. He also announced that the swearing-in ceremony will be held on 3rd of June. The Khet Bachao Abhiyan to promote balanced and judicious use of fertilizers will be launched across the country on 1st of June and will be carried out throughout the month. Union Minister for Agriculture and Farmers' Welfare Shivraj Singh Chauhan chaired a high-level meeting regarding the preparations of the campaign in New Delhi yesterday. He said that the campaign should be made a comprehensive national drive connecting farms, farmers and villages. The minister said the focus of the campaign will be on balanced and judicious use of fertilizers, timely advice to farmers in view of the weather-related challenges, active participation at panchayat level and delivering the benefits of the schemes directly to the villages. President of Myanmar, U Min Aung Hlaing, arrived in New Delhi yesterday on a 5-day visit to India. Union Minister of State for External Affairs, Kirtivardhan Singh, received him at the airport. Earlier yesterday, the President of Myanmar visited Gaya in Bihar and prayed at Mahabodhi Temple. He is accompanied by a high-level delegation comprising several cabinet ministers, senior officials and business leaders. This is the first visit of the President U Min Aung Hlaing into India in his current capacity. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar called on Mr. Hlaing in a social media post. Dr. Jaishankar appreciated the Myanmar President's positive sentiment towards deepening and the long-standing bilateral cooperation. Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad on the Mann Ki Baat program on Akashvani at 11 a.m. today. It will be the 134th episode of the monthly radio program. The program will be broadcast across the entire network of Akashvani and Doordarshan, the AIR News.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया है। विधायक दल की बैठक में पार्टी विधायकों ने उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना। इस संबंध में विधायकों ने सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया। डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि सोमवार से शुरू हो रहे अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉ सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
1: सन 2014 से पहले केवल यहाँ पर 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी प्रतिवर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25 से 30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव, और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित करेगा। केंद्रीय विद्युत, आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल आज आधिकारिक दौरे पर त्रिपुरा जाएंगे। इस दौरान

म्यांमार के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। इससे पहले कल दिन में म्यांमार के राष्ट्रपति बिहार में गया गए और महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने नई दिल्ली में के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काईकास्ट प्रणाली के शुभारंभ का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि स्काईकास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणाली कोहरे के दौरान उड़ान संचालन में सुधार कर सकती है। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के डबल्स फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में उन्होंने दक्षिण कोरिया के सीओ सेंग जाय और किम वॉन हो को हराया। आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। अहमदाबाद में ये महामुकाबला शाम 7:30 बजे शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में ओलावृष्टि के साथ बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना व्यक्त की है। आज आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, माहे, लक्षद्वीप और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में तेज वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। 3:10 हुए हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम गीत गजल। कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आपके साथ मैं आपका अपना दोस्त मोहन।

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल है। श्रोताओं, प्रातः के 4 बजने को हैं, कुछ ही पलों में आप हिंदी में समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित करेगा। केंद्रीय विद्युत आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल आज आधिकारिक दौरे पर त्रिपुरा जाएंगे। इस दौरान वे सुबह अगरतला के मुक्तधारा सभागार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 134वें संस्करण का प्रसारण सुनेंगे। इसके बाद वे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से जुड़े एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डी के शिवकुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया है। विधायक दल की बैठक में पार्टी विधायकों ने उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना। इस संबंध में विधायकों ने सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया। डी के शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि कल से शुरू हो रहे अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉ सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
1: सन 2014 से पहले केवल यहाँ पर 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी प्रतिवर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25 से 30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव। और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
0: म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउंग लाइन भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने श्री ऊ मिन से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने दीर्घकालिक

0: विमान उड़ान संचालन में सुधार कर सकती है। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे ये तकनीक देश भर के अधिक हवाई अड्डों तक विस्तारित होगी, इससे सुरक्षा मजबूत और यात्रियों के यात्रा अनुभव में वृद्धि होगी। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के डबल्स फाइनल में पहुंच गए हैं। आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। अहमदाबाद में ये महामुकाबला शाम 7:30 बजे शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में ओलावृष्टि के साथ बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना व्यक्त की है। आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में तेज हवाओं के साथ बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is आकाशवाणी।
2: प्रस्तुति भक्ति संगीत का प्रातकालीन कार्यक्रम अर्चना।

भक्ति संगीत के प्रातकालीन अर्चना कार्यक्रम में हम आपको सुना रहे हैं धर्मपुरम पी स्वामीनाथन और साथी द्वारा प्रस्तुत गुरु ज्ञान संबंधर की रचना।

लीजिए, जया चाम राजा वाडियार की रचना सुनी। स्वर सीता लक्ष्मी वेंकटेशन और नीला राम गोपाल का है।

भक्ति संगीत के कार्यक्रम अर्चना में अब हम आपको सुनवा रहे हैं टीके गोविंद राव के स्वर में पुरंदर दास का देवरनामा।

0: इसके साथ ही भक्ति संगीत का प्रातःकालीन कार्यक्रम अर्चना अब संपन्न होता है।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। आइए अब सुनते हैं नाद ब्रह्म कार्यक्रम में कर्नाटक संगीत प्रस्तुति पन्नुकन्नम रामचंद्रन की है। मृदंगम पर संगत की है खुजल मन्नम और केजी रामा कृष्णन ने राग मध्यवती आदि ताल में।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। आज रविवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 15वीं तिथि, तदनुसार 31 मई सन 2026। श्रोताओं, सुबह के

4:59 होने को हैं। इस मीटर पर हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं। हम सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करते हैं।

0: श्रोताओं, प्रातः के 5 बजने के हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित करेगा। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कल कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक में पार्टी विधायकों ने उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना। इस संबंध में सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वरन ने प्रस्ताव पेश किया था। डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि कल से शुरू हो रहे अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। सरकार ने कल से 31 अक्टूबर तक कपास के आयात पर सीमा शुल्क में अस्थायी रूप से छूट दे दी है। वस्त्र मंत्रालय ने कहा कि यह निर्णय कपास किसानों और संपूर्ण कपास मूल्य श्रृंखला के हितों को सर्वोपरि रखते हुए लिया गया। मंत्रालय ने कहा कि कपास के ऑफ सीजन के दौरान लागू किया गया ये उपाय वस्त्र उद्योग के लिए कपास की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
2: सन 2014 से पहले केवल यहाँ पर 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी प्रतिवर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25 से 30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव, और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
1: निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में सैनिकों की तरह कार्य करने वाले बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों की प्रशंसा की। बैठक में सर्वोच्च न्यायालय और देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों के साथ आयोग के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काई कास्ट प्रणाली के शुभारंभ का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि स्काई कास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणाली कोहरे के दौरान उड़ान संचालन में सुधार कर सकती है। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे ये तकनीक देश भर के अधिक हवाई अड्डों तक विस्तारित होगी, इससे सुरक्षा मजबूत और यात्रियों के यात्रा अनुभव में

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है कार्यक्रम आओ योग करें।

नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर हिमानी चौखन। मैं हूं आपकी योग विशेषज्ञ। जैसे कि आप जानते हैं कि आज के दौर में ऐसा लगता है कि मानो तनाव हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन गया है। जिसे देखो वह तनाव से पीड़ित है। यहां तक कि आजकल बच्चे भी तनाव का शिकार होते जा रहे हैं। यदि तनाव से मुक्त पाना है तो इसका एक ही प्रभावी तरीका है और वह है योग। वैसे तो हर योग की अधिकतर क्रियाएं करने से आप तनाव से मुक्त हो सकते हैं, परंतु प्राणायाम में भ्रामरी प्राणायाम सबसे ज्यादा इफेक्टिव यानी सर्वश्रेष्ठ माना गया है तनाव को कम करने के लिए। तो भ्रामरी प्राणायाम को करने के लिए आइए सीखते हैं कि किस प्रकार

भ्रामरी प्राणायाम किया जाता है। भ्रामरी शब्द भ्रमर से लिया गया है, जिसका मुख्य अर्थ है भंवरा। इस प्राणायाम के अभ्यास के समय निकलने वाला स्वर यानी निकलने वाली आवाज भ्रमर के गुंजन के स्वर की तरह ही होती है। आइए सीखते हैं अभ्यास विधि। सबसे पहले आप किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं।